मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि तदनुसार 29 मई सन 2026 इस समय सुबह के 5:58 होने को है। इसी के साथ हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं

0: कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: अभी आपने समूह स्वर में देशभक्ति गीत सुना। आइए अब सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति व साथियों की आवाज में ये भजन।
1: माधव के हाथ

देवाशीष दास गुप्ता के गाए इसी भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए आपको आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा बता दें। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:35 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी। विषय होगा कृत्रिम गर्भाधान से लाभ। श्री रामचरितमानस गान कार्यक्रम सुनिए सुबह 6:40 पर। चिंतन सुबह 6:50 पर। सुबह 7:20 पर हिंदी महक कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए वार्ता पृथ्वी का बढ़ता तापमान और प्रभाव। वार्ताकार है नंद किशोर अहिरवार। फिल्म संगीत होगा सुबह 7:30 पर, शाम 5:30 पर, रात 8:15 पर और रात 9:30 पर। सुबह 8:30 पर सुनिए शास्त्रीय संगीत। इसमें सुनिए पंडित वीजी जोग का राग अहिर भैरव में वायलिन वादन। सुबह 9:00 सुनिए लोकरंग कार्यक्रम। इसमें आज कलाकार होंगे बालक दास। फिल्मी कवालियों का लुफ्त लीजिए सुबह 9:30 पर। 10:00 भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी। सुबह 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम गांधी चर्चा। प्रवक्ता एवं प्रस्तुतकर्ता होंगे महेश शर्मा। सुबह 10:20 पर सुनिए गैर फिल्मी भजन। सुबह 10:30 पर सुनिए श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

सुबह 11 बजे से सुनिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश, सुबह 11 बजे भोपाल केंद्र से सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, दिन में 12 बजे आपकी फरमाइश, दिन में 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से। दिन में 1 बजे महिला सभा कार्यक्रम में सुनिए वार्ता माँ का जीवन में महत्व, वार्ताकार हैं रागनी अग्निहोत्री और सुनिए उपयोगी जानकारी। दिन में 1:30 पर सुनिए लोक संगीत, प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। दिन में 1:45 पर सुनिए सुगम संगीत, 2 बजे फिल्म संगीत और 2:30 पर आपकी फरमाइश। शाम 5:02 पर युवाओं के कार्यक्रम युवाणी में सुनिए वार्ता गर्मी में जल संरक्षण, वार्ताकार हैं भूमिका चतुर्वेदी और साथ ही होगी रोजगार सूचना। शाम 6:00 भोपाल केंद्र से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 6:30 पर सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा, इसमें कलाकार होंगे भास्कर साहू। शाम 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में सुनिए मानस प्रवचन, प्रसंग है भगवान का वरदान, प्रवचन करता है राजकुमार उदेनिया और वार्ता सुनिए भारत में कृषि विकास में प्राथमिक कृषि सहकारी समिति की भूमिका, वार्ताकार हैं डॉक्टर अंकित शाक्य और होगी आज की सीख। रात 10:00 सुनिए नाटक लौटते कदम, लेखक हैं सुमन वर्मा, प्रस्तुत करता है श्री हर्ष पांडे। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिए पंडित निखिल बैनर्जी का राग चंद्रकोस में सितार वादन। रात 8:00 भोपाल केंद्र से कार्यक्रम सुर्खियों में, रात 9:15 पर दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम स्पॉटलाइट। ये तो था आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी, विषय है कृत्रिम

अपने किसान भैया गांव में, शहरन में, सब जगह गैया भैंसियां बहुत ज्यादा पालत हैं। काहे से कि हमें अधिक से अधिक दूध को उत्पादन लेवे के लाने जानवर पालबो जरूरी हो जाते हैं। अब ऐसे में हम कैसे अच्छे जानवर अपने घर में रखें, अपने आसपास पड़ोस में अच्छे जानवर पैदा कर सके, इके लाने हमें जो जानवर जरूरी हो जाते हैं कि कौन सी नस्ल के जानवर अच्छे हैं और अधिक से अधिक दूध देते हैं। जानवर जब हम अपने घर पर रखते हैं या अपने खेतन में रखते हैं या बाड़ी में रखते हैं, तो उतरे पे दो चीजों को ध्यान रखना जरूरी हो जाते हैं, उनकी प्रजनन कराबे को। अब हम गर्भाधान कैसे कराएं, ये बात को ध्यान रखना जरूरी होते हैं। अब जब हम अपने गैया भैंसियां पाले हैं, तो हमें जहां पे अपने जानवर रखे हैं उतरे पे उत्तम किस्म के सांड रखबो जरूरी होते। गर्भाधान दो विधियों से कराबो उचित है। आजकल कृत्रिम गर्भाधान संसार में सब जगह बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। कृत्रिम गर्भाधान से अपने भैया का अनेक लाभ होते हैं। कैसे, एक सांड से अपने भैया अनेक गांजा या भैंसियन का गाभिन करा सकते हैं। अमेरिका में ये बात को पतो लगाओ गो है तो एक साल में एक सांड से लगभग 50,000 गायें जो है गाभिन कराई गई। कृत्रिम गर्भाधान के लाने सबसे पहला तो हमें अपने पास के पशु अस्पतालन में जहाँ पे वीर इकट्ठो करके रखो जाते है, उतरे पे जाके अपने गैया बछिया ले जाएं या भैंस का ले जाएं या पड़िया का ले

0: जहां जिसे कि वहां पे उन्हें कृत्रिम गर्भाधान कराओ जा सके। कृत्रिम गर्भाधान के लाने हमें अच्छे साण को वीर इकट्ठो करके अपने पास भी रख सकते हैं। अगर उन भैया के पास हमारे पास सुविधा है तो वे अपने कृत्रिम गर्भाधान करा सकते हैं। जब जानवर अपने गर्मी पे आते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करावे के लाने अस्पताल ले गए और उते पे पिचकारी के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कराओ जाते। जानवर का पतो जब लग जाते कि वो गर्मी पे है, गर्मी पे जब अगर गाय या भैंस आउ थे तो वो दूसरे जानवर पे चढ़ने लगते है या रमान लगते है या वो एक योनी से चिपचिपो पदार्थ छोड़ने लगते है, देर देर पेशाब करने लगते है, जिससे कि अपने पंचन का जो पतो चल जाते है कि जो जानवर गाभिन के लाने तैयार है। अस्पताल ले जाके ऊखन जब अपन गाभिन कराते हैं तो एक बात को ध्यान रखें कि वो घरे लेके लगभग 20 घंटा और 24 घंटा तक बांध के रखें ऊखा, जिसे कि वो कृत्रिम गर्भाधान को समय को पूरा हो जाए। नहीं तो अपन ले आए वो छोड़ दो तो जो देसी नटवा अगर फिरत रात हैं या जो देसी सांड हैं वे ऊखा क्रास करके उनको वो वीर नष्ट करके या उनकी नस्ल बदल सकते हैं। ऐसे नटवा या ऐसे सांड जो देसी नस्ल के हैं और उनसे पैदा होने वाली नस्ल अच्छी ना हुए तो उन्हें जो है बदिया करा दो चाहिए, जिसे कि वे गाभिन करने वाले जानवर का परेशान ना कर सके। अब जब जानवर गाभिन हो जाते तो उनका अपने भैया का इस बात को पतो चल जाते कि जो गाभिन होगा। इस विधि से अपने जानवर में एक तो उत्तम नस्ल के जानवर पैदा होते हैं, दूसरों आने वाली नस्ल जानवर की अच्छी होने लगते है और सांड को जो उत्पादन को समय है वो भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे सांड अगर अच्छी नस्ल की हैं तो वे बूढ़े हो जाने के बाद भी या अगर उनके अंग कोनू टूट जाते, मान लो पांव और टूट गए, तो भी जब जानवर पे अगर क्रॉस नहीं कर पाते तो उनको वीर इकट्ठो करके भी बहुत सारी गाय अपनी गाभिन कराई जा सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में अच्छे से अच्छी नस्ल की अपन बछिया या सांड ले सकते हैं। एक बात को ध्यान रखें अपने भैया कि हमेशा अच्छी किस्म की गाय पाले, जर्सी, होलस्टीन फ्रीजर, साहिवाल, गिर या अच्छी नस्ल के जानवर पाल के अधिक से अधिक उत्पादन लेके अधिक से अधिक उन्हें मुनाफा मिले।
1: अभी आप किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी सुन रहे थे। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर है महेंद्र कपूर का और संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

देवताओं, संतों और दुष्टों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी प्राणी मात्र की वंदना करना भी नहीं भूले हैं। 84 लाख योनियों से स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी तथा आकाश में रहते हैं और उनसे भरा हुआ ये समस्त जगत भक्त कवि को सीता राममय प्रतीत होता है। हवा के साथ धूल आकाश पर चढ़ जाती है और फिर वही नीचे बहने वाले जल की संगत में कीचड़ बन जाती है। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, किंतु वही सुसंग पाकर सुंदर स्याही बन धर्मशास्त्र लिखने के काम में आता है। जड़ और चेतन सभी को राममय जान तुलसीदास जी हाथ जोड़ उनकी वंदना करते हुए अपने अल्पबुद्धि तथा अक्षमता प्रकट करना भी मर्यादा के अनुकूल पाते हैं।

मानव की बुद्धि छोटी है और श्री राम का चरित्र अतः श्री राम का चरित्र गायन अपनी ठिठाई मान वो सज्जनों से क्षमा याचना करते हैं।

0: अभी कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: भाव का ब्रह्म कमल अभाव की दुर्गम पहाड़ियों पर खिलता है। प्रभु की अनुकंपा और साधना से गंतव्य की प्राप्ति भक्त व भक्ति की कठिन परीक्षा के उपरांत ही होती है। जो वस्तु व गंतव्य जितना महत्वपूर्ण और जितना दूर होगा, उसकी प्राप्ति में उतने ही अधिक समय, परिश्रम, धैर्य और साधना की आवश्यकता होगी। दया सिंधु भगवान जिसको जिस योग्य समझते हैं, उन्हें उनकी योग्यताओं के अनुरूप दायित्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपते चले जाते हैं। ईश्वर कभी भी अपने भक्त को कुछ भी अनिष्टकारी वस्तु उपहार में नहीं देते। अज्ञानतावश हम उसे बुरा और अनिष्टकारी समझ बैठते हैं। जीवन में निर्मलता, मन, कर्म और सोच की पवित्रता हमें ईश्वर की दया और कृपा के निकट लाती है, जबकि मन की चालाकी, विचार की अपवित्रता और दूसरों के प्रति रचे गए षड्यंत्रों का मकरजाल हमें अपने मार्ग में मिलने वाली सफलताओं से वंचित करता है। यदि पर्याप्त प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, तो निश्चित जानिए कहीं न कहीं आपके विचार, आपके कर्म और सोच में अपवित्रता है। हम जितना प्रयास दूसरों के असफल होने के लिए करते हैं, हमारी सफलताएं हमसे दूर होती जाती हैं। मनुष्य के पास जो आज उसका वर्तमान उपस्थित है, वो उसके अतीत के कर्मों की पूंजी है। आज का कर्म

0: भविष्य की पूंजी होगी। हम आने वाले कल में सुखी रहना चाहते हैं या दुखी, ये सोचकर अगर हम अपने कार्यों, सोच और वाणी की दिशा का निर्धारण करें तो जीवन में कभी भी पश्चाताप, दुख और पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। जिसके जीवन के कर्म और लक्ष्य की नींव झूठ पर आधारित हो तो उसकी जीवन छोली में ईश्वर असफलता, दुख, आपदा और कष्ट के अलावा भला डाल ही क्या सकते हैं। ईश्वर हमेशा हमें हमारे कर्मों की बोई हुई फसल का ही पारिश्रमिक, अवसर और जीवन के उपहार के रूप में लौटाते हैं। आखिर मन, कर्म और वाणी से हमने जीवन के प्लाट में जो कुछ बोया होगा, काटने के लिए भी तो हमें वही फसल मिलेगी। आज आपके पास जो भी सफलता या असफलता है उसके जिम्मेदार केवल और केवल आप ही हो। इसलिए ऐसे कर्म बीज बोएं जिनकी उपज की प्राप्ति से हमें भावी जीवन में आनंद, गर्व और असली सुख की अनुभूति हो। और यह तभी संभव है जब हम ईश्वर द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, पवित्र भावना और शुभ कर्मों से करें। हमारे देश में संत विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे अनेक लोग हुए जिन्होंने सत्कर्म करके ईमानदारी और पवित्र भावना से शुभ कर्म किए और वो आज दुनिया में अमर हैं। क्यों ना हम अपने कर्मों पर विचार करें और ऐसे सत्कर्म करें जो दूसरों के लिए भी सुखदायी हों और हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी सुखदायी हों।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्याः अवसरे गृहमन्त्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धाञ्जलिं प्रदत्तवान्। गुजरातराज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्रीशाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रान्तरे सः अहमदाबाद नगरे आगामिनि ओलम्पिक क्रीडानां, कॉमनवेल्थ क्रीडानां, विश्वारक्षक क्रीडानां, अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः आरक्षक बलाय बोधितवती यत् आरक्षकाः अधिकं नागरिकाभिमुखाः भवेयुः, अपि च समाजस्य दुर्बलवर्गाणां, विशेषतः महिलानां, निर्धनानां, बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः गतवासरे गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरण संचलने सिक्किमारक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपतिध्वजसम्मानं प्रदाय एवं उक्तवती। तया राज्ये विधिव्यवस्थायाः पालने सहैव आपत्प्रबन्धने सिक्किमारक्षकदलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य आरभ्य अस्य मासस्य एकत्रिंशत् दिनांकपर्यन्तं कर्णाटक गोवा केरल राज्यानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। अद्य सः कर्णाटके बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इत्येतस्य संस्थानस्य पञ्चचत्वारिंशद् वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते वैश्विक समारोहे सहभागं करिष्यति। तदनन्तरं सः कर्णाटकस्य दावणगेरे स्थितस्य विश्वविद्यालय बीडीटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयस्य प्लैटिनम जुबली इति महारजत जयन्त्युत्सवे अपि सहभागं करिष्यति। कर्णाटकस्य मुख्यमन्त्री सिद्धारमैया इत्यसौ गतवासरे लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिकरूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् सः प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिकरूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतन मुख्यमन्त्रिणः पदभारग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां षट्त्रिंशदधिकैकशताधिक विधायकानां समर्थनेन कांग्रेसदलस्य पूर्ण बहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीयर्थविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तर पश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपय क्षेत्रेष् अतितापघटनायाम् अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु, आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य उपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं सार्धसप्तवादने आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री

0: आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लों वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a 3-day visit to Karnataka, Goa and Keralam beginning today. The Vice President will attend the global celebration marking 45 years of the Art of Living Foundation in Bengaluru, Karnataka today. Later in the day, he will attend the Platinum Jubilee celebrations of University BDT College of Engineering at Davanagere, Karnataka. The CBI has arrested Giribala Singh in the Twisha Sharma death case. Giribala is Twisha's mother-in-law and a retired district and sessions judge. The arrest was made in Bhopal yesterday. Earlier, a CBI team questioned and searched Giribala's home for nearly 7 hours, following which she was arrested. Union Home Minister Amit Shah held a meeting yesterday to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in

0: टीम को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजाति समुदाय के विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही सरकार। गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड, जल संरक्षण में भी देश में पहला स्थान। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का दौर, कई जिलों के लिए चेतावनी जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा

0: शिक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजाति समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के दा नांग में आयोजित 2026 अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्रीस्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते। उन्होंने बताया कि पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती टीम ने 4 स्वर्ण पदकों सहित 9 पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया है, जो कि चैंपियनशिप के इतिहास में देश के अब तक के सर्वाधिक पदक हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि महिला कुश्ती दल ने भी 6 स्वर्ण पदकों के सहित 10 पदक जीतकर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मास्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के साथ हैं या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। मध्य प्रदेश ने देश भर में किसानों से सर्वाधिक गेहूं खरीदने का नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 13,46,000 से अधिक पंजीकृत किसानों से 1,03,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इसके साथ ही राज्य ने जल संरक्षण में भी देश में पहला स्थान हासिल किया है। जलगंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश में 2,00,000 से अधिक जल संरचनाओं पर काम किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गेहूं खरीदी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि
1: देश भर में सर्वाधिक गेहूं खरीदी का कार्ड किसी सरकार के द्वारा बनाया गया तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है। 13,46,000 से ज्यादा किसानों ने जिनका पंजीयन हुआ था उनके माध्यम से 1,03,000 मेट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदी हमारे द्वारा की गई। ये पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य द्वारा किसानों से सर्वाधिक खरीदी का हमारा अपना रिकॉर्ड है, जो पिछली बार के रिकॉर्ड को हमने तोड़कर बनाया।
0: भोपाल में त्रिषा शर्मा की मौत के मामले में सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरबाला सिंह को कल गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई की मुख्य सूचना अधिकारी ने बताया कि भोपाल स्थित घर में 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ और जांच के बाद सीबीआई ने गिरबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत बुधवार 27 मई को रद्द कर दी थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और जांच की स्थिति को देखते हुए उन्हें राहत देना उचित नहीं था। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सादगी, मितव्ययिता और सुशासन के मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव प्रदेश में एक नई कार्य संस्कृति स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव द्वारा प्रशासनिक खर्चों में संयम और संसाधनों के संतुलित उपयोग को लगातार प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कल अपने काफिले में वाहनों की संख्या को सीमित करते हुए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक ही बस में सवार होकर इंदौर से उज्जैन तक की यात्रा की। इस दौरान सुरक्षा और आवश्यक व्यवस्था के लिए केवल 3 अन्य वाहन ही साथ रहे। विदिशा जिले की सशक्त वाहिनी युवनी शिवानी रघुवंशी की सूझबूझ और संवेदनशीलता के चलते एक सराहनीय पहल हुई है। बिहार में अपने घर से भटककर विदिशा पहुंचकर इधर उधर घूम रही एक मासूम बच्ची को देखकर शिवानी ने तत्काल जिला प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद मासूम को सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया गया। गौरतलब है कि विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता के द्वारा सशक्त वाहिनी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्थानीय बालिकाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर और सजग बनाया जा रहा है। अभियान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 12वीं पास और न्यूनतम 18 वर्ष की युवतियों को प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर पुलिस भर्ती के लिए तैयार किया जाता है, जिसके तहत बालिकाओं को प्रतिदिन 2 घंटे की निःशुल्क लिखित कोचिंग और पुलिस लाइन में 1 घंटे की फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के साथ पोषण आहार भी प्रदान किया जाता है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर और सागर संभागों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान जबलपुर में सबसे तेज 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान खजुराहो और

नौगांव में 46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि राजगढ़, रीवा और दतिया सहित कई जिलों में लू का प्रभाव रहा। आज ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर कलां, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया और भिंड जिलों में तीव्र लू के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की और वज्रपात का अलर्ट है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और गुना सहित अन्य जिलों में लू और गर्म रात का असर बना रह सकता है। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात

सहित अन्य जिलों में लू और गर्म रात का असर बना रह सकता है। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक 31 मई को नवीन मांगलिक भवन में आयोजित की जाएगी। शिवपुरी जिले में 7 दिवसीय कृत्रिम अंग निर्माण एवं वितरण शिविर का आयोजन 31 मई तक किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में रात्रिकालीन कैंप लगाकर वन पट्टाधारी किसानों को ई विकास प्रणाली में पंजीयन किया जा रहा है। धार जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ऐतिहासिक मुंज सागर तालाब में सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीईआरएफ, होमगार्ड और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने तालाब परिसर से कचरा और खरपतवार हटाकर स्वच्छता का संकल्प लिया। डिंडौरी जिले में किसानों को अल्पकालीन फसल ऋण देने के लिए 30 जून तक किसान क्रेडिट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर जिले में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने एनएचएआई के निर्माणाधीन इंदौर राघवगढ़ सड़क का निरीक्षण किया। भोपाल में नगर निगम के द्वारा स्वच्छ जलापूर्ति के लिए 91 स्थानों से पानी के नमूने लेकर जांच करवाई जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो आज और कल मंडला जिले के दौरे पर रहेंगे। नीमच जिले में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। और पन्ना जिले के देवेंद्रनगर रेंज के अंतर्गत जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गई मां और बेटी भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई। वन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही सरकार। गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड, जल संरक्षण में भी देश में पहला स्थान। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का दौर, कई जिलों के लिए चेतावनी जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी महक कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता पृथ्वी का बढ़ता तापमान और प्रभाव। वार्ताकार है नंद किशोर अहिरवार।
1: पृथ्वी का बढ़ता तापमान यानी धरती के औसत सतह तापमान का लगातार बढ़ना 1880 से 2012 तक पृथ्वी का औसत तापमान 0.85 सेंटीग्रेड बढ़ चुका है और 2023-24 में हम 1.5 सेंटीग्रेड की सीमा को अस्थायी तौर पर पार कर चुके हैं। WHO के अनुसार 2029 में हर साल 1.2 सेंटीग्रेड से 1.9 सेंटीग्रेड तक ज्यादा गर्म होने की संभावना है। ग्रीन हाउस प्रभाव का एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो धरती को रहने लायक रखती है। दिक्कत तब आती है जब मानव गतिविधियों से ये गैसें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जीवाश्म ईंधन जलाने, उद्योग, गाड़ियों और जंगलों की कटाई से वातावरण में 1000 साल तक रहती है और 56.4% ग्रीन हाउस हीट ट्रैपिंग का कारण बनती है। भारत में अप्रैल 2026 में सबसे कठोर अप्रैल हीट वेव में से एक आई दिल्ली मुंगेश्वर में 52.9 सेंटीग्रेड तक तापमान दर्ज हुआ। हीट वेव अब 1950 के बाद से ज्यादा बार और तापमान तेज हो रही है। 2026 की शुरुआत में जनवरी अप्रैल में 50% ज्यादा एरिया जला। 163 मिलियन हेक्टेयर भारत में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आग बढ़ी। गर्म हवा ज्यादा नरमी रखती है। हर एक सेंटीग्रेड बढ़ोतरी पर

7% ज्यादा, इससे बाढ़, लैंडस्लाइड और फसल नुकसान बढ़ता है। EININO से भारत में 2026 का मानसून कमजोर रहने की भविष्यवाणी है। 800 mm के आसपास LPA 870 mm से कम है। अरब सागर में समुद्री तापमान लगातार बढ़ रहा है। 1987 से 2021 में 4.44 सेंटीमीटर बढ़ चुका समुद्र गर्म होने से थर्मल एक्सपेंशन होता है। गर्म समुद्र से ज्यादा नमी, ज्यादा तेज बारिश और तेज तूफान भूमध्य सागरीय साइक्लोन 2022-2024 में 3 साल में सबसे ज्यादा ग्लेशियर मास लॉस हिमालय ग्लेशियर पिघलने से गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना का फ्लो खतरे में है। मीथेन 2020 में 17 गुना बढ़ी। अगर 50 गीगा टन मीथेन निकलती तो ग्लोबल इकोनॉमी को 60 ट्रिलियन का नुकसान। गर्मी से गेहूं धान की पैदावार घटती है। BMI के अनुसार EININO और गर्मी से FY27 में GDP 6% तक गिर सकती है। महंगाई 5.6%, हिमालय ग्लेशियर सिकुड़ना, हीट स्ट्रेट से भारत का 4-6% GDP सालाना नुकसान, काम के घंटे, सेहत, खेती सब पर असर। IPCC कहता है कि मानव जनित गैसें ही मुख्य वजह है। अगर उत्सर्जन इसी तरह चला तो 2030 तक आधी कटौती जरूरी है कि 1.5 सेंटीग्रेड बचाने के लिए 2026 पर EININO साल हो सकता है, जिससे 2027 सबसे गर्म साल बनने की 19% चांस है। गर्म समुद्र और जमीन की वजह से जानवरों, पौधों को ठंडे इलाकों या ऊंचाई पर जाना पड़ रहा है। इनवेसिव प्रजातियां तेजी से फैल रही हैं। भारतीय महासागर में समुद्री हीट वेव ज्यादा तीव्र और बार बार हो रही है। इससे कोरल ब्लीचिंग, समुद्री जीवों की मौत, मछली पालन पर असर है। 2026 की शुरुआत में 44 बिलियन हेक्टेयर एशिया में जंगल जले। भारत, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित। सूखे की वजह से कृषि आग फैलना आसान हो गया है। पुरानी सोच थी कि गर्मी सूखा, अब रिसर्च बताती है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दुनिया के कई हिस्सों में ज्यादा खतरनाक हो रही है। आर्कटिक बर्फ पिघलती है, गहरी समुद्र की सतह दिखती है, ज्यादा सूरज की गर्मी दिखती है और पिघलती है। तापमान पैटर्न बदलता है, लो क्लाउड कम होता है, ज्यादा धूप धरती तक आती है। समुन्दर और गर्म समुन्दर स्तर सैकड़ों साल तक ऊंचा रहता है। CO2 ऊपर जाकर स्पीयर को ठंडा करता है, पर ठंडी स्ट्रोपियर कम गर्मी अंतरिक्ष में भेजती है। नतीजा निचले वातावरण में गर्मी फंसती है और सरफेस वार्मिंग तेज होती है। भारत में EININO से मानसून कमजोर, खाद और ऊर्जा की सप्लाई सीमित, महंगाई बढ़ेगी, खपत धीमी होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मानता है कि EININO झटका भारत के GDP को 0.1% घटाता है। मार्च 2026 में बिजली खपत सिर्फ 0.9% बढ़ी। जनवरी फरवरी में हीट डिमांड ज्यादा थी। गर्मी से AC की डिमांड बढ़ती है पर पानी कम होता है। अगर ईस्ट साइबेरियन सागर से 50 गीगा टन मीथेन 10 साल में निकली तो ग्लोबल इकोनॉमी को 60 ट्रिलियन का नुकसान, जो आज की ग्लोबल इकोनॉमी के बराबर है। समुद्र ही नहीं, 19 बड़ी बंद झीलों में से 13 का तापमान 1 सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ सकता है। अगर उत्सर्जन हाई रहा, कई में लंबी लंबी समुद्री हीट वेव आएंगी और 1.5 सेंटीमीटर पर रोकने से इनकी तीव्रता कम हो सकती है। WHO के अनुसार मई जुलाई 2026 में 61% चांस है कि EININO का, जो पहले से गर्म ग्रह है, और गर्मी जोड़ेंगे। मार्च 2026 में रिकॉर्ड कम समुद्री बर्फ। 2026 में विशेष रूप से कठिन साल हो सकता है। 2026 में भारत में अप्रैल की हीट वेव रिकॉर्ड लेवल की रही है। फील लाइक 44 सेंटीग्रेड से 46 सेंटीग्रेड वाला तापमान शरीर पर सीधा लोड डालता है। लू, डिहाइड्रेशन, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। भारत में गर्मी से सालाना 4-6% GDP का नुकसान होता है। काम के घंटे कम, अस्पताल का खर्चा ज्यादा।
चिकनगुनिया के मच्छर ज्यादा समय तक और ज्यादा ऊंचाई पर जिंदा रहते हैं। शोध कहता है कि सूखा गर्म के बजाय गीली गर्म एक्सट्रीम ज्यादा बढ़ेगी। भारत के पूर्वी और

0: दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश का खतरा एक तरफ बढ़ा, बाढ़ दूसरी तरफ सूखा, दोनों एक ही सीजन में। MID की भविष्यवाणी है कि 2026 का मानसून जून सितंबर में सामान्य से कम रहेगा, क्योंकि EININO लौट रहा है। कृषि पर सीधा असर, क्योंकि भारत की 60% खेती मानसून पर निर्भर है। हिमालय ग्लेशियर पिघलने से गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना का पानी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। भूजल 4 सेंटीमीटर साल की रफ्तार से गिर रहा है। झीलों में बनने वाली मीथेन का कम से कम आधा सीधे हवा में जाता है। NASA का अनुमान है कि 21वीं सदी के मध्य में परमाफ्रॉस्ट से मीथेन का बड़ा उछाल आएगा, जो अभी क्लाइमेट मॉडल में शामिल नहीं है। 2022-2024 में 3 साल का सबसे बड़ा ग्लेशियर मास लॉस हुआ है। ग्लेशियर झीलें बनकर अचानक फट रही हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड, बाढ़ बढ़ी है। हिमालय को तीसरा ध्रुव कहते हैं। ये एशिया की 2 बिलियन लोगों की पानी की टंकी है। टंकी खाली हुई तो नदियों का बहाव बदल जाएगा। भारत में गर्मी प्लस का मानसून बराबर फसल घटेगी। pH घट रहा है, इससे सीप कोरल फ्लेक्टन का कैल्शियम का खोल बनाना मुश्किल होता है। कोरल ब्लीचिंग सिर्फ गर्मी से नहीं, खट्टेपन से भी। मरीन हीट वेव से मछली मरना और बायोडायवर्सिटी लॉस पहले ही हुआ है। बढ़ता तापमान एक रिस्क मल्टीप्लायर है। ये अकेले कुछ नहीं करता है, पर मौसम, पानी, खेती, पैसा, हेल्थ, पलायन, हर चीज के रिस्क को बड़ा और तेज कर देता है। और सबसे ट्रिकी हिस्सा, कुछ फीडबैक एक बार शुरू हो तो सदियों तक चलते हैं, इसलिए हमको बढ़ते तापमान पर नियंत्रण रखना चाहिए।
1: अभी आप हिंदी महक कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता सुन रहे थे, पृथ्वी का बढ़ता तापमान और प्रभाव। वार्ताकार थे नंद किशोर अहिरवार। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: कार्यक्रम का पहला नगमा लता मंगेशकर की आवाज में था। फिल्म का नाम था दाग, बोल साहिर लुधियानवी के थे और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जब याद किसी की आती है। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, आवाज थी महेंद्र कपूर की, गीत के बोल राजा मेहंदी अली खां के थे और संगीत निर्देशन था मदन मोहन का।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी को फिल्म तुमसे अच्छा कौन है में। बोल हसरत जयपुरी के हैं और संगीत है शंकर जयकिशन का।

अभी आपने हसरत जयपुरी की रचना को मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। संगीत था शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है।

0: AIR at 90.
1: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म कभी अजनबी थे में। गीत रचना देव कोहली की है और संगीत है विजय सिंह का।

अभी आपने लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर को फिल्म कभी अजनबी थे में सुना। गीत रचना रविंद्र पीपट की थी और संगीत था विजय सिंह का। आइए अब सुनते हैं फिल्म दर्द का रिश्ता का ये गीत। आवाज है लता मंगेशकर की, गीत रचना आनंद बख्शी की है और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म दर्द का रिश्ता में सुना। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत था राहुल देव बर्मन का। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अनुराधा पोडवाल और शब्बीर कुमार की आवाज में फिल्म

0: लव मैरिज का ये गीत अनु मलिक की गीत रचना है, संगीत है हसरत जयपुरी का।
1: नीली छतरी वाले

फिल्म लव मैरिज किसी गाने के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त

0: न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटन्स पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और

0: बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Santa's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naulekar, would submit its report within a year.

0: माल निकालना।
1: रिमूविंग इनफिल्ट्रेटर्स फ्रॉम द कंट्री इज अ कमिटमेंट ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड फॉर दिस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ डेमोग्राफिक चेंज कमेटी। दिस हाई पावर्ड कमेटी विल एग्जामिन द रीजन बिहाइंड द डेमोग्राफिक चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस अक्रॉस द कंट्री एंड लुक इन टू द पॉसिबल सॉल्यूशंस। इट विल ऑल्सो कंसिडर वेयर देयर इज अ नीड टू ब्रिंग एनी न्यू लॉ रिगार्डिंग दिस इश्यू।
0: बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करें।
2: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive

अभी आप शास्त्रीय संगीत सुन रहे थे। इसमें आज आपने पंडित वीजी जोग का वायलिन वादन सुना। राग था अहीर भैरव। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज कलाकार हैं बालक दास, ढोलक पर है संजय भाटे और बैंजो पर है लखनलाल। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं ये देवी भजन।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: आइए सुनते हैं बुंदेलखंड महिमा पर लोकगीत। कलाकार हैं बालक दास।

0: Akashwadi at 90.
1: आइए सुनते हैं बालक दास से जल संरक्षण पर लोकगीत।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हील्स, मदर की माता।
2: आइए सुनते हैं लोक शैलीबद्ध लोकगीत, कलाकार हैं बालक दास।

इसी लोकगीत के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इसमें आज कलाकार थे बालक दास, ढोलक पर थे संजय भाटे और बैंजो पर थे लखनलाल। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियों का। कार्यक्रम के शुरू में सुनते हैं फिल्म बरसात की रात का ये कव्वाली। आवाजें हैं मन्ना डे, आशा भोसले, बत्तीश, सुधा और साथियों की। गीत के बोल साहिर लुधियानवी के हैं और संगीत है N दत्ता का।

अभी आपने बरसात की रात फिल्म की कव्वाली सुनी। आवाजें थी मन्ना डे, आशा भोसले, बतेश, सुधा और साथियों की। संगीत एन दत्ता का था और गीत के बोल थे साहिर लुधियानवी के।

0: AIR at 90.
1: आइए सुनते हैं हकीकत फिल्म की कव्वाली। आवाजें हैं मोहम्मद रफी, भूपेंद्र, तलत महमूद, मन्ना डे और साथियों की। संगीत नौशाद का है और कव्वाली के बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने।

घबरा के नजर लाख बचाई होगी। उसने घबरा

अभी आपने मोहम्मद रफी, भूपेंद्र, तलत महमूद, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में ये कव्वाली सुनी। फिल्म का नाम था हकीकत, बोल शकील बदायूनी के थे और संगीत था नौशाद का। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में ये कव्वाली। फिल्म का नाम है दुल्हन एक रात की, शब्द मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आपने दुल्हन एक रात की फिल्म की कव्वाली सुनी। आवाजें थी लता मंगेशकर और साथियों की। मजरू सुल्तानपुरी की गीत रचना थी, तर्ज बनाया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म दिल ही तो है की कव्वाली। आवाजें हैं आशा भोसले और साथियों की।

अभी आपने फिल्म दिल ही तो है की कव्वाली सुनी। आवाजें थी आशा भोसले और साथियों की। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म साधना की ये कव्वाली। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और बलवीर की।

फिल्म साधना केसी कव्वाली के साथ ही फिल्मी कव्वालियों का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी।

0: दिनों में हमारा अगला प्रसारण होगा।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख है नवीन श्रीवास्तव का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। ग्वालियर जिले के लिए यह महीना मिला जुला रहा। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ग्वालियर में राज्य स्तरीय पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादक सम्मेलन का शुभारंभ करने भी पहुंचे। उन्होंने सम्मेलन में मौजूद सभी को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से जुड़कर प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने में सहयोग देने का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने ग्वालियर में पशुओं के केयर एंड वेलनेस सेंटर खोलने, पशु स्वास्थ्य एवं उपचार केन्द्र का उन्नयन करने और डबरा में नया पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के साथ अन्य अतिथिगणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ऋषि गालव विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार भूमि पूजन किया। गौरतलब है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण मध्य भारत शिक्षा समिति के द्वारा ग्वालियर जिले के बेला गांव के अंतर्गत लगभग 55 बीघा जमीन पर 110 करोड़ रूपये की लागत से कराया जा रहा है। अगले वर्ष गुरु पूर्णिमा से यहां शैक्षणिक सत्र शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। संपूर्ण विश्वविद्यालय 3 वर्ष में बनकर तैयार होगा। ग्वालियर जिले में भी जनगणना कार्य निदेशालय के द्वारा निर्धारित जनगणना कार्यक्रम के तहत जनगणना का प्रथम चरण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी रुचिका चौहान ने शहर में चल रहे जनगणना कार्य का बीते दिनों औचक निरीक्षण किया। उन्होंने न्यू दर्पण कॉलोनी में प्रगणकों द्वारा की जा रही जनगणना की वस्तुस्थिति को जाना। गौरतलब है कि बीते 1 मई से शुरू हुई जनगणना का प्रथम चरण 30 मई तक चलेगा। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हाल ही में सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन जिले में किया गया। इस श्रमदान कार्यक्रम के तहत लक्ष्मीगंज स्थित ऐतिहासिक मेहराब साहब की तलैया पर सांसद भारत सिंह कुशवाहा की अगुवाई एवं कलेक्टर रुचिका चौहान की प्रेरणादायक मौजूदगी में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजनों ने एक साथ तलैया की सफाई में अपना योगदान दिया। ग्वालियर जिले में भी भूमि नामांतरण प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है। इसके साथ ही इस व्यवस्था से नागरिक सुविधाओं को अधिक सहज और प्रभावी बनाया गया है। साइबर तहसील 2.0 वर्तमान में जिले की सभी तहसीलों में प्रभावी रूप से संचालित हो रही है। वहीं जिले के विकास खंड घाटी गांव की ग्राम पंचायत आरोन में जलगंगा संवर्धन अभियान एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास 2.0 के तहत यहां बने कोलीझोरा तालाब ने यहां के 50 हेक्टेयर बंजर नुमा सूखे क्षेत्र के रकबे को उपजाऊ खेतों में बदल दिया है। अब इन खेतों में गेहूं और सरसों की फसलें लहलहाने लगी है। ग्वालियर जिले में समर्थन मूल्य पर सुव्यवस्थित ढंग से गेहूं का उपार्जन जारी है। जिले में गेहूं उपार्जन के लिए 40 केंद्र संचालित हैं। 22 मई तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में 7,448 किसानों से 9,97,494 क्विंटल गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। बीते दिनों प्रदेश के जल संसाधन एवं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पेयजल प्रबंधन के साथ

0: साथ जनहित के अनेक मुद्दों पर विस्तार से समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पिछले दिनों न्यायमूर्ति गुरुपाल सिंह अहलूवालिया ने संत योगी हुजूर मालिक साहब के जीवन पर आधारित पुस्तक दिव्य चरितामृत का विमोचन किया। आध्यात्म निकेतन में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के भी उपस्थित थे। इसकी अध्यक्षता संत कृपाल सिंह ने की। कलेक्टर रुचिका चौहान की पहल पर हुए शक्ति दीदी नवाचार के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इस नवाचार के तहत जरूरतमंद महिलाओं को पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर की नौकरी दिलाई जा रही है। जिले में वर्तमान में शक्ति दीदी के तहत पहले से ही 112 महिलाएं ये भूमिका सफलतापूर्वक निभा रही हैं। पिछले दिनों ग्वालियर में आदर्श गौशाला लाल टिपारा के बायोगैस प्लांट का राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने जायजा लिया। गौरतलब है कि गाय के गोबर से सीएनजी बायोगैस उत्पादन के क्षेत्र में यह प्रदेश के सबसे बड़े प्लांट में से एक है। आदर्श गौशाला लाल टिपारा ने गौवंश के प्रबंधन के साथ साथ गाय के गोबर व कचरे से बायोगैस उत्पादन कर देश प्रदेश के लिए अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। ग्वालियर जिलेवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तथा प्रशासनिक फैसलों तथा सरकारी और जनहित से जुड़ी हर आधिकारिक जानकारी सीधे आपके मोबाइल फोन पर मिलेगी। कलेक्टर ने हाल ही में इससे संबंधित एक व्हाट्सएप चैनल का शुभारंभ किया है। ग्वालियर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख था नवीन श्रीवास्तव का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा। इसमें आज सुनिए इस कार्यक्रम का चौथा भाग। प्रवक्ता एवं प्रस्तुतकर्ता हैं महेश शर्मा।

बापूजी की आत्मकथा से आज का प्रसंग है हाई स्कूल में। ब्याह के समय में हाई स्कूल में पढ़ता था। उस समय हम तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जेठे भाई ऊपर के दर्जे में थे और जिन भाई के ब्याह के साथ मेरा ब्याह हुआ था वे मुझसे एक दर्जा आगे थे। ब्याह का परिणाम यह हुआ कि हम दो भाइयों का एक वर्ष बेकार गया। मेरे भाई के लिए तो परिणाम इससे भी बुरा रहा। ब्याह के बाद वे स्कूल में पढ़ ही ना सके। कितने नौजवानों को ऐसे अनिष्ट परिणाम का सामना करना पड़ता होगा भगवान ही जाने। विद्याभ्यास और विवाह दोनों एक साथ तो हिंदू समाज में चल ही सकते हैं। मेरी पढ़ाई चलती रही। हाई स्कूल में मेरी गिनती मंद बुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी। शिक्षकों का प्रेम मैं हमेशा ही पा सका था। हर साल माता पिता के नाम स्कूल से विद्यार्थी की पढ़ाई और उसके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनमें मेरे आचरण या अभ्यास के खराब होने की टीका कभी नहीं हुई। दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले और पांचवी तथा छठी कक्षा में क्रमशः प्रतिमास 4 और 10 रुपयों की छात्रवृत्ति भी मिली थी। इससे मेरी होशियारी की अपेक्षा भाग्य का अंश अधिक था। ये छात्र

वृत्तियां सब विद्यार्थियों के लिए नहीं थी, बल्कि सूरठ वासियों में से सर्वप्रथम आने वालों के लिए थी। 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में उस समय सूरठ प्रदेश के विद्यार्थी कितने हो सकते थे? मेरा अपना ख्याल है कि मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था, पर अपने आचरण के विषय में मैं बहुत सजग था। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आ ही जाती थी। मेरे हाथों कोई भी ऐसा काम बने जिससे शिक्षकों को मुझे डांटना पड़े अथवा शिक्षकों का वैसा ख्याल बने, तो वह मेरे लिए असहाय हो जाता था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र माना गया, इसका मुझे बड़ा दुख रहा। मैं खूब रोया। यह प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। दूसरा एक प्रसंग सातवीं कक्षा का है। उस समय दोराब जी ऐदल जी गीमी हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रेमी थे, क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, व्यवस्थित रीति से काम करते और लेते और अच्छी तरह पढ़ाते थे। उन्होंने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मुझे इनसे अरुचि थी। इनके अनिवार्य बनने से पहले मैं कभी कसरत क्रिकेट या फुटबॉल में गया ही न था। न जाने मेरा शर्मीला स्वभाव ही एकमात्र कारण था। अब मैं देखता हूं कि वह अरुचि मेरी भूल थी। उसमें मेरा यह गलत ख्याल बना हुआ था कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं है। बाद में मैं समझा कि विद्याभ्यास में व्यायाम का अर्थात शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के समान ही स्थान होना चाहिए। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे नुकसान नहीं हुआ। उसका कारण यह रहा कि मैंने पुस्तकों में खुली हवा में घूमने जाने की सलाह पढ़ी थी और वह मुझे रुचि थी। इसके कारण हाईस्कूल की उच्च कक्षा से ही मुझे हवाखोरी की आदत पड़ गई थी। वह अंत तक बनी रही। टहलना भी व्यायाम तो है ही, इससे मेरा शरीर अपेक्षाकृत सुगठित बना। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधा घर पहुंचता और सेवा में लग जाता। जब कसरत अनिवार्य हुई तो इस सेवा में बाधा पड़ी। मैंने विनती की कि पिताजी की सेवा के लिए मुझे कसरत से छुट्टी दी जाए, पर गीमी साहब छुट्टी क्यों देने लगे। एक शनिवार के दिन सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। आसमान बादलों से घिरा था, इसलिए समय का कोई अंदाज नहीं रहा। मैं बादलों से धोखा खा गया। जब कसरत के लिए पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन गीमी साहब ने हाजिरी देखी तो मैं गैर हाजिर पाया गया। मुझसे कारण पूछा गया। मैंने सही सही कारण बता दिया। उन्होंने उसे सच नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आने ठीक रकम का स्मरण नहीं है का जुर्माना किया। मैं झूठा ठहरा। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं कैसे सिद्ध करूं कि मैं झूठा नहीं हूं? कोई उपाय न रहा। मन महसूस कर रह गया, रोया, समझा कि सच बोलने वाले और सच्चा काम करने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के समय में इस तरह की मेरी यह पहली और आखिरी गफलत थी। मुझे धुंधली सी याद है कि आखिर में मैं वह जुर्माना माफ करा सका था। मैंने कसरत से तो मुक्ति प्राप्त कर ही ली। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा, इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सजा नहीं भोगनी पड़ी।
पर दूसरी गलती की सजा मैंने भोगी।

मैं नहीं जानता कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है। यह गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया था, पर ठेठ विलायत जाने तक यह बना रहा। बाद में और खास करके दक्षिण अफ्रीका में, जब मैंने वकीलों के तथा दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे, तो मैं शर्माया और पछताया। मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पके घड़े पर कहीं गला जुड़ता है। जवानी में मैंने जिसकी उपेक्षा की, उसे मैं आज तक नहीं कर सका। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है। मेरी तो यह राय बनी है कि बालकों को चित्रकला पहले सीखनी चाहिए। जिस तरह पक्षियों, वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से उन्हें पहचानता है, उसी तरह अक्षर पहचानना सीखे और जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे, तभी अक्षर लिखना सीखे, तो उसके अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर होंगे। अभी आप बापूजी की आत्मकथा से आज का प्रसंग सुन रहे थे हाई स्कूल में, और अब बापूजी के प्रिय भजन।

अभी आप कार्यक्रम गांधी चर्चा सुन रहे थे। प्रवक्ता एवं प्रस्तुतकर्ता थे महेश शर्मा। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी भजन का कार्यक्रम। कलाकार हैं मोहम्मद रफी।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

इसी भजन के साथ ही गैर फिल्मी भजनों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विनीता ओमर का प्यार भरा नमस्कार। ये पहले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। ये ईमेल हमें मिला है जय जैनेन्द्र श्रोता संघ परभड़ी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश, प्रितेश संघई और पूरा संघई परिवार। डोगर गांव छत्तीसगढ़ से ये ईमेल मिला है राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये का। जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनू, देवांशी, आराधना, रोनिका यादव का। संभलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का। सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा का। ये ईमेल हमें मिला है महाराष्ट्र से अनिल बुराडे, उषा, अनुश्री, धनश्री का। शाहजी नगर देगलूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे का। ये पत्र हमें मिला है जिला बोरखेड़ा चित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मूरत, नेहा मूरत, दीपक, मयंक मूरत, चेतन नहाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुंज मूरत का। महादेव घाट अमलेश्वर से ये पत्र मिला है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तानी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति और रियांश ठाकुर का। दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर सांवले, श्रीमती रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना, सारूवी एवं मास्टर प्रणव सांवले का। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद का। हलवाई यान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर का। तो आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं फिल्म ये रात फिर ना आएगी का गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। गीत रचना SH बिहारी की है और संगीत है OP नैयर का।

श्रोताओं, आइए पहले सुनते हैं फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का गीत। आवाज मोहम्मद रफी की है, गीत मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं, अगले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना, प्रियल और दिवांशी विश्वकर्मा का। बटेडो रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग का। ये ईमेल हमें मिला है मोहम्मद सादिक खत्री का। मामूल वाड़ी महाराष्ट्र से सोपान टाइडे, वसंतराव भोजने, पीएस नहावरकर। ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का। ये ईमेल हमें मिला है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध का। ये पत्र हमें मिला है महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खड़से, रक्षा ताई खड़से, ललिता संजना, गणेश और कार्तिक खड़से, मालती चौधरी, सावित्री प्रयाग चौधरी का। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन का। गौतम नगर जिला नादेड़ से प्रभाकर जोधले और आरती जोधले का। ये पत्र हमें मिला है दत्तरंगी से भागवत वर्मा, लवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिग्नी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी, बिलसराया से रामकेश चक्रवर्ती, पुष्पेन, सोनम गोल्डी, दीप्ति अनुज और ओमजी चक्रवर्ती का। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष का। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डांगला परिवार का। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म ये रात फिर ना आएगी का गीत। आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की है। गीत रचना SH बिहारी की है और संगीत है OP नैयर का।

श्रोताओं, अगले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हेना, हर्षित खुशी गोस्वामी का। झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया का। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का। ये ईमेल हमें मिला है जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमत कौर, मनु। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का। फजालिका पंजाब से भूषण खेरा, विशाल खेरा, विशु खेरा, लाडो खेरा, शालनी खेरा, त्वांची खेरा का। सतवीर सिंह बजरनिया से देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारिया का। ये पत्र हमें मिला है भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खड़चे। गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी का। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संजीव वर्मा, रजन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा, प्रकाश सोनी, पवन यादव, सत्तु सोनी, अरुण कनौजी।

या संजय, सोनी, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा का, दुर्गा चौक रामसेन मध्य प्रदेश से राजू नामदेव का, ये पत्र हमें मिला है देवेंद्र कुमार राजपूत, राजेंद्र कुमार राजपूत, ये हैं ग्राम मवैया तहसील नौगांव जिला छतरपुर से। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म पारस का ये गीत, आवाज मुकेश और लता मंगेशकर की है, बोल इंदीवर के।

श्रोताओं, अगले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज और आयुषी गुप्ता का, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास और आशा देवी का, हिंदुस्तान रेडियो मित्र पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष विश्वकर्मा का, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामडे, करुणा मीना अश्वनी और विपुल कामडे का, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिवांशी विश्वकर्मा, ये है ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से। और इस गीत के लिए हमें पत्र मिला है ग्राम गुना वार्ड नंबर 15 जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजा राम अहिरवार, राधेलाल अहिरवार, शारदा दीपा, बेनीबाई, सीमा, निशु और प्रवीण अहिरवार का, महाराष्ट्र से शत्रुघ्न ढाडे, वाल्मीकि ढाडे, नीनाजी ढाडे, स्वप्निशील और अजय शिरोडकर का, यश चौहान, अंश चौहान, संदीप, माधवी चौहान, ये हैं बनोसा दुर्गापुर अमरावती जिला अमरावती से, अयूब खान, ईरम गुड़िया, शुहेब खान और नावेद खान, ये है करुला मुरादाबाद से, सिंघौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री का। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म हम दोनों का ये गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। साहिर लुधियानवी की गीत रचना है और संगीत है जयदेव का।

फिल्म हम दोनों के सिकाने के साथ ही श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करने की अपनी रेडियो मित्र विनीता ओमर को अनुमति दीजिए। नमस्कार। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजने वाले हैं, समय हुआ है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का। सुनिए भोपाल केंद्र से अगला कार्यक्रम।

0: श्रोताओं नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, सिर्फ जरूरतें पूरी करना ही जिंदगी नहीं है, कुछ ख्वाहिशों के साथ जीना भी जिंदगी है। यूं तो हम सभी जीते हैं अपनों के लिए, मगर कुछ खुशियां औरों के नाम करना भी जिंदगी है। सबसे लड़कर जमाने से आगे बढ़े तो क्या बढ़े, कभी कदम से कदम मिलाकर चलना भी जिंदगी है। अपनी खुदगर्जी पर गुरूर करके क्या साबित होगा, कभी औरों के दर्द को समझना भी जिंदगी है। इसी सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचार के साथ आइए शुरू करते हैं आज का फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। नमस्कार जी। जी जी, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मैं ग्राम संदलपुर से।
0: अच्छा, आवाज कम आ रही है, चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं अब। ठीक है,
1: भाई
0: जी जी बताइए।
1: मेरे को गाना सुनना है।
0: हाँ जी, किस फिल्म का गाना सुनना है और कौन सा गीत की बोल बताइए।
1: पिक्चर गाना नशा की आवाज में, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
0: छोड़ दे सारी दुनिया, ठीक है।
1: पुराने गाने पसंद है मेरे को।
0: जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं पानी की खेती करता हूँ। देसी पान होता हमारे गाँव में, संदल पर माधरी पास गाँव मेरे ग्वाली के पास में।
0: जी जी जी, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आप कार्यक्रम सुनते रहिए और अपनी पसंद का गीत।
1: आप मैडम कौन बोल रही हैं?
0: जी मैं प्रियंका बात कर रही हूँ।
1: दोस्तों को नाम देना चाहता हूँ, गाना सुनना चाह रहे हैं मेरे साथ लोग।
0: जी बिल्कुल, उनसे कहिए, फोन करेंगे तो हम बिल्कुल उनकी फरमाइश शामिल करेंगे।
1: नाम बोल देना, मैं नाम बता रहा हूँ।
0: जी दो नाम बता दीजिए जल्दी से।
1: गुड्डू मिश्रा, संतर बराज से।
0: हाँ जी, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार
1: नमस्कार बहन जी।
0: जी। कौन बात कर रहे हैं बताइए, अपना नाम और अपनी पसंद भी बताइए।
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से बहन जी आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ।
0: जी, मांगीलाल जी, स्वागत है आपका। बताइए, कैसे हैं आप?
1: बस दीदी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ,
0: जी
1: और इस वर्ष से यही आशा करता हूँ कि हमारी दीदी भी ठीक है।
0: जी बिल्कुल, आपकी दुआएं हैं तभी हम इतने स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। जी बताइए, दुआएं तो हमेशा काम करती ही है मांगीलाल जी, बताइए, है ना?
1: सही है, दुआ ही सबसे बड़ी बात है, दुआ बहुत
0: जी,
1: बड़ी चीज
0: एक बार दवा काम करना चाहे भूल जाए, लेकिन
1: भूल
0: दुआएं
1: जाए,
0: कभी
1: लेकिन
0: न
1: दुआ नहीं
0: कभी,
1: भूलेगी।
0: जी,
1: दुआ
0: दुआएं कभी न कभी जरूर काम
1: सही है,
0: करती
1: सही
0: हैं।
1: है,
0: जी
1: लेकिन इंसान को सच्चे दिल से देना चाहिए।
0: बिल्कुल, तभी तो वो जल्दी भी
1: हाँ
0: होती है, जो सच्चे दिल से दी जाती है वो बहुत
1: जी
0: जल्दी भी परिणाम देती है हमें।
1: जी सही है बहन
0: जी
1: जी।
0: मांगीलाल जी, बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए।
1: बहन जी, फिल्म का नाम तो है तलाश,
0: जी
1: आज क्या जिमली आत्मा।
0: बहुत अच्छी पसंद है आपकी, बहुत
1: हाँ बहन जी,
0: पुरानी।
1: बढ़िया है पुराना गाना, और मैं भी आकाशवाणी भोपाल का बहुत पुराना और नियमित सोता हूँ।
0: जी धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं जिला दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: दमोह से कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम भी तो बताइए।
1: मल्थुराम केवलारी अहरवाल।
0: अच्छा जी, अब अपनी पसंद का गीत भी बता दीजिए।
1: सुना दीजिए, देख देख मेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान।
0: अच्छा, क्यों आप इतने निराश क्यों हैं?
1: हाँ, मैं राष्ट्रीय गीत सुनता हूँ सर, श्रीमान जी अच्छे अच्छे हाँ तो सुनता हूँ आकाशवाणी से,
0: जी,
1: और आज से नहीं, मैं 85 से सुनता चला आ रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हमें सुनकर बड़ी खुशी होती है कि आप 1985 से तो सुन ही रहे हैं, तो और रेडियो भी अपना जो सफर है वो 90 वर्षों का सफर अभी हाल ही में जून में पूरा करने वाला है, और आप हमारे इतने
1: हाँ,
0: पुराने पुराने
1: आज
0: श्रोता हैं।
1: श्रीमान जी, मेरा निवेदन है, मैंने बड़ी मुश्किल से नंबर पकड़ पाया है आज, और मैंने अभी 4-5 बार लगाया, अभी नंबर तो लगा लेकिन उठा नहीं है,
0: जी, क्योंकि समय
1: लेकिन
0: नहीं
1: मैं
0: हुआ
1: सोचता
0: होगा।
1: था कि यार नंबर उठ नहीं रहा है।
0: जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया, बहुत अच्छा
1: हाँ
0: लगा, और
1: जी,
0: इसी तरह कोशिश करते रहिए और कार्यक्रम में अपनी पसंद हमें बताकर हमें भी
1: हाँ
0: खुशी दीजिए। धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बता दीजिए।
0: कि कहते हैं नजरों से चाहत का इजहार करते हैं और हम प्रेमी आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल को बेहद प्यार करते हैं।

0: बेसब्री से इंतजार करते हैं।
1: जी तो आपका स्वागत है, हमारा भी बेसब्री से इंतजार था कि कब आपकी हम शायरी सुने हमको।
0: और कहते हैं खुदा करे किसी से फिदा ना करे, और फिदा करे तो फिर जुदा ना करे। मैं बता दूं, ग्राम कल्पा जिला सतना से आपका जाना पहचाना चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना हिंदुस्तानी कलाकार ईडन गार्डन अशोक वाटिका कल्पा से बोल रहा हूँ।
1: जी आपका स्वागत है महमूद जी, अब अपनी फरमाइश भी बताइए, क्योंकि आपकी ऐसी रंगीन शायरी से हम और हमारे श्रोता तो गदगद हो गए, खुश हो गए। अब हम आपको खुश करना चाहते हैं, आपकी पसंद का गीत सुनाकर।
0: समझ लो कि ईद तो है ही, आज ईद उल अजहा का त्योहार है, और समझ लो एक ईद और हो गई, आपसे बात हो गई।
1: जी तो मुबारक हो आपको ईद की, और इस मुबारक मौके पर आपके लिए क्या पेश किया जाए बताइए।
0: हाँ बस गाना सुनना है मैडम जी, थोड़ी सी बात हम कहें कर लें सभी श्रोता बंधुओं को, हिंदुस्तानी जितने हमारे देशवासी हैं सभी को दिल से जो है तो नमस्कार और मुबारकबाद, और आप पूरे स्टाफ को।
1: जी जी शुक्रिया।

0: इस मुबारक मौके पर आपके लिए क्या पेश किया जाए बताइए।
1: हाँ बस गाना सुनना है मैडम जी, थोड़ी सी बात हम कहें कर लें सभी श्रोता बंधुओं को, हिंदुस्तानी जितने हमारे देशवासी हैं सभी को दिल से जो है तो नमस्कार और मुबारकबाद, और आप पूरे स्टाफ को।
0: जी जी शुक्रिया
1: जी जी, और ज्यादा श्रोताओं के नाम लेना बिल्कुल उचित नहीं है, बस प्रेम दास बाबा जी के नाम रहेगा और गाना रहेगा। अब गाना आप वही सुनवा दो, तीसरी आंख का अगर मिल जाए तो बहुत सही रहेगा।
0: बोल बता दीजिए।
1: गीत के बोल हैं ईद।

0: आजा।
1: एक फरमाइश
0: तो मैडम जी सही रहेगा, नहीं फिर दूसरा बता दूं, क्योंकि गाना ये जो है तो शत्रुघ्न सिन्हा की शायद है, ऐसे दो तीन लोग मिलकर के इस फिल्म को बनाए, तीसरी आंख पुरानी।
1: जी जी, तो एक और बता दीजिए, अगर ये मिल गया तो हम इसे पहले सुना देंगे, और कभी खुदा न खास्ता न मिल पाया
0: तो फिर गाना फिर एक और सुनवा दो, गेमलर फिल्म का है, पुरानी फिल्म का गेमलर।
1: अच्छा,
0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में है, और गीत के बोल है, अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, तेरी सांसों में मेरी सांस घुल जाए। और गीत अवश्य शामिल करिएगा, और मैं बता दूं यहाँ शीत लहर का प्रकोप जारी है, क्योंकि सतना जिले के कल्पा में
1: शीत लहर चल रही है।
0: हाँ हाँ, गर्मी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा, बिल्कुल मीडियम, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे चारों तरफ से घेरे हुए हैं बिल्कुल, और नदी नाले चारों तरफ से पानी का अंबार लगा हुआ है, इसीलिए जो है हल्की फुल्की ठंडी महसूस होती है।
1: बहुत खूब, आप खुश नसीब है कि इतनी गर्मी में आपको इतना ही शीतलता मिल रही है।
0: मैडम जी, गीत आप शामिल करिए, काफी दिनों में लगा, 15-16 दिन हो गए, एक हफ्ते के बाद ही लगा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पसंद बिल्कुल आपके रेडियो सेट पर। धन्यवाद
0: जी जी, नमस्कार दिल से।
1: नमस्कार।

0: हेलो, नमस्ते मैडम।
1: जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
0: पिंडरी जिला मंडला से सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ मैडम।
1: मंडला से कौन बात कर रहे हैं?
0: सुमत कुमार जैन
1: जी शेमत
0: जी, रिटायर्ड शिक्षक सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ, पिंडरी जिला मंडला से।
1: जी जी शेमत कुमार जी, आप रिटायर्ड हैं, आपने बताया आप शिक्षक भी हैं। कौन सा विषय पढ़ाते थे आप?
0: मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता था, सोशल साइंस
1: तो
0: जी,
1: आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते थे या हिंदी माध्यम में?
0: हिंदी माध्यम में पढ़ाया था मैडम, सरकारी
1: बहुत
0: स्कूल में।
1: जी। तो आप और क्या आपके शौक हैं? अब रिटायर्ड हो गए हैं तो अब आपकी कैसी है जीवन शैली?
0: बढ़िया जिंदगी कट रही मैडम, हम तो हम गर्मी का आनंद ले रहे हैं।
1: गर्मी का आनंद ले रहे हैं, ये भी अच्छी बात है कि कोई सर्दियों का आनंद लेता है, लेकिन गर्मी भी अपने आप में जो है एक ईश्वर का ही तत्व है, तो उसे भी हमें आनंदित होकर ही स्वीकार करना चाहिए ना, शिकायत क्यों करें। जी बताइए।
0: मेरे को सुना दीजिए मैडम, क्रोधी फिल्म का,
1: कौन सा गीत है?
0: क्रोधी फिल्म का गाना है, वो क्या कहती है, बहुत अच्छा गाना है मैडम। अभी कोई भी सुना दीजिए क्रोधी फिल्म
1: चलिए ठीक है, इसमें एक वो मसीहा आया है गीत भी है और एक और
0: का।
1: है रेखा जी और धर्मेंद्र जी पर फिल्म आया हुआ, तो हम
0: हाँ, वो
1: आपको
0: रुखसार अभी का सुना
1: जी
0: दीजिए आप।
1: जी तो हम आपको सुनवाते हैं क्रोधी फिल्म का ये गीत। शुक्रिया।
0: जी, धन्यवाद मैडम।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार मैडम, मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव मवी जिला इंदौर।
1: विवेक व्यास जी बोल रहे हैं।
0: हाँ जी।
1: कैसे हैं आप बताइए
0: जी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैडम?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं और आपसे बात हो रही है।
0: और ठीक ठीक तो क्या है, बस आपके प्रोग्रामों की ठंडक पे ये दिन गुजार रहे हैं क्योंकि हालत बड़ी खराब है गर्मी के कारण अपन सब।
1: जी जी, तो गर्मी में जो है हम अपना ध्यान किसी और तरफ केंद्रित करके और आनंद ले रहे हैं कि गीतों के साथ में गर्मी हमें कम महसूस हो रही है।
0: हाँ ये तो आपकी बात सही है
1: जी,
0: हमारा ध्यान आपके प्रोग्राम में रहता है।

0: तो गर्मी का एहसास नहीं होता है
1: जी। और आपके मुझे आपका एक प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है,
0: बात आपकी गीत हमारे,
1: ऐसा कुछ है ना,
0: बात आपकी गीत हमारे जी
1: जी। ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, फोन करके गीत सुने तो खैर है ये अपनी जगह पर। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये हूँ कि आज रिकॉर्डिंग कौन से प्रोग्राम की है,
0: आज फोन करे गीत सुने की है।
1: अच्छा तो मैं अपनी पसंद का गाना बताऊँ, आप सुनाएंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कब से पूछ रहे हैं आपसे
1: जी जी।
0: बताएं।
1: तो आज देखिए, आज महबूब खान की पुण्यतिथि है, तो मुझे मदर इंडिया फिल्म का गाना सुनवा दें जो मन्ना डे की आवाज में है, और इस गाने में एक बड़ा अच्छा संदेश है। वो गाना है कुछ इस तरह से है कि उमरिया घटती जाए रे
0: जी,
1: उमरिया घटती जाए। इसमें मैडम एक लाइन आती है, काल पड़ा है रोटी का और दुनिया बढ़ती जाए, है ना। तो ये मुझे सुनना है, और आपका नाम भी मुझे जानना था क्योंकि आकाशवाणी भोपाल के सभी अनाउंसरों की आवाज इतनी अच्छी है कि हमें सभी की आवाज एक जैसी ही लगती है।
0: जी, बहुत खुशी हुई जानकर कि आप सभी को बिल्कुल समान रूप से देखते हैं और सुनते हैं। और आज
1: और
0: आपकी
1: बात, एक बात और मैं बताऊं कि मैं जॉब है मेरा यहाँ पर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, और मैं रहने वाला वैसे भोपाल का ही हूँ, कोटा सुल्तानाबाद का।
0: जी, तो आज आपकी बात हो रही है आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका से।
1: अच्छा प्रियंका जी,
0: जी जी। तो विवेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतना अच्छा संदेशात्मक गीत चुना है सुनने के लिए। तो आपकी ये पसंद और ये संदेश आपके माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं आपके साथ, आपके पास और अन्य श्रोताओं के पास।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और आप अपना बहुत ध्यान रखें गर्मी में।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, आपसे निवेदन है
0: जी।
1: थैंक यू, नमस्कार
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते
1: जी। दीदी गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से दीदी मनोज नामदेव बोल रहे।
0: अरे मनोज जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: धन्यवाद दीदी, मैं तो बढ़िया हूँ दीदी, और उम्मीद भी करता हूँ कि आप भी एकदम सही और स्वस्थ होंगी।
0: बिल्कुल, आपकी उम्मीद जो है वो बिल्कुल खरी खरी है। क्या कर रहे हैं मनोज जी इन दिनों, आप बताइए।
1: बिल्कुल दीदी, कहें कि अपने शॉप पर काम कर रहे हैं, और इस समय गर्मी भी भीषण पड़ रही है, तो इससे भी बचाव कर रहे हैं। कहें
0: नौतपा भी चल रहा है, तो और भी गर्मी विशेष है अभी तो इन दिनों में।
1: बिल्कुल सही आवाज
0: है ना जी। तो अब बताइए, आप अपनी गर्मी से राहत पाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि आपको तो लगभग 8 से 10 घंटा शॉप पर बैठना पड़ता होगा।
1: बिल्कुल दीदी सही है। क्या है दीदी कि जब मैं सुबह शॉप पे आ जाता हूँ, तो दिन में जैसे कहीं जाना है तो बिल्कुल भी दिन में धूप में निकलने का कोई चांस बिल्कुल नहीं है। अगर इमरजेंसी जैसे कहीं जाना हुआ तो पूरी बहन के कपड़े हुए और एकदम कान को बांध कर एकदम पूरा पैक होके ही घर से निकलता हूँ मैं। और वैसे तो सुबह शाम जो काम है वो ही सुबह शाम कर लेता हूँ दीदी। और सभी से मैं यही कहता हूँ कि धूप से अगर बचना है तो दिन में बिल्कुल ना निकले, और
0: जी
1: अपने जो छोटे बच्चे हैं और जो अपने बूढ़े माता पिता हैं,
0: बुजुर्ग
1: खास
0: हैं।
1: तौर पे उनका अगर अपन विशेष ध्यान रखें तो कुछ सही है दीदी।
0: जी बिल्कुल, गर्मी में तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम सर्दियों में रखते हैं वैसा ही ध्यान हमें गर्मियों में भी रखना चाहिए। बस तौर तरीके अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हर मौसम का अपना मिजाज होता है, उससे हम मना नहीं कर सकते हैं
1: बिल्कुल दीदी बिल्कुल।
0: जी। तो मनोज जी बताइए, अपनी पसंद तो आपने अभी तक बताई नहीं है।
1: हाँ दीदी पसंद बता दूँ, दीदी पसंद है, फिल्म का नाम है दीवाना, उसमें गाना है तेरे दर्श दिलावाद रहा कुछ भूल गया कुछ याद रहा, ये है गाने की।
0: अच्छा, पुरानी वाली दीवाना सुनना चाह रहे हैं?
1: हाँ दीदी पुरानी में है ये गीत।
0: अच्छा अच्छा जी जी बिल्कुल ठीक
1: कुछ
0: ठीक
1: भूल गया कुछ याद रहा, एक फिल्म और बता दूँ अगर ये नहीं मिले तो।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: ये तो क्योंकि मेरे पास सुना है, मैंने आपके केंद्र में कई बार है, और अगर
0: जी
1: आपको कुछ दिक्कत दिखे तो फिर मैं एक और बता दूं।
0: जी विकल्प साथ में रहे तो अच्छी बात है। बताइए।
1: दूसरी है, फिल्म का नाम है आवारगी, और उसमें गजल है अल्ताफ राजा जी की आवाज में, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला।
0: जी जी जी चमकते चांद को। तो हमारी कोशिश रहेगी मनोज जी कि हम यही सुना दे, क्योंकि ईद भी है, ईद का मौका है, तो चमकते चांद को सितारा सुना दिया जाए,
1: शानदार मजा आ जाएगा
0: है ना। जी जी
1: बिल्कुल।
0: ठीक
1: और मैं
0: है।
1: तो यही सोचता हूँ दीदी कि अगर मेरे हिसाब आप परेशान ना हो ज्यादा तो ठीक है, जो मिल जाएगा वो सुनवा दे।
0: अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी हर पसंद हमारे पास है ना।
1: ये तो
0: लेकिन
1: बिल्कुल सही है।
0: मौके मौके को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि चमकते चांद को सितारा हम हमारे जो ईद मनाने वाले हमारे श्रोता हैं, तो उन्हें भी बड़ी खुशी होगी ये गीत
1: बहुत अच्छी
0: सुनकर,
1: बात बहुत अच्छी बात
0: है ना जी। शुक्रिया मनोज जी, और ऐसे ही फोन करते रहिए, हमसे बात करते रहिए। नमस्कार,
1: धन्यवाद दीदी आपको
0: जी।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार। अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी
1: मैं
0: बताइए।
1: मालेगांव से बात कर रहा हूँ
0: जी, मालेगांव से, महाराष्ट्र।
1: तुलसीराम व्यास।
0: अच्छा जी। तो मालेगांव में कैसा सुनाई देता है हमारा प्रसारण आपको?
1: मालेगांव में, मैं महाराष्ट्र में मालेगांव में, यहाँ बहुत अच्छा सुनाई देता है।
0: जी
1: आकाशवाणी जिस तरह आकाश में अच्छी तरह विराजमान है, उसी तरह सबके दिलों में विराजमान है आकाशवाणी।
0: शुक्रिया।
1: आकाशवाणी सबके दिलों में विराजमान है
0: जी, इसीलिए
1: कहीं भी खड़े रहो आकाशवाणी के आप गीत आराम से सुन सकते हो। और हमारा एक भाई है 21 साल का, वो नीमच में रहता है।
0: अच्छा अच्छा
1: वो आकाशवाणी से इतना लगाव है उसका
0: जी,
1: वो मोबाइल लगता नहीं उसका, लेकिन उन्होंने मेरे से कहा, एक पुराना गाना दिया उन्होंने मुझे
0: जी,
1: बोले आपका फोन लग जाए तो उनका नाम है आरसी जैन
0: जी जी,
1: वो पोस्टमास्टर है रिटायर
0: जी,
1: 82 साल के
0: जी। तो कौन सा गीत उन्होंने आपको बताया है सुनवा, उन्होंने कौन सा गीत बताया आपको सुनवाने के लिए?
1: उन्होंने एक बहुत पुराना गीत बताया है, ये आकाशवाणी को बहुत दिलों से चाहते हैं। उनका गीत है मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम ना देना खुशी
0: देने वाले,
1: ये आकाशवाणी से कहा है उन्होंने।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: कि मुझे प्यार, उनको प्यार की जिंदगी आकाशवाणी ने दी है। और वो कहते हैं कि मुझे कभी गम न देना, मुझे खुशी देना आकाशवाणी।
0: बिल्कुल, हमारा भरपूर ये प्रयास रहेगा कि हम कभी अपने श्रोताओं को निराश न करें, हम उन्हें कोई दुख न पहुंचाए, कोई गम न पहुंचाए। बिल्कुल, हम आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और इसको पूरी भी करते हैं, है ना। कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने कुछ ऐसी बात कही है कि जो आपकी इस बात से थोड़ा तालमेल रखती है। जब आप कार्यक्रम सुनेंगे तो आप जी, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ, प्रियंका बात कर रही हूँ मैं।
1: अच्छा प्रियंका जी,
0: जी जी,
1: तो ये गीत उनका, उनको सुना देना तो उनको बहुत खुशी होगी।
0: जी जी, शुक्रिया आपका।

0: श्रोताओ, कभी कभी सबसे मुश्किल सफर कहीं पहुंचने का नहीं होता, बल्कि उस जगह को छोड़ने का होता है जहां हम अभी हैं। पर शायद यही जिंदगी का इशारा होता है हमें अनजान रास्तों पर भरोसा करना सिखाने का, उस चलती नाव में कदम रखने का जब किनारा अब भी अपना सा लगता है। क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जब हम सुकून से ज्यादा हिम्मत को चुनते हैं और यकीन करते हैं कि आगे जो है वो हमारे लिए और भी खूबसूरत होगा। तो आज का ये सफर कार्यक्रम फोन करे गीत सुने का आपने तय किया था आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका के संग। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: फोन करें गीत सुने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
3: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देशभर में सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। देशभर में बारिश औसतन दीर्घकालिक पूर्वानुमान का 90% रहने की संभावना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। वर्ष 2026 से 2030 के बीच वैश्विक औसत तापमान 1.3 से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश ने गेहूं उपार्जन में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। गेहूं उपार्जन के मामले में प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अब तक 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है। देश में जल संरक्षण के कार्य में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित 2

0: दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 जिला प्रशिक्षण वर्ग में योगाभ्यास किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 में हिस्सा लिया और 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल ब्रिस्टल में भारतीय समय के अनुसार रात 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला नगमा फिल्म हरजाई से, लता मंगेशकर की आवाज, निदा फाजली के बोल, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोरी वर्मा, दीपक वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा।

अब आपको सुनवा रहे हैं रजनीगंधा फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। योगेश के बोल हैं, संगीत सलील चौधरी का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन इस गीत को सुनना चाहते हैं। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी है। तो आइए सुनते हैं रजनीगंधा फिल्म का ये गीत।

तेरे मेरे सपने, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। नीरज के लिखे गीत को संगीत से सजाया है एसडी बर्मन ने। पसंद आप सब श्रोताओं की है। घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने इस गीत को सुनने की फरमाइश की है। इसी गीत को पसंद किया है अनिल, नेहा फड़ से सीमा, सबीहा, फलक, पूजा, सुषमा, सविता, मनु और इनके पूरे परिवार ने, गुमाश्ता नगर इंदौर से। तो आइए सुनते हैं तेरे मेरे सपने फिल्म का ये गीत।

आशा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाज है लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, पसंद आप सब श्रोताओं की। हुलास राम कटरे और नानेश्वरी कटरे ने ये गीत सुनना चाहा है बालाघाट से। इसी गीत को पसंद किया है धमनी किरवई के श्रोताओं ने। ये हैं समेलाल धीवर, युवांश, कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी धीवर। तो आइए सुनते हैं आशा फिल्म का ये नगमा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सिसकियां। आज सुनिए इसकी तीसरी कड़ी।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता बकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

तो प्रस्तुत है धारावाहिक की तीसरी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना सायरे के वालिद पैगाम भिजवाते हैं कि उसकी अम्मी की तबीयत खराब है। ये खबर मिलते ही मुश्ताक सायरे को उसकी अम्मी के पास छोड़ आता है, लेकिन खुद वहां नहीं रुकता। अब आगे।

0: सारे
1: आ गए, बड़े दिनों बाद याद आई मेरी।
0: ऐसी बात नहीं है सारे, मैं तो पहले ही आना चाहता था पर काम ही ऐसा पड़ गया कि फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी।
1: अच्छा जी, तो अब आपको फुर्सत मिल गई।
0: अरे तुम तो मजाक करने लगी।
1: नहीं जी, मैं क्यों मजाक करूंगी।
0: सारे जिस काम से आया था वो तो मैंने तुमसे कहा ही नहीं।
1: क्या?
0: हाँ मैं अभी तुम्हें लेने आया हूँ।
1: अभी?
0: हाँ क्यों, तुम जाना नहीं चाहती?
1: ओ नहीं, ऐसा नहीं है, पर अभी कुछ दिन और रह लेती तो।
0: सारे अम्मी कह रही थी कि घर बड़ा उदास सा लगता है।
1: अच्छा और... तो तुम अम्मी के कहने पर आए हो, अपने मन से नहीं।
0: सारे काम का बोझ पड़ गया है और काम छोड़कर आना क्या अच्छा होता।
1: तो क्या अब काम नहीं है?
0: सारे तुम मुझे नाराज लगती हो। हाँ तुम्हारी नाराजगी भी जायज है, इन दिनों में मैं तुमसे मिलने जो नहीं आ सका।
1: तुम्हें मेरा ख्याल भी है?
0: सारे तुम मेरा प्यार हो।
1: अगर ऐसा होता तो तुम इतने दिनों में कम से कम मिलने तो आ सकते थे ना।
0: अब अपना काम तो है नहीं सारे कि जब चाहे बंद कर दो, मुझे ग्राहकों को देखना होता है और
1: और मुझे काम काम काम, क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे लिए?
0: तुम ऐसा क्यों सोच रही हो सारे, तुम मेरी जिंदगी हो। अगर मैं काम कर रहा हूँ, दो पैसे जोड़ रहा हूँ तो किसके लिए?

0: तुम्हारे लिए ही ना।
1: ऐसा भी पैसा किस काम का जो हमारे बीच दूरियां बढ़ा दे, आपको मिलने का मौका भी ना दे।
0: अब ऐसी भी क्या नाराजगी कि तुम मेरे काम को ही धत्ता बताई जा रही हो।
1: ऐसा नहीं है, मैं भी चाहती हूँ कि तुम दो पैसे जोड़ो, पर ये नहीं चाहती कि उन पैसों की होड़ में मुझे ही भूल जाओ।
0: सारे, तुम्हें भूलने की तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन क्या करूं, काम ही ऐसा है कि छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और तुम्हारे घर भी आना हो तो एक दिन की छुट्टी हो जाती है, आज बड़ी दिक्कत से आ पाया हूँ यहाँ।
1: अगर इतनी ही दिक्कत थी तो ना आते।
0: तुम अभी भी नाराज हो?
1: नहीं, मैं बस
0: देखो सारे, अभी काम का वक्त है, काम बढ़ गया है, ऐसे में काम छोड़कर आना ठीक नहीं लगता।
1: अब चलो छोड़ो इन बातों को, अब जल्दी से बताओ क्या खाओगे।
0: थोड़ी देर में चलेंगे सारे, सो खाने पीने का चक्कर छोड़कर तुम तैयार ही हो जाओ।
1: कौन जा रहा है अभी? अभी कोई नहीं जा रहा, मैं चाय लाती हूँ। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा रही, अभी अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं मुझे आए हुए, और अभी चली चलूं, इतने दिन तो अम्मी की तीमारदारी में गुजर गए, मायके का मजा तो अभी लिया ही नहीं। देखो कुछ दिन और रह लूं, फिर चलूंगी तुम्हारे साथ।
0: देखो सारे, मायके में ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं होता, और अम्मी कह रही थी कि तुम्हारे बिना उनका मन नहीं लगता, घर भी उदास उदास सा, उजड़ा उजड़ा सा लगता है।
1: हाँ, घर तो उदास लगेगा ही, आखिर घर लोगों से ही तो बनता है। वैसे मुझे भी फजी अम्मी की याद आती है, पर क्या करूं, यहाँ भी तो दो चार दिन रुकने का मन कर रहा है ना।
0: सारे, तुम्हारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, उसे तुम्हें निभाना चाहिए, और मेरी मानो तो अभी मेरे साथ चलो।
1: अम्मी से भी तो पूछ लूं, वो क्या कहती हैं। लो अम्मी भी आ गई, आप लोग बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ।
0: सलाम अम्मी।
2: सलाम बेटे, खुश रहो। करीम भाई कैसे हैं?
0: सब ठीक है अम्मी, आपकी तबीयत को पूछ रहे थे।
2: अब ठीक हूँ, सारे न आई होती तो शायद ही बच पाती।
0: ऐसा क्या सोचती हैं आप, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है।
2: एक बीमार को दवा से ज्यादा तीमारदारी की जरूरत होती है बेटा, आज सारे एक सहारा है।
0: आखिर बेटी है आपकी, अगर औलाद दुख में साथ ना देगी तो कब देगी।
2: अब तो तुम ही लोगों का सहारा है।
0: आप ऐसा क्यों सोचती हैं अम्मी?
2: किस्मत की मारी और सोच भी क्या सकती है।
0: आप ऐसा ना कहें।
2: क्यों ना कहूं, मेरी किस्मत ठीक होती तो सारे के अब्बा का काम ठीक ना चलता, किसी की आस तो ना देखनी पड़ती।
0: अम्मी, सुख दुख तो सारा जीवन चलता रहता है, पर इससे कोई बच भी तो नहीं सकता। पर दुख ज्यादा दिन नहीं रहते, खुशियों का सवेरा तो आता ही है।
2: हमारी छोड़ बेटे, अपनी बता, काम तो बेहतर चल रहा है?
0: जी अम्मी, बेहतर है।
2: आमदनी तो अच्छी होती होगी?
0: आमदनी ज्यादा तो नहीं, पर हाँ, चार जनों का परिवार अच्छे से चल जाता है।
2: इतने से गुजारा तो चल जाता है, पर भविष्य के लिए दो पैसे भी तो जोड़ने चाहिए।
0: अम्मी, मेहनत से जो मिल जाता है मैं उसी में संतुष्ट हूँ।
2: अल्लाह ताला इसी में बरकत दें।
0: ये तो आप सब लोगों की दुआएं हैं।
1: अम्मी चाय।
2: सारे बेटे, मुश्ताक के लिए कुछ नमकीन भी तो ला, कितने दिनों बाद आया है ये।
1: जी अभी लाई अम्मी।
0: अरे रहने दो सारे, चाय काफी है।
2: काफी क्या है, हम गरीब लोग ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। आज आए हो तो कुछ खातिरदारी तो करनी ही होगी ना।
0: आप परेशान ना हो अम्मी, मैं कोई दूर का मेहमान थोड़ी ना हूँ।
1: अम्मी, ये मुझे ले जाने के लिए कह रहे थे।
2: अरे ऐसे कैसे ले जाओगे बेटा, आज आए हो, दो चार दिन तो रुको।

0: फिर ले जाना।
1: अब नहीं नहीं अम्मी, मेरा तो रुकना मुमकिन ना होगा।
0: आज की रात तो रुक लो, कल सुबह चले जाना।
1: नहीं सारे, मैं नहीं रुक पाऊंगा। अगर तुम साथ चलो तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा।
2: अरे एक दिन रुकने से क्या फर्क पड़ता है बेटा, ये घर भी तो तुम्हारा ही है।
1: वो तो है अम्मी, पर काम बहुत है और काम छोड़कर रुकना मुनासिब भी नहीं।
2: एक रात रुक जाते।
1: नहीं अम्मी, यह मुमकिन नहीं।
2: बेटा अगर तुम एक दिन भी ना रुके तो आसपास के लोग हंसेंगे हम पर कि दामाद एक दिन भी नहीं रुकता।
1: अब ऐसा क्यों सोचती हैं आप? क्या दामाद घर बैठा रहे ये लोगों को अच्छा लगेगा? और यूं तो घूमता नहीं कि लोग बदनामी करें।
2: समाज और बिरादरी को तुम नहीं जानते कि वो क्या सोचते और क्या बोलते हैं।
1: अम्मी मैं इन दकिया नुसी बातों पर एतवार नहीं करता। जो हमारे लिए बेहतर हो हम वही करना चाहिए। दूसरों की बातों में आकर या दिखावे के चक्कर में पड़कर अपना नुकसान करना, ये भला कहाँ की समझदारी होगी।
2: तुम्हारा भी कहना सही है बेटा, पर हमें तो रहना इसी समाज में है और जवाब भी इसी समाज को देना होगा।
1: मैं सारे को लेने आया था अम्मी, अब मेरे पास इतना समय नहीं है। इस बात को तो आप समझेंगी ना?
2: सारे तुम्हारी पत्नी है बेटा, मैं उसे क्यों कर रोकूंगी? तुम जब चाहो ले जाओ, पर सारे बेटी है इस घर की, कुछ दिन और रह लेती तो अच्छा रहता। मेरा मन करता है कि बेटी मेरे पास रहे।
1: तो सारे अभी मेरे साथ नहीं जा रही है?
2: क्या कहूँ, थोड़े दिन और रुक जाती तो।
1: ठीक है अम्मी, जैसा आप बेहतर समझे। सारे को जब आना हो खबर भेज दीजिएगा।
2: तो तुम आज नहीं रुकोगे?
1: नहीं अम्मी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरा रुकना मुमकिन नहीं।
3: मुश्ताक।
1: सलाम अबू।
4: सलाम, खुश रहो बेटे, कब आए?
1: अभी।
4: घर में सब कुशल तो है?
1: हाँ घर में सब ठीक है। अम्मी बार बार कह रही थी कि घर उदास सा लगता है, सो सारे को लेने आ गया था।
4: अच्छा अच्छा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है बेटा?
1: जी ठीक है अबू, अभी तो बाजार ठीक है, पर बाजार का कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी तेज होता है और कभी मंदा।
4: हाथों का काम है, अल्लाह इसी में बरकत दे। ईमानदारी से काम करो बेटा।
1: हाँ अबू, पैसे कम हो पर सब्र होना चाहिए, और आप लोगों की दुआएं साथ हैं तो सब ठीक ही होगा।
4: ठीक कहते हो बेटा, कम पैसा हो पर संतोष हो, रोजगार रहे यही बहुत है आज के समय में।
1: अबू बाजार में काम की कमी थोड़ी ही है।
4: हाँ बेटा, अब इस उम्र में जो भी कर रहा हूँ वही ठीक है। कारीगर के हाथ पैर जितने चलें उतने ही अच्छे हैं।
1: हाँ अबू, अब तो बाजार बदल रहा है, बाजार के तौर तरीके भी बदल रहे हैं, ऐसे में आप अपने आप को क्यों नहीं बदलते अबू?
4: बेटा मुझे अपने आप को बदल कर कौन सा विदेश में जाकर बस जाना है? अब रही सही जिंदगी भी यहीं पर कट जाए। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जन्नत यहीं से नसीब हो।
1: अबू जान, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? अब तो कश्मीर के हालात भी कितने अच्छे हो गए हैं कि किसी को रोजगार के लिए इस जन्नत को छोड़ने की जरूरत ही नहीं है।
4: जो लोग चले गए हैं वो भी एक ना एक दिन अपने घरों को वापस लौट ही आएंगे। मैं तो उस दिन के इंतजार में हूं बेटा जब मेरे

0: बचपन का साथी। शर्मा भी अपने पूरे परिवार के साथ लौट कर आ जाए।
1: अबू जान वो जरूर लौट कर आएंगे, क्योंकि अब तो हुकूमत हमारी इस वादी में युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे साधन जुटा रही है और बाहर की कंपनियां भी नए उद्योग स्थापित कर रही है।
0: हाँ बेटा, नौजवानों में जो आक्रोश था वही भटकाव की जड़ था। अब जबकि लोगों को धीरे धीरे सुकून मिल रहा है तो भटकाव भी खत्म हो गया है। अब लोग अपनी वादी से जुड़ने लगे हैं।
1: हाँ अब्बू, आप सही कहते हैं। हमारी उम्र के लोग बाजार की चकाचौंध में डूब से गए थे, हमारी संस्कृति खत्म सी हो रही थी। अब्बू, उनके अंदर इस जमीन से लगाव छूटता सा जा रहा था और यही एक बड़ी वजह थी कि हम अपने यहाँ के बाजारों को नहीं बचा पा रहे थे।
0: सही कहते हो मुश्ताक, इन हाथों में रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, अब कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी।
1: हाँ अब्बू,
0: वैसे हमारी हुकूमत ने इसकी पहल कर दी है।
1: हाँ अब्बू, आप ठीक कहते हैं, लेकिन हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं, हमारे हाथों में कुछ है ही नहीं। जिंदगी जैसी चलती है वैसी चलती रहे, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो बस दुआ कर सकते हैं अपनों की सलामती के लिए।
0: सही कहते हो बेटा, मैंने तो चौकीदारी करके ही जिंदगी गुजार दी, अब तुम लोगों के लिए ही दुआ करूंगा।
1: अच्छा अब्बू, तो मैं अब चलूंगा, नहीं तो बहुत देर हो जाए।
0: बेटा, सारे भी जा रही है?
1: नहीं अब्बू, वो कुछ दिन और रुकना चाहती है।
0: तुम नहीं रुकोगे?
1: नहीं अब्बू, मुझे जाना होगा।
0: अच्छा बेटा, करीम और फजी को मेरा सलाम कहना।
1: जी अब्बू, कह दूंगा। अच्छा अब्बू, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज बेटा।
2: सारे खाना खा ले, बुत्सी बनकर क्यों बैठी है?
3: अब खाती हूँ अम्मी।
2: मैं जानती हूँ तू मुश्ताक के बारे में ही

0: ऐसा कुछ भी नहीं है।
1: तो फिर मुकर रही है, मुश्ताक आज नहीं रुका, तू यही सोच रही है ना?
0: वो उनको काम था अम्मी।
1: काम? काम तो हमेशा रहता है बेटी, पर क्या वो इतने दिन बाद आया था? तेरे कहने से एक दिन रुक नहीं सकता था? एक दिन में कितना नुकसान हो जाता उसका।
0: अम्मी अब उनका काम ही ऐसा है तो क्या करें?
1: मन को बहलाने की कोई जरूरत नहीं है सारे, मुश्ताक चाहता तो रुक सकता था लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। क्यों
0: अम्मी? वो
1: बस कर, सच तो ये है कि वो तुमसे प्रेम नहीं करता।
0: नहीं अम्मी ऐसा नहीं है, वो मुझे प्यार करते हैं अम्मी।
1: तू अब भी यही कह रही है? अगर मुश्ताक को तुझसे प्रेम है तो क्या वो एक दिन रुक नहीं सकता? और सिर्फ मुश्ताक ही तो काम नहीं करता, अब खजरी को ही लो।
0: कौन खजरी?
1: अरे वो रजिया की बेटी, उसकी तो चांदी हो गई।
0: क्यों?
1: खजरी की शादी एक दुकानदार से करवा दी है और वो खजरी के इशारों पर घूमता है, अच्छा पैसा कमाता है और रजिया को भी पैसे देता है। खजरी के साथ साथ रजिया भी खुश है, उसके अच्छे दिन आ गए। और एक मैं हूँ जो
0: क्यों अपने को कोसती हो अम्मी।

0: कोसू ना तो क्या करूं?
1: अम्मी, सबका नसीब एक जैसा तो नहीं होता।
0: इसमें नसीब का क्या, खजरी अपने पति से प्रेम करती है और उसको अपने इशारों पर रखती है। वो दिन कहे तो दिन और रात कहे तो रात, और एक तेरा पति है जो बार बार कहने पर भी एक रात के लिए नहीं रुका, और तू कहती है कि वो तुझसे प्रेम करता है।
1: अम्मी, एक रात ना रुकने से प्यार कम तो नहीं होता, और मैं खजरी की तरह अपने पति को आगे पीछे घुमाऊं, ये मुझे पसंद नहीं।
0: मेरा नसीब ही खोता है जो मेरी बेटी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करती।
1: तुम ऐसा क्यों सोचती हो अम्मी?
0: बेटी है तू मेरी, और तेरी खुशी के लिए ही कहती हूँ। तुम्हें मुश्ताक को अपने वश में करना चाहिए, तू जो कहे उसे माने।
1: मगर अम्मी, ये मुमकिन नहीं है।
0: हाँ, ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक करीम और फजी उस घर में हैं, और उनके रहते मुश्ताक तुम्हारा पति नहीं हो सकता। इसके लिए तुम्हें मुश्ताक को उस घर से अलग रखना होगा।
1: मुश्ताक नहीं मानेगा अम्मी।
0: सारे अगर ऐसा नहीं हुआ तो करीम व फजी तुझको नौकरानी की तरह काम करवाते रहेंगे और खुद मुश्ताक के पैसों पर ऐश करेंगे।

0: उस पर दबाव बनाओ ताकि वह मान जाए। घर खोजने में दिक्कत हो तो यहाँ आ जाए।
1: ठीक है अम्मी, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूँगी ताकि मेरा मुश्ताक हमेशा मेरे पास रहे।
0: ठीक है, अब खाना खा ले और सो जा, रात भी बहुत हो गई है।
1: हाँ अम्मी।

0: राता, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो।
1: क्या अच्छा नहीं कर रही?
0: अपनी ही बेटी के घर में क्यों आग लगा रही हो?
1: या अल्लाह, मैं उसके घर में आग नहीं लगा रही, उसका घर बना रही हूँ।
0: वादा घर जोड़ने से बनता है, तोड़ने से नहीं। और तुम जो कर रही हो या करवाना चाहती हो, उससे सारे का घर नहीं बनेगा, बल्कि उसकी जिंदगी तबाह करने का रास्ता दे रही हो।
1: तुम चुप रहा करो। अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सके और जो कर सकता है उसके रास्ते में बाधक बनते हो।
0: क्या कह रही हो फाता? सारे तेरी बेटी है, उसको सही सलाह दिया करो, ताकि वो घर को संभाले, न कि घर को बर्बाद करे। क्यों तुम दोनों की जिंदगी तबाह करने पर तुली हो?
1: या अल्लाह, तुम अपने काम से काम रखो ना, मेरे काम में दखल देने की जरूरत नहीं। और हाँ, मुश्ताक अगर अलग घर लेने को मान गया तो दोनों यहीं रहेंगे।
0: वादा बंद करो ये सब। तुम चाहती क्या हो?
1: मैं चाहती हूँ कि मुश्ताक इस घर में घर जमाई बनकर रहे।
0: वादा याद रखो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। एक आबाद घर को उजाड़ रही हो, वो भी अपनी बेटी के घर को। वो मुश्ताक के साथ खुश है और तुम उन्हें एक घर से अलग करके दुख क्यों देना चाहती हो?
1: ओफो, तुम अपनी बुद्धि को अपने पास रखा करो, मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की तीसरी कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीतकार मोहनलाल, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अकरम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे नीलम, लोकेश, सुप्रिया और हरीश। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे सिंघराले के अंतर्गत धारावाहिक सिस्किया की तीसरी कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आप

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए कहा कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। सीबीआई ने त्रिशा शर्मा मौत मामले में गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके पहले कल भोपाल में सीबीआई ने करीब 7 घंटे तक उनके घर पर पूछताछ और तलाशी ली। गौरतलब है कि गिरिबाला त्रिशा के सास और सेवानिवृत्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश हैं। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, सतना, भिंड सहित 10 जिलों में तीव्र लू के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मौसम में देशभर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। देशभर में वर्षा और औसतन दीर्घकालिक पूर्वानुमान का 90% रहने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम ने 1-0

0: की बढ़त हासिल कर ली है। तीसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल ब्रिस्टल में शाम 7 बजे से खेला जाएगा और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में आज न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल मुकाबले में रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

पढ़ने योग्य लिखा जाए, इससे लाख गुना बेहतर है कि लिखने योग्य पढ़ा जाए। इस विचार को लेकर आज का महिला सभा कार्यक्रम लेकर मैं हूँ दमयंती वाजपेयी, स्वीकारिए मेरा नमस्कार। बहनों, जब दुनिया में युद्ध रूपी आग फैलती है तो कुछ लोग अपने घर परिवार से दूर रहकर मानवता की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। वे किसी एक देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व की शांति के प्रहरी बन जाते हैं। उनका उद्देश्य संघर्ष को रोकना नहीं वरन टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ना होता है। ऐसे ही साहसी और समर्पित शांति सैनिकों के सम्मान में हर वर्ष 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस मनाया जाता है, जो हमें शांति, सेवा, त्याग और मानवता का अमूल्य संदेश देता है। बहनों, हमारे देश का योगदान संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सदैव महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय सैनिकों ने अनेक देशों में जाकर साहस, अनुशासन और सेवा भाव का परिचय दिया है। भारतीय शांति सैनिकों की ईमानदारी और मानवता की भावना को सारी दुनिया सम्मान की दृष्टि से देखती है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा देश विश्व शांति के प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। वर्तमान में कई जगह युद्ध, हिंसा, आतंकवाद और आपसी संघर्ष लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में तो शांति रक्षकों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। वे हमें संदेश देते हैं कि समस्याओं का समाधान हिंसा से नहीं बल्कि संवाद, धैर्य और सहयोग से संभव है। उनका जीवन त्याग, साहस और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देता है। ये दिवस केवल सैनिकों का सम्मान करने का अवसर नहीं है वरन हमें अपने जीवन में भी शांति और सद्भाव अपनाने की प्रेरणा देता है। बहनों, यदि हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र में प्रेम, सहनशीलता और एकता का वातावरण बनाएं, तो विश्व में भी शांति स्थापित करना आसान हो जाएगा। आज के दिन इस दिवस पर हमें उन सभी शांति रक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए जो दूर देशों में रहकर मानवता की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि शांति और एकता में होती है। जब पूरा विश्व मिलकर शांति का मार्ग अपनाएगा तभी वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार होगा, तब होगा हर मैदान फतेह।

0: संजू अभी हमने इस फिल्म का गीत सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में सुना। शिखर अस्तित्व की रचना को संगीत से संवारा था विक्रम मॉन्ट्रोस ने। बहनों, चाहे भारत माँ हो या जन्म देने वाली माँ, माँ तो बस माँ है जो बच्चे के दर्द को उसकी आवाज से पहले ही महसूस कर लेती है और हर परिस्थिति में अपने परिवार की ढाल बनकर खड़ी रहती है। उसकी ममता में सुकून है, उसकी दुआओं में शक्ति है और उसके आंचल में पूरी दुनिया का प्यार छिपा होता है। बहनों, सच कहा जाए तो माँ केवल जीवन देने वाली नहीं बल्कि जीवन को सुंदर बनाने वाली सबसे बड़ी शक्ति होती है। माँ का हमारे जीवन में और कितना महत्व है, ये जानने के लिए सुनते हैं वार्ता माँ का जीवन में महत्व। वार्ताकार हैं रागनी अग्निहोत्री।
1: बहनों, आज हम बात करेंगे माँ शब्द के ऊपर। इस संसार में यदि किसी शब्द में सबसे अधिक प्रेम, ममता, त्याग और करुणा समाई हुई है तो वह शब्द है माँ। माँ केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि जीवन की पहली गुरु, पहली रक्षक

और पहली प्रेरणा होती है। जब एक शिशु इस संसार में जन्म लेता है तब सबसे पहले वह अपनी माँ की गोद में ही सुरक्षा और स्नेह का अनुभव करता है। माँ का हृदय समुद्र से भी गहरा, आकाश से भी विशाल और धरती से भी अधिक सहनशील होता है। माँ अपने बच्चे के लिए अनगिनत त्याग करती है। वह स्वयं दुख सहकर भी अपने बच्चों को चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है। उसकी ममता में कोई स्वार्थ नहीं होता। वह बच्चे की छोटी सी खुशी में प्रसन्न हो जाती है और उसके दुख में स्वयं टूट जाती है। माँ के बिना जीवन अधूरा और सूना लगता है। भारतीय संस्कृति में माँ को देवी के समान माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, अर्थात माँ को देवता के समान मानो। माँ का महत्व केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरे समाज और राष्ट्र की आधारशिला होती है। एक अच्छी माँ ही अच्छे संस्कार देकर आदर्श नागरिक तैयार करती है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी माताओं के हाथ में होता है। माँ का अर्थ। माँ शब्द छोटा अवश्य है, लेकिन इसका अर्थ बहुत विशाल है। माँ प्रेम, करुणा, धैर्य, त्याग और वात्सल्य का प्रतीक है। माँ वह होती है जो अपने बच्चे की हर पीड़ा को बिना कहे समझ लेती है। बच्चा जब बोलना सीखता है तब उसके मुख से निकलती है। दूसरा, असीम धैर्य। तीसरा, त्याग की भावना। चौथा, ममता की करुणा। पांचवा, क्षमा और सहनशीलता। माँ बच्चे की छोटी सी तकलीफ में भी बेचैन हो जाती है। वह अपने बच्चे की खुशी के लिए हर कठिनाई सहने को तैयार रहती है। अब हम बात करेंगे माँ के त्याग पर। माँ का जीवन त्याग से भरा होता है। वह अपने बच्चों के लिए अपने सुखों का त्याग कर देती है। माँ के त्याग के कुछ उदाहरण हम पेश करते हैं। माँ स्वयं भूखी रहकर बच्चों को भोजन कराती है, रात भर जाकर बच्चे की देखभाल करती है, अपने सपनों को छोड़कर बच्चों का भविष्य बनाना, कठिन परिस्थितियों में भी परिवार को संभालना। माँ का त्याग शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। माँ पहली गुरु के रूप में होती है। माँ बच्चे की पहली शिक्षक होती है। बच्चा बोलना, चलना, खाना और व्यवहार करना सबसे पहले माँ से सीखता है। माँ द्वारा दिए जाने वाले संस्कार, सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, अनुशासन, ईमानदारी, दया और प्रेम। यदि माँ अच्छे संस्कार देती है तो बच्चा जीवन में अच्छा इंसान बनता है। माँ और शिक्षा। माँ शिक्षा के महत्व को समझती है। वह अपने बच्चों को पढ़ाने, सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। कई बार गरीब परिवारों की माताएं स्वयं कठिन परिश्रम करती हैं ताकि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। अब हम बात करते हैं माँ और सुरक्षा पर। माँ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहती है। चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा, माँ का हृदय हमेशा उसकी चिंता करता है। सुरक्षा के रूप में बीमारी में देखभाल, गलत रास्ते से बचाना, नैतिक शिक्षा देना, कठिनाइयों में साथ देना। अब हम बात करेंगे माँ और भावनात्मक सहारा। जब व्यक्ति दुखी होता है तब माँ का स्नेह सबसे बड़ा सहारा बनता है। माँ अपने बच्चों की भावनाओं को समझती है और उन्हें हिम्मत देती है। माँ की गोद दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में माँ का महत्व। भारतीय संस्कृति में माँ का अत्यंत सम्मान दिया गया है। उदाहरण, धरती को धरती माँ कहा जाता है, देश को भारत माता कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है। यह हमारी संस्कृति में माँ के महत्व को दर्शाता है। धार्मिक दृष्टि से माँ का महत्व। सभी धर्मों में माँ को विशेष स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म माँ को देवी के समान माना गया है। इस्लाम में कहा गया है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। सिख धर्म माँ को सम्मान और सेवा का प्रतीक माना गया है। महान व्यक्तियों के जीवन में माँ की भूमिका। कई महान व्यक्तियों की सफलता के पीछे उनकी माँ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही वीरता और देशभक्ति के संस्कार दिए। महात्मा गांधी। गांधी जी ने अपनी माँ से सत्य और अहिंसा की शिक्षा प्राप्त की। एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम अपनी माँ से अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ को दिया। माँ और समाज निर्माण। एक अच्छी माँ केवल अपने बच्चों का ही नहीं बल्कि अच्छे समाज का निर्माण करती है। यदि माँ बच्चों को अच्छे संस्कार देती है तो वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। माँ का संघर्ष। तो बहनों, अब हम बात करेंगे माँ के संघर्ष पर। माँ का जीवन आसान नहीं होता। वह अनेक कठिनाइयों का सामना करती है। संघर्ष के उदाहरण, आर्थिक समस्याएं, परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की शिक्षा, बीमारी और कठिन परिस्थितियां। इसके बावजूद माँ कभी हार नहीं मानती। कामकाजी माँ। आज अनेक महिलाएं घर और नौकरी दोनों संभाल रही हैं। चुनौतियां, समय का संतुलन, परिवार की देखभाल, कार्यस्थल का दबाव, फिर भी वे अपने बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाती हैं। माँ और बेटी का रिश्ता। माँ और बेटी का रिश्ता बहुत गहरा होता है। बेटी अपनी माँ से जीवन की अनेक बातें सीखती है। माँ और बेटे का रिश्ता। बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ के लिए वह हमेशा बच्चा ही रहता है। वृद्धावस्था में माँ की स्थिति। आजकल कई लोग वृद्ध माता पिता की

0: उपेक्षा करने लगे हैं। यह अत्यंत दुखद है। हमारा कर्तव्य माँ का सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उन्हें प्रेम देना, उनकी भावनाओं को समझना। माँ और प्रकृति। माँ की तुलना अक्सर प्रकृति से की जाती है, कारण धरती की तरह सहनशील, नदी की तरह निर्मल, वृक्ष की तरह देने वाली। साहित्य में माँ, कवियों और लेखकों ने माँ के प्रेम का सुंदर वर्णन किया है। प्रसिद्ध पंक्तियाँ, माँ की ममता का नहीं कोई मोल, उसके चरणों में बसता है संसार का अनमोल। माँ का बच्चों का कर्तव्य, बच्चों का कर्तव्य है कि वे अपनी माँ का सम्मान करें। बच्चों को क्या करना चाहिए? माँ की आज्ञा मानना, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उन्हें दुख न देना, वृद्धावस्था में उनका सहारा बनना। माँ के बिना जीवन अधूरा लगता है, माँ के बिना जीवन सूना, उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। माँ का स्नेह जीवन भर व्यक्ति के साथ रहता है। आधुनिक समय में माँ की भूमिका, अब हम इस पर बात करेंगे। आज के बदलते समय में माँ की जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं। आधुनिक माँ की जिम्मेदारियाँ, बच्चों को संस्कार देना, तकनीक का सही उपयोग सिखाना, शिक्षा और नैतिकता में संतुलन बनाना। माँ और राष्ट्र निर्माण। एक शिक्षित और संस्कारी माँ राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहा जाता है, यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। माँ का सम्मान क्यों आवश्यक है? माँ हमारे जीवन की सबसे बड़ी शुभचिंतक होती है, उसका सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। सम्मान के तरीके, मधुर व्यवहार, समय देना, उनकी भावनाओं का आदर, सेवा और देखभाल। माँ और प्रेरणा। माँ हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, वह कठिन समय में साहस प्रदान करती है। माँ की महानता की बात करते हैं अब हम। माँ की महानता का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है, वह स्वयं दुख सहकर भी बच्चों को खुश देखना चाहती है। माँ जीवन का सबसे अनमोल उपहार है, उसका प्रेम, त्याग, ममता और संघर्ष अतुलनीय है। वह परिवार की नींव और समाज की शक्ति होती है। माँ बच्चे को केवल जन्म ही नहीं देती, बल्कि उसे संस्कार, शिक्षा और जीवन जीने की दीक्षा भी प्रदान करती है। हमें सदैव अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। माँ का स्थान संसार में सबसे ऊंचा है, उसकी ममता का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। यदि जीवन एक सुंदर कविता है तो माँ उसकी सबसे मधुर पंक्ति है। यदि जीवन एक दीपक है तो माँ उसकी उज्ज्वल ज्योति है। यदि जीवन एक बगीचा है तो माँ उसकी सुगंधित मिट्टी है। माँ के चरणों में ही संसार का सबसे बड़ा स्वर्ग बसता है।
1: माँ का जीवन में महत्व। अभी हम ये वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थी रागिनी अग्निहोत्री। बहनों, आज की भागम भाग भरी जिंदगी में कामकाजी बहनों के सामने बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। घर की देखभाल, बच्चों की चिंता, कार्यस्थल का दबाव के साथ ही परिवार और समाज की अपेक्षाएं, और इन सब के बीच कई बार मन अनावश्यक सोच में उलझ जाता है। छोटी छोटी बातों को बार बार सोचते रहना, भविष्य की चिंता या फिर पुरानी बातों को मन में दोहराना, ये सब ओवरथिंकिंग कहलाता है, जो धीरे धीरे मानसिक शांति और आत्मविश्वास को प्रभावित करने लगता है। महिलाएं स्वभाव से संवेदनशील और जिम्मेदार होती हैं। वे हर रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाना चाहती हैं, लेकिन कई बार यही संवेदनशीलता अधिक सोच का कारण बन जाती है। लोग क्या कहेंगे, यदि ऐसा हो गया तो मैं सब कुछ सही कर पा रही हूँ या नहीं, इस तरह के विचार मन को थका देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तनाव, चिंता, अनिद्रा और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। तो बहनों, ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में जीना सीखें। जो बात हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में बार बार सोचने से समाधान तो निकलता नहीं है। हमें ये भी समझना होगा कि हर परिस्थिति का हल समय के साथ निकलता है, इसलिए अनावश्यक चिंताओं को छोड़कर सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। बहनों, पूर्णता की अपेक्षा जीवन को कठिन बना देती है। हर व्यक्ति से कभी न कभी गलती तो होती ही है, इसलिए स्वयं को दोष देने के बजाय अपनी अच्छाइयों पर भी ध्यान दीजिए। आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति ओवरथिंकिंग को कम करने में बहुत मदद करती है। अपनी भावनाओं को मन में दबाकर न रखें, किसी विश्वसनीय मित्र या परिजन से खुलकर बात कीजिए। जब मन की बातें साझा होती हैं तो मन का बोझ हल्का महसूस होता है। अपने लिए समय जरूर निकालिएगा। योग, ध्यान, प्राणायाम, पुस्तक पढ़ना या फिर अपनी पसंद का कोई काम करना मन को शांति देता है। और हाँ, अपनी पसंद के गीत भी सुनिए। लेकिन आज तो हम आपको एक ऐसा गीत सुनवा रहे हैं जिसका रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा। ये गीत 30 से भी ज्यादा फिल्मों के नाम से बना है। आइए सुनते हैं।

एक दूजे के लिए। इस फिल्म का गीत हमने एसपी वाला सुब्रमण्यम और अनुराधा पौडवाल की आवाज में सुना। आनंद बख्शी के गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। बहनों, तपती धरती, गर्म हवाएं और बढ़ता हुआ तापमान, गर्मी का मौसम अपने साथ ये सभी चुनौतियां लेकर आता है। दो भर की लू तो ऐसी महसूस होती है मानो प्रकृति आग बरसा रही हो। तो इस मौसम में छोटी सी भी लापरवाही शरीर को कमजोर और बीमार बना सकती है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग इसकी चपेट में जल्दी आ सकते हैं। इसलिए गर्मी सहना ही नहीं बल्कि उससे बचाव ही बहुत आवश्यक है। बहनों, दोपहर में सूर्य की किरणें बहुत ही तेज हो जाती हैं, इसलिए इस समय अनावश्यक रूप से बाहर किसी को भी ना जाने दें। ऐसी गर्मी से शरीर में पानी की कमी जल्दी हो जाती है, तो केवल प्यास लगने पर ही नहीं बल्कि थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। साथ में नींबू पानी, सत्तू शरबत, आम पना, नारियल पानी और छाछ जैसे पेय पदार्थ शरीर को ठंडक दे

रखते हैं और ऊर्जा बनाए रखते हैं। भोजन भी मौसम के अनुरूप हल्का, ताजा और पौष्टिक लीजिए। मौसमी फल, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और दही का उपयोग जरूर कीजिए। किसी को भी तेज बुखार, चक्कर, अधिक प्यास या बेहोशी जैसी समस्या होने पर तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क कीजिए और स्वस्थ बने रहिए। और अब चलते चलते कहना चाहूंगी कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। फर्क सिर्फ इतना है कि समय के अनुसार कुछ लोगों का मन बदल जाता है और कुछ लोगों के दिन। और अब कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए दमयंती वाजपेयी को। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 1:27 होने को है, वक्त है अंतराल का।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 1:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आज आप सुनेंगे भगवान सिंह ठाकुर को, रजनी भास्कर को और मथुरा प्रसाद सुमन को।

0: इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे दीपाली भुजक के गाए भजन। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: इसके साथ ही दीपाली
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

कल हो ना हो निजी सुनी सुन से सोनू निगम को जावेद अख्तर का कीद और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं। प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया और 13 लाख से अधिक किसानों को 23,708 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदने के मामले में प्रदेश देश भर में नंबर एक पर है।
1: मध्यप्रदेश ने अपने सभी प्रकार के किसानों के साथ बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,04,31,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अर्थात खरीदी की गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इतने आश्वस्त करना चाहूंगा, किसान कल्याण के सारे काम सरकार लगातार करती रहेगी।
0: ऋषा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने सांस गिरिबाला सिंह और पति समर्थ को आज कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों की 5-5 दिन की रिमांड मांगी, जिसे जज ने मंजूर कर लिया। गिरिबाला सिंह पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। कल 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें भोपाल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ट्विशा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। भोपाल में एसटीएफ ने कल रात गांधीनगर के एक मकान में छापा मारकर अवैध कफ सिरप फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया और 10 लोगों को हिरासत में लिया। मौके से ऑफ कप ब्रांड की करीब 1.5 करोड़ रुपए की नशीली सिरप, 700 से ज्यादा पेटियां और पैकेजिंग मशीनें जब्त की गई। मकान मालिक फरार है और एसटीएफ पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि फैसला सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाया जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि देरी से याचिकाकर्ताओं को गंभीर नुकसान हो सकता है। जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाकर अपलोड करना जरूरी होगा। रीवा में आज जल जीवन मिशन के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। सिरमौर चौराहा स्थित कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद जनार्दन मिश्रा ने की। कार्यशाला का मकसद ग्राम पंचायतों को नल जल योजनाओं का संचालन सौंपना और सरपंचों तथा सचिवों के साथ अनुबंध प्रक्रिया पूरी करना था। भारत के लिए पेट्रोलियम लेकर आ रहा तेल टैंकर निसोस केरोस हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है और उसके 3 जून तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। ये जहाज 21 मई को शारजाह से रवाना हुआ था और आज सुबह उत्तरी अरब सागर में देखा गया। ईरान ने इस महीने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क वसूलने की घोषणा की है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने अवैध बताया है। प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का शेड्यूल राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 24 जून से शुरू होकर 28 जून तक चलेंगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 12:30 बजे तक आयोजित होंगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम का अजब रंग देखने को मिल रहा है। एक तरफ खजुराहो में 46.5 डिग्री तापमान के साथ भीषण गर्मी का कहर है तो दूसरी तरफ ग्वालियर और मुरैना में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर समेत 6 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट और 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल से राहत मिलने के आसार है। वहीं 30 मई से 1 जून के बीच प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले के आष्टा में आगामी जून माह में 2 से 8 जून तक राष्ट्रीय स्तर का संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बैतूल में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की

0: सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास है।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रूपये से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय

ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व

का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ

0: डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश है जहर फिल्म के इस गीत की, जिसको आवाज दी है श्रेया घोषाल ने। गीत सईद कादरी का और संगीत रूप कुमार राठौर का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और

सोनू के टीटू की स्विची लीजिसनियस फिल्म से अरिजीत सिंह और रोचक कोहली को कुमार का गीत और रोचक कोहली का संगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगली फरमाइश राजी फिल्म की, जिसे आवाज दी है हर्षदीप कौर, विभा सराफ और शंकर महादेवन ने, गुलजार का गीत और शंकर एहसान लॉय का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई, इकबाल अहमद, नुरेशा बेगम कापसीदा नई दिल्ली से, नशरीन आजाद, आमना आसमा और इमरान अहमद। साथ ही कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली।

अगली फरमाइश भेजी है विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह से ओम प्रकाश नेमा श्रीमती किरण नेमा आकाश विकास नंदिनी एवं समस्त नेमा परिवार रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सबने सुनना चाहा है माय नेम इज खान फिल्म का ये नगमा शफकत अमानत अली की आवाज में, निरंजन एंगर का गीत और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

कुछ कुछ होता है। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा उदित नारायण, अलका याग्निक और मनप्रीत अख्तर की आवाजों में, समीर का गीत और जतिन ललित का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, सिद्धांत प्रिंस और एकांश गवाणकर। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये नगमा।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एकजुट हैं। प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104,22,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया और 13 लाख से अधिक किसानों को 30,708 करोड़ रूपये का भुगतान भी किया जा चुका है। प्रीशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने सास किरबाला सिंह और पति समर्थ को आज कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों की 5-5 दिन की रिमांड मांगी गई, जिसे जज ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। किरबाला सिंह पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। भोपाल में एसटीएफ ने कल रात गांधीनगर के एक मकान में छापा मारकर अवैध कफ सिर्फ फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश की सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि फैसला सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाया जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा है कि देरी से याचिकाकर्ताओं को गंभीर नुकसान हो सकता है। और रीवा में आज जल जीवन मिशन के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। सिरमौर चौराहा स्थित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद जनार्दन मिश्रा ने की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:30, रात 8:15 और रात 9:45। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:00। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। सुर्खियों में ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:00।

रात 9:30 बजे खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे मोहम्मद सोहेब की वार्ता, कौन बनेगा आईपीएल 2026 का विजेता। 10 बजे आनंद लीजिएगा आपकी फरमाइश का। और 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे पूर्वी मुखर्जी का ख्याल गायन, राग होगा भाव कौंस। ये थे हमारे केंद्र से शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है, मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव 188.32 मीटर पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। इस समय 5 बजने को है। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथियों का मनचाहा कार्यक्रम युववाणी हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं। ये आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष गेहूं उपार्जन में अपने सभी लक्ष्य हासिल करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। प्रदेश में किसानों से अब तक रिकॉर्ड 1.4 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को 2,585 रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 40 रूपये बोनस का लाभ दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है। सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का शेड्यूल राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 24 जून से शुरू होकर 28 तक चलेंगी और सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होंगी। और पुरुषों के अंडर-18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहारा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवाजन सुने कार्यक्रम युव वाणी, योगदान हमारे छतरपुर केंद्र का है।

सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, उससे आपको सिर्फ एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियाँ पढ़ो, उससे आपको सफल होने के विचार मिलेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के इसी सुविचार के साथ ये वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा श्रोताओं का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी अपनी मित्र शिल्पी अग्रवाल। तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। साथियों, आज के कार्यक्रम में मैं लेकर आई हूँ कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं, वार्ता और साथ ही आपके मनोरंजन के लिए गीत संगीत। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की पहली चर्चा से, जिसका विषय है ड्रग्स एवं नशे का सेवन ना करें। साथियों, आज के समय में नशा समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। चाहे वह शराब हो, तम्बाकू हो, गुटखा हो या फिर ड्रग्स, हर प्रकार का नशा व्यक्ति के शरीर, मन, परिवार और भविष्य को नुकसान पहुँचाता है। शुरुआत अक्सर शौक या दोस्तों के दबाव में होती है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत लत बन जाती है। नशे का सबसे बड़ा असर युवाओं पर पड़ रहा है। जो युवा देश का भविष्य हैं, वे नशे की गिरफ्त में आकर अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और करियर को बर्बाद कर रहे हैं। नशा व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को कम करता है और कई बार अपराध तथा हिंसा की ओर भी ले जाता है। साथियों, नशा करने से फेफड़े, लीवर, दिल और दिमाग प्रभावित होते हैं। कई बार कैंसर, हार्ट अटैक या मानसिक बीमारी जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। ड्रग्स एवं नशे के सेवन से गुस्सा, तनाव, डर, अवसाद और याददाश्त कमजोर की समस्या बढ़ सकती है। इससे कैरियर व हमारे काम पर भी असर पड़ता है। साथियों, ड्रग्स एवं नशे के सेवन से झगड़े, आर्थिक परेशानी और पारिवारिक कलह जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। एक नशे की लत व्यक्ति को सामाजिक रूप से भी कमजोर बना देती है। कई परिवार टूट जाते हैं और युवाओं का उज्ज्वल भविष्य अंधकार में चला जाता है। साथियों, ड्रग्स एवं नशे का सेवन न करें। इसके लिए अपना खाली समय उन गतिविधियों में बिताएं जो आपकी पसंद की हों, जैसे कि पेंटिंग, खेल।

संगीत या किताबें पढ़ना। नियमित रूप से व्यायाम और योगा करने से शरीर में प्राकृतिक रूप से एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ता है, जिससे नशे की तलब कम होती है। साथियों, नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनका सामना साहस, परिवार के सहयोग और सकारात्मक सोच से करना चाहिए। माता पिता, शिक्षक और समाज की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों और युवाओं को सही मार्गदर्शन दें। साथियों, ये तो हमने छोटी सी चर्चा की ड्रग्स एवं नशे का सेवन न करें, और अब आपका मनोरंजन करवाते हैं इस मधुर गीत के साथ।

0: साथियों, अभी आपने सुना मन फिल्म का ये मधुर गीत, जिसमें आवाज थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीतकार थे समीर और संगीतबद्ध किया था संजीव दर्शन ने। साथियों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में ले चलते हैं आपको एक और चर्चा की ओर। साथियों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के सच्चे मसीहा और भारतीय राजनीति में सादगी एवं ईमानदारी के प्रतीक चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर चर्चा करेंगे। चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि हर साल 29 मई को मनाई जाती है। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि वे उस किसान की आवाज थे जो खेतों में पसीना बहाता है और गांव में बसता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों और ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए समर्पित किया। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर वर्ष 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गाँव में हुआ था। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े होने के कारण उन्होंने किसानों की समस्याओं को बहुत करीब से देखा और समझा। यही कारण था कि आगे चलकर उनकी राजनीति का केंद्र गांव, किसान और कृषि बने। उन्होंने वर्ष 1923 में आगरा कॉलेज से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर 1925 में इतिहास में कला स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की। साथ ही चौधरी चरण सिंह का स्पष्ट विचार था कि जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक देश का विकास अधूरा रहेगा। उन्होंने किसानों को आर्थिक व सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। साथ ही उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन लागू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कानून ने लाखों किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाई और उन्हें भूमि का अधिकार प्राप्त हुआ। वे बड़े उद्योगों की अंधाधुंध नीतियों के बजाय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को अधिक महत्व देते थे। वे अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। सत्ता के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी उनके व्यवहार में विनम्रता व ईमानदारी बनी रही। साथियों, वर्ष 1979 में वे भारत के प्रधानमंत्री बने। साथियों, चौधरी चरण सिंह जी का कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो, उनके सिद्धांत व विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनका जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। पहला, राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए, सत्ता का नहीं। दूसरा, किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि राष्ट्र की रीढ़ है। तीसरा, सादगी, ईमानदारी और नैतिकता ही सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: साथियों, चौधरी चरण सिंह जी का निधन 29 मई सन 1987 को हो गया था। उनकी समाधि स्थल, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, जिसे किसान घाट के नाम से जाना जाता है, भारत माता के ऐसे महान सपूत को हमारा सत सत नमन।
0: साथियों, ये तो मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी आपको चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर, और अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए ले चलते हैं आपको एक वार्ता की ओर, जिसका विषय है गर्मी में जल संरक्षण। वार्ताकार हैं भूमिका चतुर्वेदी।
2: जल प्रकृति का अनमोल उपहार है। प्रकृति पर जीवन का अस्तित्व जल के बिना संभव नहीं है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे तथा सभी जल जीवधारी जल पर निर्भर करते हैं। जल केवल पीने के लिए ही नहीं आवश्यक है, बल्कि कृषि, उद्योग, बिजली उत्पादन, सफाई, भोजन निर्माण तथा दैनिक जीवन के लगभग हर कार्य के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जल को जीवन कहा जाता है। गर्मियों का मौसम आते ही जल का आवश्यक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस मौसम में तापमान बढ़ने के लिए नदियाँ, तालाब और कुएं सूखने लगते हैं। भूजल स्तर नीचे चला जाता है तथा लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। गांवों में महिलाएं कई किलोमीटर दूर तक जाकर पानी लाती हैं। शहर में पानी की सप्लाई कम हो जाती है और लोगों को टैंकर पर निर्भर होना पड़ता है। कई स्थानों पर जल संकट गंभीर हो जाता है। पीने के पानी के लिए संघर्ष की स्थिति बन जाती है। आज बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण और जल के अत्यधिक दुरुपयोग ने समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। यदि समय रहते जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में स्थिति भयावह हो सकती है। इसलिए गर्मियों में जल संरक्षण केवल आवश्यकता ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। जल का महत्व। जल मानव जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। बिना भोजन के मनुष्य कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है।

परंतु जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल से बना होता है। जल शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है तथा शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करता है। जल का उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। घरेलू उपयोग, पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने, नहाने और सफाई के लिए आवश्यक है। खेती पूरी तरह जल पर निर्भर करती है। फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी चाहिए। कारखानों में मशीनों को ठंडा करने के लिए, वस्तुएं बनाने तथा सफाई के लिए जल का उपयोग होता है। विद्युत उत्पादन, विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण संतुलन, नदियाँ, झीलें तथा समुद्र प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के लिए भी जल आवश्यक है। गर्मियों में जल संकट के कारण, गर्मियों में पानी की कमी कई कारणों से उत्पन्न होती है। तापमान में वृद्धि, गर्मी के मौसम में सूर्य की तीव्रता, गर्मी के कारण जल तेजी से वाष्पित होता है। इससे तालाब, नदियाँ और झीलें सूखने लगती हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन, लोग जरूरत से ज्यादा पानी निकालने लगते हैं। बोरवेल और ट्यूबवेल में लगातार उपयोग से भूजल स्तर नीचे चला जाता है। वर्षा की कमी, यदि वर्षा कम होती है तो जल स्रोतों में पर्याप्त पानी नहीं भर पाता। बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ने से पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। वनों की कटाई, पेड़ वर्षा लाने में सहायता करते हैं। पेड़ों की कटाई से वर्षा कम होती है और जल संकट बढ़ता है। जल प्रदूषण, नदियाँ और तालाबों में कचरा तथा रसायन डालने से पानी प्रदूषित हो जाता है। जल की बर्बादी, लोग नल खुला छोड़ देते हैं तथा आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करते हैं। जल संरक्षण का अर्थ, जल संरक्षण का अर्थ है जल का सोच समझकर उपयोग करना और उसे व्यर्थ होने से बचाना। इसका उद्देश्य भविष्य के लिए पानी बचाना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना न करना पड़े। जल संरक्षण केवल सरकार का नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। गर्मियों में जल संरक्षण की आवश्यकता, गर्मी के मौसम में पानी की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पीने के पानी की उपलब्धता, यदि पानी बचाया जाएगा तो सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मिल सकता है। कृषि की सुरक्षा, किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और फसलें सुरक्षित रहेंगी। भूजल स्तर बनाए रखना, जल संरक्षण से भूजल स्तर नीचे नहीं जाएगा। पर्यावरण संरक्षण, जल बचाने से नदियाँ, तालाब और झीलें सुरक्षित रहेंगी। भविष्य की सुरक्षा, आज जल बचाने से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा। जल संरक्षण के उपाय, वर्षा का चयन, वर्षा के पानी को एकत्र करके उपयोग करना वर्षा जल चयन कहलाता है। यह जल संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। लाभ, भूजल स्तर बढ़ता है, पानी की कमी दूर होती है, भविष्य के लिए जल संग्रहित होता है। नलों को बंद रखना, कई लोग पानी का उपयोग करने के बाद नल खुला छोड़ देते हैं। इससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है, इसलिए उपयोग के बाद नल तुरंत बंद करना चाहिए। रिसाव रोकना, टूटी हुई पाइपलाइन और टपकते नलों से बहुत पानी बर्बाद होता है, इन्हें तुरंत ठीक करना चाहिए। बाल्टी से स्नान करना, सॉवर की तुलना में बाल्टी से नहाने पर कम पानी खर्च होता है। पेड़ लगाना, पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं। अधिक पेड़ लगाने से पर्यावरण संतुलित रहता है। जल पुनः चक्रण, रसोई कपड़े धोने तथा अन्य कार्यों में उपयोग किए गए पानी को पौधों में डालने या सफाई के कार्य में पुनः उपयोग किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई, कृषि में ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाने से कम पानी में अधिक सिंचाई संभव होती है। लोगों को जागरूक करना, जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। स्कूलों, कॉलेजों तथा सामाजिक संस्थाओं को अभियान चलाने चाहिए। विद्यार्थियों की भूमिका, विद्यार्थी समाज का भविष्य है, वे जल संरक्षण में महत्वपूर्ण

0: भूमिका निभा सकते हैं। पानी व्यर्थ करना, दूसरों को जागरूक करना, स्कूलों में अभियान चलाना, पेड़ लगाना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, सरकार की भूमिका। सरकार को जल संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, जैसे नए तालाब और बांध बनाना, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करना, जल प्रदूषण रोकना, जागरूकता अभियान चलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुविधाएं बढ़ाना। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट, गांवों में गर्मियों के दौरान जल संकट अधिक गंभीर होता है। कई गांवों में महिलाएं दूर दूर से पानी लाती हैं, पशुओं को भी पानी नहीं मिल पाता, खेती प्रभावित होती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इस समस्या के समाधान के लिए तालाबों का निर्माण, कुओं की सफाई तथा वर्षा जल संचयन आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में जल संकट, शहरों में बढ़ती आबादी के कारण पानी की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। बड़ी बड़ी इमारतें और उद्योग भूजल का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप कई शहरों में गर्मियों में पानी की भारी कमी हो जाती है। जल संरक्षण से पर्यावरण संतुलित रहता है। यदि पानी की कमी होगी तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। पानी बचाओ, भविष्य बचाओ। बूंद बूंद से सागर भरता है। यदि जल नहीं रहेगा तो कल नहीं रहेगा। जल है तो कल है, हर बूंद कीमती है। जल संरक्षण अपनाओ, भविष्य सुरक्षित बनाओ। पानी की बर्बादी रोको। गर्मियों में जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि हम आज पानी की बचत नहीं करेंगे तो भविष्य में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी आदतें अपनानी चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जल है तो जीवन है।
1: साथियों, अभी आपने सुनी वार्ता गर्मी में जल संरक्षण। वार्ताकार थी भूमिका चतुर्वेदी। साथियों, हमारी आखिरी चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस। हर वर्ष 29 मई को यह दिवस उन बहादुर शांति रक्षकों के सम्मान में मनाया जाता है जो दुनिया के विभिन्न संघर्षरत क्षेत्रों में शांति और मानवता की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। यह दिन उन वीर सैनिकों, पुलिस कर्मचारियों और नागरिक कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने विश्व शांति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की शुरुआत 29 मई वर्ष 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में शांति स्थापित करना है जहां युद्ध, हिंसा और अस्थिरता के कारण आम जनजीवन प्रभावित होता है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक विभिन्न देशों से आते हैं और बिना किसी भेदभाव के मानवता की सेवा करते हैं, नागरिकों की सुरक्षा करने

वर्ष 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में शांति स्थापित करना है जहां युद्ध, हिंसा और अस्थिरता के कारण आम जनजीवन प्रभावित होता है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक विभिन्न देशों से आते हैं और बिना किसी भेदभाव के मानवता की सेवा करते हैं। नागरिकों की सुरक्षा करने, राहत कार्यों में सहायता देने तथा शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत का योगदान संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हमारे देश के हजारों सैनिकों ने दुनिया के अनेक देशों में शांति स्थापना के कार्यों में भाग लिया है। भारतीय सैनिक अपनी बहादुरी, अनुशासन और मानवीय सेवा के लिए विश्व भर में सम्मानित किए जाते हैं। कई भारतीय शांति रक्षकों ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। श्रोताओं, शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं है, बल्कि यह मानवता, सहयोग और अपनी विश्वासी का प्रतीक है। आज के समय में जब दुनिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, तब संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, वे हमें यह संदेश देते हैं कि संवाद, सहयोग और सहिष्णुता से ही स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम, सेमिनार और श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए जाते हैं। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस 2026 का मुख्य विषय है शांति में निवेश करें, इन्वेस्ट इन पीस। यह विषय शांति सैनिकों को उनके महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करने हेतु निर्णायक कार्यवाही की आवश्यकता पर जोर देता है। साथियों, ये तो हमने आपको जानकारी दी अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस पर, और अब आपके मनोरंजन के लिए सुनवाते हैं लव ब्रेकअप जिंदगी से ये प्यारा सा गीत।

0: लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.bankin पर विजिट करें।
1: साथियों, ये तो रही आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, तो अनुमति दीजिए अपनी मित्र शिल्पी अग्रवाल को। नमस्कार।

साथियों, अभी आपने सुना लव ब्रेकअप जिंदगी से ये मधुर गीत, जिसमें आवाज थी सलीम मर्चेंट की, गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीतबद्ध किया था सलीम सुलेमान ने। और साथियों, अब वक्त हो चला है आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना का। BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है अप्रेंटिस, पदों की संख्या है 5000, आयु सीमा है न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि है 8 जून 2026। शैक्षणिक योग्यता किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए। अधिक जानकारी

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युव वाणी। योगदान हमारे छतरपुर केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज और जावेद अली की आवाज में रावण फिल्म का ये गीत। गीत लिखा था गुलजार ने, संगीत था AR रहमान का।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: आइए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं। फिल्म है लम्हा, आवाज है क्षितिज तारिकी और गीत लिखा है सईद कादरी ने, संगीत है मिथुन का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म लम्हा का ये गीत। आइए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, फिल्म है मिलेंगे मिलेंगे। आवाज है सोनू निगम और अलका याग्निक की। गीत लिखा है समीर ने, संगीत है हिमेश रेशमिया का।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में समीर की शब्द रचना, फिल्म थी मिलेंगे मिलेंगे। आइए क्रांतिवीर फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवाते हैं। आवाज है सलीम मर्चेंट की, गीत और संगीत है हनीफ शेख का।

क्रांति वीर के साथ इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारी सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ देर बाद यानी 6 बजे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा के कलाकार होंगे भास्कर साहू। 7:20 पर ग्रामीण भाई ग्राम सभा में सुनेंगे राजकुमार उदैनिया से मानस प्रवचन, प्रसंग होगा भगवान का वरदान। इसके अलावा डॉ अंकित शाके की वार्ता का विषय होगा भारत में कृषि विकास में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की भूमिका। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में। रात्रि 8:15 पर और 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे नाटक लौटते कदम। लेखिका होंगी सुमन वर्मा और प्रस्तुति होगी श्रीहर्ष पांडे की। दस बजकर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित निखिल बैनर्जी से राग चंद्रकोश में सितार वादन। ये थे हमारी सभा के शेष कार्यक्रम। लीजिए सुनिए हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। कल हमारी प्रातःकालीन सभा में 7:20 पर बुंदेली सुगंध क्रम में आप सुनेंगे द्वारका प्रसाद शुक्ला से बुंदेली वार्ता देशभक्त घासीराम व्यास। फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा 7:30 पर और शाम 5:30 पर तथा रात्रि 8:15 पर। कल हमारी प्रातःकालीन सभा में 8:30 पर आप सुनेंगे गीत गुंजन। 9 बजे लोकरंग की कलाकार होंगी सुमन दुबे। 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे। 10:05 पर होगा मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सबरंग। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कल हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे दिन में 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। 12 बजे आपकी फरमाइश। 12:30 पर संग्रहालय से। 1 बजे महिला कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत। दिन में 2 बजे फिल्म संगीत और 2:30 पर आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही कर रिले करेंगे शाम 5:02 पर युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युवाणी और रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में। कल शाम 6 बजे सुगम संगीत के कलाकार होंगे गुलाम अली। 6:30 पर लोकधारा के कलाकार होंगे रूपा तिवारी और नंदराम तिवारी। 7:20 पर ग्रामीण भाई ग्राम सभा में सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोकरंजन। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। कल हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय युवा पत्रिका कार्यक्रम युवा भारती और 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। श्रोताओं हम एक बार फिर बता दें आज रात 10 बजे आप सुनेंगे नाटक लौटते कदम। लेखिका होंगी सुमन वर्मा और प्रस्तुति होगी श्रीहर्ष पांडे की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान ऐप के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। इस डिजिटल एप्लीकेशन का उद्देश्य देशभर के स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू मुक्त बनाना है। रिजर्व बैंक की शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91.97 लाख करोड़ रुपए हो गई है। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश और स्वर्ण तथा विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। सीबीएसई ने घोषणा की है कि उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज पोर्टल 1 जून 2026 से खुलेगा, जबकि एक पारदर्शी त्रुटि मुक्त प्रक्रिया और उच्च मूल्यांकन मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस साल गेहूं उपार्जन में अपने सभी लक्ष्य हासिल करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: शब्दांक
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ।
4: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
3: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
4: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
3: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणी जी,
4: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
3: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
4: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
3: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
4: जी, ये बात तो है।
3: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
4: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
3: जी,
4: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
3: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
4: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
3: जी।

0: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
1: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
0: काले गुलाब?
1: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
0: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है
1: जी,
0: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है
1: जी।
0: वास्तव में ये काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
1: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
0: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है
1: जी।
0: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
1: अजीत जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
0: जी वो तो है।
1: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है
1: जी।
0: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
0: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
1: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है। जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का
0: जी,
1: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
0: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते
1: जी,
0: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
1: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
0: जी तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेले,
2: कभी कबड्डी खो खो खेले,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेले,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेले,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत, अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा। हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना। ओके।
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे। हम तैयार हैं। लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
3: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
3: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
4: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
4: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
4: जय महाकाली। आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।

पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा।

0: दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत

0: इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
1: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
2: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए, सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए, स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
0: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
2: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
0: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
3: ना छोड़नू।
2: जिसका अर्थ है, उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत के विजय का मार्ग खुल गया।
2: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
2: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी।

0: यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आपने सुना एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें आज के कलाकार हैं भास्कर साहू। आइए भास्कर साहू से सबसे पहले सुनते हैं ये देवी गीत। ढोलक पर संगत कर रहे हैं संजय भाटे और बैंजो पर हैं लखनलाल।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: आइए भास्कर साहू से सुनते हैं ये सैरो।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी,
2: फीस तो देखो।
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
4: वो कहाँ है
5: मिठाई?
6: आरबीआई कहता है
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: AIR at 90.
1: आइए अब सुनते हैं भास्कर साहू से ये बधाई।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

0: Akashwadi at 90.
1: आइए अब सुनते हैं जीवनार गारी, कलाकार हैं भास्कर साहू।

आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं भास्कर साहू से ही ये ढेमरी आई। ढोलक पर हैं संजय भाटे और बैंजो पर हैं लखनलाल।

इसी के साथ बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

सुगम संगीत, दिन में 2 बजे फिल्म संगीत और 2:30 पर आपकी फरमाइश। कल हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही रिले करेंगे शाम 5:02 पर युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी और रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि कल हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे दिन में 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, 12 बजे आपकी फरमाइश, 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से, 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर

कल शाम 7:20 पर ग्रामीण भाई ग्राम सभा में सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोकरंजन। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। कल हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय युवा पत्रिका कार्यक्रम ये भारतीय और 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्ति के बारे में सूचना। गुमशुदा का नाम है मांडवी। ये ग्राम गुपलापुर जालौन थाना सिरसा कलार जनपद जालौन उत्तर प्रदेश से हैं। मांडवी 17 अप्रैल 2026 को शाम लगभग 3 बजे से अपने ग्राम सिरसा कलार जालौन से लापता हैं। इनकी उम्र 23 वर्ष है। रंग गेहुआ, एकहरा बदन, ऊंचाई 4 फुट 8 इंच, पीले रंग की कुर्ती छींटदार, लोवर क्रीम कलर का और दुपट्टा हरे रंग का पहने हुए हैं। इनके पिता का नाम चरण सिंह है। जिस किसी को जानकारी प्राप्त हो इस नंबर पर सूचित करें। क्षेत्राधिकारी जालौन का मोबाइल नंबर 9454401428 यानी 9454401428। थाना अध्यक्ष सिरसा कलार का मोबाइल नंबर 9956054579 यानी 9956054579। जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर 9305490479 यानी 9305490479। और उनके परिवार वालों के नंबर हैं 8874688768 और 8400122953। सूचना समाप्त हुई।

लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्ति के बारे में एक और सूचना। गुमशुदा का नाम है शिवानी, पिता का नाम जितेंद्र कुमार, निवासी ग्राम बिनौरापुर, थाना कोटरा, तहसील ओरई, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश। शिवानी 12 अप्रैल 2026 को करीब रात्रि 11 बजे घर से लापता हैं। शिवानी का चेहरा लंबा है, रंग सांवला, आंख नाक कान औसत, कद लगभग 4 फुट 4 इंच और उम्र करीब 14 वर्ष है। सलवार सूट व काला दुपट्टा पहने हुए बिना चप्पल सी पहने लापता हुई हैं। जिस किसी को जानकारी प्राप्त हो इन नंबर पर सूचित करें। क्षेत्राधिकारी नगर उरई जनपद जालौन का मोबाइल नंबर 9454401।

427 यानी 9454401427 थाना निरीक्षक थाना कोटरा जनपद जालौन का मोबाइल नंबर 9454403598 9454403598 विवेचक थाना कोटरा का मोबाइल नंबर 9935134231 यानी 9935134231। सूचना समाप्त हुई।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने पर 5 राष्ट्रीय पहलों की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पेपर लीक दुर्भाग्यपूर्ण, सीबीआई करेगी जांच और दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। केंद्र सरकार ने कहा, देश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं, रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चालू। और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने जम्मू पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल पूरे होने पर 5 राष्ट्रीय पहलों की शुरुआत की और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग आज 182 देशों में मौजूद है और पूरी मानवता को जोड़ने का काम कर रहा है। वहीं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने कहा कि आज की दुनिया में ध्यान विलासिता नहीं बल्कि जरूरत बन गया है और जीवन में ज्ञान, ध्यान और संगीत हमेशा साथ रहने चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी योग्य छात्र का भविष्य परीक्षा माफियाओं की वजह से बर्बाद हो। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करेगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। श्री प्रधान ने कहा,
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में कहा है कि इस चूक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई की, जिसमें एनटीए को हटाकर

0: की जगह एक मजबूत और स्वायत्त संस्था बनाने की मांग भी शामिल है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा है और अब अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। केंद्र सरकार ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चल रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में अभी रोजाना 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि किसी भी एलपीजी वितरक से गैस की कमी की कोई शिकायत नहीं आई है।
1: मैं आप सभी के द्वारा सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने महज 4 दिनों में पाकिस्तान को युद्ध विराम की अपील करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने इस अभियान को भारत के सैन्य इतिहास की अभूतपूर्व सफलता बताते हुए कहा कि तीनों सेनाओं के उत्कृष्ट तालमेल और आधुनिक सैन्य क्षमता का जीवंत उदाहरण था। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक विशेष स्मारक प्रकाशन का भी विमोचन किया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित रहे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज माता वैष्णो देवी धाम में दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि राज्य सरकार का एक दल यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने आया है। डॉ. यादव ने कहा कि महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर और भोशाला जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए देश के बड़े तीर्थस्थलों से सीख ली जा रही है। पीशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सास गिरिवाला सिंह और पति समर सिंह को 5-5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। गिरिवाला सिंह पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। कल 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें भोपाल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में पीशा के संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। भोपाल में एसटीएफ ने कल रात गांधीनगर इलाके में एक मकान पर छापा मारकर अवैध कफ सिरप बनाने के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। यहां ऑफ कफ नाम की नशीली सिरप बनाकर बाजार में सप्लाई की जा रही थी। पूरे सेटअप की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रात 12 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई सुबह 3 बजे तक चली, जिसमें 700 से ज्यादा पेटियां, बोतलें और पैकेजिंग मशीनें जब्त की गई हैं। 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104,22,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया और 13 लाख से अधिक किसानों को 30,708 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदने के मामले में प्रदेश देशभर में नंबर एक पर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में 40 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर लग चुके हैं, जिनमें प्रदेश के 1,21,000 से अधिक घर शामिल हैं। प्रदेश में इन संयंत्रों से 456 मेगावाट से ज्यादा स्वच्छ सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह योजना भारत को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जबलपुर शहर के लोगों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि एनएचएआई करीब 3,540 करोड़ रुपए की लागत से 114 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड बना रहा है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने आज बताया कि यह 4-लेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर खासतौर पर भारी और लंबी दूरी के वाहनों को शहर के बाहर से रास्ता देगा, जिससे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छिंदवाड़ा के खोखरा वाटरफॉल पर कल बुधवार

को हुए हादसे में डूबे दोनों किशोरों के शव बरामद कर लिए गए। हादसे में एक शव गुरुवार को और दूसरा शव 36 घंटे बाद आज गहरे पानी से निकाला गया। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त वाटरफॉल के पास सेल्फी लेते वक्त संतुलन बिगड़ने से गहरे पानी में चले गए थे। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से अपनी सेहत का ख्याल रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से खूब पानी पीने, बच्चों को हाइड्रेट रखने और घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शासकीय महाविद्यालय में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अशोकनगर में गर्मी में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया। दतिया में जल संरक्षण और मनरेगा में लापरवाही पर 11 सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। धार में वन विभाग ने छापा मारकर निजी कंपनी के गोदाम से विभिन्न प्रजातियों की छाल और बीजों का अवैध भंडारण जब्त किया। झाबुआ में आईटीआई में प्रवेश के इच्छुक छात्र 30 जून तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। देवास में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कुओं तालाबों और नदियों की सफाई और गहरीकरण का काम जारी है। नर्मदापुरम में पवारखेड़ा में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगर मालवा के नलखेड़ा में विधायक भैरव सिंह परिहार ने 11 करोड़ रूपये के विकास कार्यो का भूमि पूजन किया। गुना में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। निवाड़ी में भाजपा जिला कार्यालय में मोदी जी के 12 साल बेमिसाल विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। शिवपुरी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 35 दिवसीय निःशुल्क ब्यूटिशियन प्रशिक्षण में 31 महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के केंद्रीय चिकित्सालय में अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन पर सेमिनार और मॉकड्रिल आयोजित की गई। इस मीटिंग में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ग्राम सभा सुनने बारे सवई भैया बेनन खां किसु भैया
1: और रघु भैया की
0: राम राम राम राम, राम, राम भैया रघु और आओ बिराजो और सुनाओ का है हाल चाल।
1: देखो किसु भैया हाल चाल तो सब ठीक है, अपन तो देख ही रहे कि गर्मी बहुत तेज पड़ रही है
0: बिल्कुल,
1: और ये मौसम में भैया देखो अगर पंच भैया ने थोड़ी सी लापरवाही करी तो उनके स्वास्थ्य को नुकसान हो सका था
0: बिल्कुल। और देखो रघु भैया कछु कमकम आंधी पानी तन तन बूंदा बांदी सो हो गई है और अब ऐसी समय में और ज्यादा जा गर्मी जोन है जा प्रभाव दे।
1: और भैया तो कहा है अगर थोड़ी सी लापरवाही करी तो समझ लो कि पंच भैया बीमार हुई है, तो बीमार हुई है तो अगर अपने घर में कोनो एक आदमी बीमार हो जाए तो पूरा घर परेशान
0: बिल्कुल, पूरो घर ही होत परेशान दवाई दारू से हर तरह से हैरान हो जाते हैं
1: बिल्कुल भैया। किस्सु भैया देखो आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है
0: बिल्कुल,
1: वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा थे। चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि हर साल भैया 29 मई का माना जाता है, इनको निधन 29 मई 1987 को हुआ था और इनकी समाधि का

0: किसान घाट के नाम से जाना जाता है।
1: बिल्कुल। और भैया रघु भैया जी भारत के 5वें प्रधानमंत्री हते और उनको कार्यकाल जो है 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 लो रहो।
0: किसानों के उत्थान, कृषि सुधार और ग्रामीण विकास में उनके अतुलनीय योगदान को आज याद करो जाते हैं। इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 30 दिसंबर का किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: बिल्कुल रघु भैया, उत्तर प्रदेश में उनके नाम पे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को नाव

0: सार राष्ट्र उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके द्वारा करे गए विकास कार्यों को याद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो हम ही सब सभी जने मिलके अपन सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
0: और किशु भैया, आज देखो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस भी है भैया, जो भी प्रत्येक वर्ष 29 मई का मनाया जाता है।
1: बिल्कुल, और जो दिन संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाले वर्दीधारी और नागरिक कर्मियन के साहस और समर्पण और सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देवे के लाने समर्पित है जो दिन।
0: और भैया संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 2002 में इनकी स्थापना करी गई थी।
1: बिल्कुल, और जो दिन संघर्षन का सुलझावे के लाने, नागरिकन की रक्षा करवे के लाने और लोकतंत्र का बढ़ावा देवे के लाने और शांति सैनिक की भूमिका रेखांकित कर। बिल्कुल बिल्कुल,
0: और देखो किशु भैया अब चर्चा तो होती ही रहे।
1: बिल्कुल, तो के पहले अपन तनक सो रुक लेते हैं।
0: बिल्कुल,
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

0: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
2: किशु भैया।
3: हाँ रघु भैया,
2: ग्राम सभा कार्यक्रम में एक बार सभी पंच भाइयों को फिर से स्वागत है।
3: बिल्कुल रघु भैया, स्वागत करते हैं अपन पंचन को। और देखो रघु भैया, अपन देखते हैं कि परिवार जोन है पति पत्नी के सामंजस्य से बनत।
2: बिल्कुल भैया, और पति पत्नी की आपसी समझ परिवार का आगे बढ़ाऊ थे, बच्चन में संस्कार आउ थे और साथ में भैया परिवार सुखी और स्वस्थ रहा।
3: कई बार देखो जाते हैं अपन देखा थे कि पति पत्नी एक दूसरे को सम्मान करें, पहली बात।
2: हाँ।
3: और भैया देखो, आज के आपसी विश्वास, यानी एक दूसरे के प्रति उनका विश्वास बहुत चाहिए।
2: ऊ के लाने भैया देखो, घर परिवार में छोटी छोटी बातें होती है, नजरअंदाज करू चाहिए।
3: बिल्कुल, कई बार अपन देखा थे कि थोड़ी सी बात को बतंगड़ बना के और वो परिवार ऐसा टूट जाते, बिखर जाते, पूरी तरह से बर्बाद हो जाते, नहीं।
2: और किलाने भैया सबसे बढ़िया है कि देखो, अगर पत्नी पति को सम्मान कर रही तो भैया पति का भी पत्नी को सम्मान करू चाहिए।
3: बिल्कुल।
2: और दूसरी बात का है कि जैसे कोनो भी बात है तो आपस में खुल के बात करें।
3: बिल्कुल,
2: ऐसा न लगे कि भैया एक दूसरे से बात छुपाई जा रही और यही बातें आगे चल के फिर बड़ी बड़ी।
3: बिल्कुल रघु भैया, क्यों भी ऐसा भी देखो जाते है कि पति सोचने लगा था भैया जो घर को काम कौन ऐसा है वो हम आओ कर भी को नई, लेकिन अगर घर के काम मिल बांट के करे जाए तो भी जल्दी भी हो जात और उसे सहयोग भी मिल जात और अपने घर के सदस्य खा भी आराम मिलत के नहीं मिलत।
2: देखो भैया का है, देखो पति पत्नी एक गाड़ी की दो पहिया।
3: बिल्कुल,
2: अगर एक पहिया गड़बड़ हो तो फिर दूसरा पहिया भी, गाड़ी कैसे चल है भैया,
3: चल ही नहीं सकता।
2: चलाना कहो चाहिए भैया, एक दूसरे के प्रति सहयोग, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना बहुत चाहिए भैया, तभी आपस में।
3: बिल्कुल, और देखो घर में जब चार बासन होते हैं तब भड़बड़ा तो है ही है, अगर तना मना को उन्हें कछु कह दई तो वो चीज कहा सुन लीवे और रह जाए, सहनशीलता बहुत चाहिए कहवे को मतलब।
2: और भैया देखो, घर में जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग माता पिता है, उनको भी सम्मान।

0: करें,
1: बिल्कुल
0: कबहू कहू का हो ना, कि मान लो के माता पिता से कोई कही,
1: बिल्कुल,
0: तो सामने वाले खन लगन लगे तन्ने ऐसो कही, तो जी चीज ना करे। देखो सबके माता पिता हैं,
1: बिल्कुल,
0: आपके भी और उनके भी, तो दोनों एक दूसरे को सम्मान करें,
1: बिल्कुल,
0: और आगे बढ़े।
1: और कौनो एक बार की कई भाई बात पे विश्वास ना करो चाहिए, मिलजुल के एक जगह बैठ के उनको अंतिम निष्कर्ष निकालो चाहिए कि आखिर गलती कहाँ से भाई।
0: और दूसरी बात कहा है भैया, अपन देखा है कि आज के समय में जो भी पंच भैया हैं धीरे धीरे एकाकी हो जा रहा है,
1: बिल्कुल,
0: परिवार पहले संयुक्त रहते, अब एकल परिवार होने लगे,
1: बिल्कुल,
0: और जिनके संग माता पिता भी रहे तो भी अपनी नौकरी चाकरी में इतने व्यस्त रहते के
1: उन्हें
0: बुजुर्ग लोगों के पास बैठ भी को समय नहीं।
1: तो जो भी हम तो पंचन से कहें कि भले काम कितनी कऊ रहा है, लेकिन अपनो 10 मिनट 5 मिनट कितनी कऊ समय अपने बाप मताई के लाने
0: भी निकाले, उन्हें अच्छा लगत भी,
1: बिल्कुल।
0: और दूसरी बात का है कि उनके अनुभव को भी फायदा, पुराने आदमी के जो अनुभव है कोनो भी समस्या छुट्टी में हल कर देते, आदमी टेंशन में रहता है, बुजुर्ग लोगों से
1: सलाह नहीं लेता है, बिल्कुल। रघु भैया, और देखो आज है शुक्रवार, तो पंचन है सुनवाऊ थे अपन मानस प्रवचन, आज को प्रसंग है भगवान का वरदान, प्रवचन करता है राजकुमार उदेनिया जी।
0: तो भैया अपन सुने पंचन है मानस प्रवचन,
1: बिल्कुल।

पर प्रिय श्रोता महानुभाव, मानस के सभी श्रवण करने वाले कथा के समस्त रसिक श्रोता माताएं बहने, भगवत प्रेमी महानुभाव, आज भगवान के इस पावन चरित्र में, पावन प्रसंग में भगवान श्री नारायण हरि के द्वारा ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को एवं गौ माता का रूप बना करके पृथ्वी सभी को वरदान दिया, अभय वरदान दिया है। ऐसा सुंदर मानस में गोस्वामी जी महाराज स्तुति जो ब्रह्मा जी ने की भगवान नारायण की।

0: भगवान श्री हरि की स्तुति करते हुए जब ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर निवेदन किया, कहा कि प्रभु हम सब दीन होकर के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर भार हटाने के लिए हम सभी लोग दीन बनकर के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और आप हम पर कृपा करिए।
1: जेगी दीन प्यारे वेद पुकारे ध्रुव सुश्री भगवाना भव बार दि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल स्वर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा।
0: ब्रह्मा जी ने सभी की ओर से निवेदन किया कि हे प्रभु हम सभी देवताओं के साथ साथ सभी मुनि सभी सिद्ध सकल स्वर

परम भयातुर और परम भयभीत होकर के आपकी स्तुति करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, आपके चरणों में नमत नाथ पद कंजा नमन कर रहे हैं। देवताओं को ऐसा भयभीत जान करके जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सनेह गगन गिरा गंभीर भई सोहरनी शोक संदेह। ऐसी सुंदर स्तुति को सुनकर के भगवान नारायण के द्वारा सुंदर जो है आकाशवाणी होती है और देवताओं को अभय कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि आप डरिए नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। जनी डर पाओ।

भगवान आकाशवाणी के द्वारा सबको अभय करते हैं और वरदान देते हैं। कहते हैं कि कश्यप और अदिति ने हमें प्राप्त करने के लिए महान तपस्या की है पूर्व जन्म में, इसलिए हम जो है उनके यहाँ पुत्र बनकर के प्रकट होंगे, पुत्र बनकर के जन्म लेंगे, वही जाकर के दशरथ और कौशल्या बनेंगे। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। भगवान ने सुंदर आकाशवाणी के द्वारा बता दिया, निर्भय कर दिया, कहा कि कश्यप अदिति ने जो पूर्व जन्म में तपस्या की है वही कश्यप जो ऋषि थे वह आकर के जो है इस जन्म में भगवान को प्रकट करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या की थी वह महाराज दशरथ हैं। दशरथ के रूप में उनका जन्म हो गया है और जो अदिति हैं वो कौशल्या के रूप में प्रकट हुई हैं, इसलिए उनको मैं पूर्व जन्म में वरदान दे चुका। ते दशरथ

रहा हूँ। भगवान ने ये भी कह दिया कि मुझे जो है जो नारद जी ने श्राप दिया है उस श्राप को भी तो पूरा करना है, क्योंकि नारद श्राप दीने के बारा और कल्प एक तही लगी अवतारा, एक कल्प में मैंने नारद जी के श्राप के कारण ही जो है अवतार लेने को जो बात कही है नारद जी को, जो श्राप नारद जी का मुझे स्वीकार किया मैंने, बोले उस श्राप को भी पूरा करना है। और कहते हैं हरि गौ सकल भूमि गरवाई, हरि गौ सकल भूमि गरवाई, निर्भय हो देव समुदाई। सब देवताओं को निर्भय कर दिया, अभय कर दिया, कह दिया कि हम पृथ्वी का सारा भार राम के रूप में प्रकट होकर के और पृथ्वी का भार हरण करेंगे, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। और जैसे ही उस गगन ब्रह्मवाणी को सुना ब्रह्मा जी ने, समस्त देवताओं ने, गगन

गाना बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं गोस्वामी जी महाराज, शब्द का सुंदर भावपूर्ण कहते हैं कि सब सब जो है उनके जो कष्ट की जो गर्मी थी, कष्ट का जो संताप था, ताप था, वो शांत हो गया और तुरंत फ्रेश और हृदय जुड़ाना।

और तब जाकर के ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा, तब ब्रह्मा धरणी समझावा अभय भई भरोस जिए आवा। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को भी सांत्वना दी, जो पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके देवताओं के ब्रह्मा जी के साथ देवताओं के साथ भगवान की स्तुति किए हैं ब्रह्मा जी, तो उस समय देवताओं की उस वाणी को सुनकर के भगवान ने जो अभय वरदान दिया उस बात को भी ब्रह्मा जी ने समझा दिया कि देखो तुमने सुन लिया, भगवान ने निर्भय कर दिया सभी को। और जाकर के गोस्वामी जी कहते निज लोक ही ब्रंच गए। ब्रह्मा जी उस ब्रह्मवाणी को सुनकर के अपने ब्रह्मलोक को जाते हुए निज लोक ही ब्रंच गए देवन यज्ञ सिखा।

हो जाए। कितना सुंदर बात कही ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी देवताओं से कि अब आप सब लोग जो है भगवान का, भगवान की प्रतीक्षा करें, भगवान का आने का इंतजार करें। और सभी देवताओं ने तुरंत ब्रह्मा जी की आज्ञा पा करके अपने देव स्वरूप को त्याग करके और बनचर देह अर्थात सभी लोग वानर बन जाते हैं। गोस्वामी जी के तो बन

सभी देवता बंचर देह धारण कर लेते हैं, बानर बन जाते हैं। और गोस्वामी जी ने कितना सुंदर भाव लिखा, बोले कितना सुंदर भाव के साथ में भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गिरितर नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चितवय मति धीरा। हरि मार्ग अर्थात भगवान कोई आने की प्रतीक्षा, रास्ते की तरफ देख रहे हैं कि भगवान कब आते हैं, कब हमें भगवान का दर्शन होगा। और गिरी कानन, कहां पर्वत में, कंदराओं में, जंगल में, नदी के किनारे, सर्वत्र। बोले गिरी कानन जयते भरी पूरी, और रहे निज निज अनेक रचि रूरी। नदियों में, तालाबों में, जंगल में, सर्वत्र वानर जो का रूप धारण करके देवता भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रहे निज निज अनेक रच रूजरी, अपनी अपनी सेना सजा करके और भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती जी, मैंने तुमको एक पावन चरित्र सुनाया, ये रुचिर चरित्र, ये सुंदर चरित्र सुनाया। यह सब रुचिर चरित्र में भाखा, अब सो सुनो जो बीच ही राखा। भगवान ने जो वरदान दिया, भगवान ने जो अभय कर दिया, उसी बात के लिए गोस्वामी जी महाराज भगवान शंकर के माध्यम से पार्वती जी से जो कह रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि अयोध्या में एक महान राजा, चक्रवर्ती राजा दशरथ जी, उनका प्राकट्य हुआ, जिन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए राजा मनु और शत्रुपा के रूप में जो कठिन तपस्या की, उसके लिए सुंदर भाव के साथ गोस्वामी जी कह रहे हैं। बोले अवधपुरी रघु

0: जो किशु भैया।
1: हाँ रघु भैया।
0: अबे अपने पंच सुन रहे थे मानस प्रवचन। आज के मानस प्रवचन को प्रसंग हतु भगवान का वरदान प्रवचन करता हते राजकुमार उदयनिया जी।
1: बिल्कुल रघु भैया, तो अब अपन पंचन लेके चलते हैं एक वार्ता कूद।
0: बिल्कुल भैया,
1: और सुनवाऊ थे एक वार्ता भारत में कृषि विकास में प्राथमिक कृषि सहकारी समिति की भूमिका।
0: और वार्ताकार है डॉक्टर अंकित साक्य। तो अपन सुने
1: सुने वार्ता।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज भारत में कृषि विकास में प्राथमिक कृषि सहकारी समिति की जो भूमिका है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाएं विकसित की गई है। इन्हीं में से एक हमारी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति का विशेष महत्व है, जो गाँव स्तर पर कार्य करते हुए किसानों को सस्ती ऋण सुविधा, कृषि सामग्री, विपणन सहायता तथा अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है। ये समितियां सहकारी के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, जहां किसान आपसी सहयोग से अपनी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हैं। इस प्रकार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां न केवल किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, बल्कि कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कृषि सहकारी समिति क्या है। सरल शब्दों में बताऊं तो जब किसान मिलकर एक संस्था बनाते हैं जो एक दूसरे की मदद से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो वो कृषि सहकारी समिति ही कहा जाता है। इसके कुछ विशेष कार्य भी हैं, जैसे ऋण सुविधा प्रदान करना, कृषि इनपुट की आपूर्ति करना, फसल के बाजार में सहायता करना, भंडारण सुविधा प्रदान करना, कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना, और इसके साथ साथ जो अभी मैंने बताया है कि ऋण सुविधा प्रदान करना, जैसे कि किसानों को अगर कम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वो अपना फसल को बीज और दवाई खाद उर्वरक खरीद सकें और अन्य कृषि कार्यों को वित्तीय सहायता से पूरा कर सकें। उन्नत बीज उर्वरक कीटनाशक उपलब्ध कराना चाहिए, उचित मूल्य पर कृषि सामग्री उपलब्ध कराकर कम लागत हो जाती है, किसानों को उपज को बाजार तक पहुंचाना, बिचौलियों की भूमिका को कम करना, गोदामों की सुविधा देना, किसानों को फसल सुरक्षित रखने में मदद करना ताकि वो सही समय पर बेच सकें, और जैसे कि कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, जैसे कि ट्रैक्टर है, पंप सेट है और अन्य कृषि यंत्र उपलब्ध कराना, आधुनिक खेती को बढ़ावा देना। और इसको देखते हुए कृषि सहकारी समिति का महत्व भी बहुत है, जैसे कि किसानों की आय में वृद्धि, जब उचित मूल्य पर अगर हम फसल बेचते हैं तो हमें लाभ मिलता है, और बिचौलियों से बचाव होने कारण हम अपने जो आर्थिक सामाजिक जो कार्य हैं हम उनपे आगे बढ़ पाते हैं, ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिलता है, जैसे गांव में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, किसानों तक सरकारी योजनाएं आसानी से पहुंचती हैं, जैसे सब्सिडी बीमा है और अन्य सुविधाएं मिलती हैं, किसान आत्मनिर्भर भी बनते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत भी होते हैं, और आपसी सहयोग और एकता की भावना भी बढ़ती है, भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है। तो ये सब जो है इनका महत्व है, और इसमें कुछ समस्याएं भी आती हैं किसानों के लिए, जैसे जागरूकता की कमी, किसानों की योजनाओं व सुविधाओं की पूरी जानकारी नहीं होती है और वो रिस्क भी नहीं ले पाते हैं, वित्तीय कमजोरी होती है, कोई भी समिति बनी हुई है तो जहां पर समितियों के पास पर्याप्त पूंजी का अभाव भी है, तकनीकी रूप से पिछड़ापन भी है, अधिकांश समितियां अभी भी डिजिटल नहीं है जबकि पूरा भारत डिजिटलाइज हो चुका है, तो जिससे रिकॉर्ड रखने में गड़बड़ी होती है, और प्रावधान में भी कमी है, और कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो जाता है। अधिकांश समितियां अपने सदस्यों को पर्याप्त ऋण नहीं दे पाती हैं, इसलिए सदस्यों को लाचार होकर फिर से महाजनों से ऋण लेना पड़ता है। अधिकतर ऋण भूमि की जमानत पर दिए जाते हैं, जबकि ऋण किस्तों में व वस्तुओं के रूप में कम ही दिए जाते हैं। ऋण वितरण में होने वाली काफी देरी इन समितियों की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है।

0: के आवेदन और इसके वितरण के बीच अधिक समय लग जाता है, और इसके साथ साथ जो ये समस्या का जो समाधान है वो कैसे किया जाए, पूंजी सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, जैसे सरकार और सहकारी बैंक द्वारा अधिक वित्तीय सहायता और पूंजी प्रदान की जाए, जिससे कि आम आदमी भी अपनी फसल को, अपने घर को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। और डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए, सभी किसानों के सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जो बैंक आती है उसमें अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, और सभी समितियों को कंप्यूटर, इंटरनेट और ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा जाए, जिससे पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ेगी। और इसके साथ साथ जो गांव-गांव में शिविर, बैठक और प्रचार के माध्यम से किसानों को योजनाओं की जानकारी दी जाए। अभी बहुत सारे किसान हैं जिनको ये जानकारी अभी नहीं पहुंच पाई है, कुछ कारण ये बन रहे हैं कि वो शिक्षित नहीं है, और कुछ कारण ये हैं शिक्षित होने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो ये कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए, अधिक गांवों की समितियों को जोड़ा जाए और विविध सेवाएं प्रदान की जाएं। प्राथमिक कृषि साग समितियों के कुछ हमारे उद्देश्य भी हैं और कार्य भी हैं, जैसे प्राथमिक कृषि साग समितियों का मूल उद्देश्य कृषकों को अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करना चाहिए, तथा उनको कृषि संबंधी अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण का प्रबंध करना चाहिए। जैसे अपने सदस्यों को उत्पादन कार्यों, जैसे फसल उत्पादन है, पशुपालन है, अनुत्पादक कार्यों का मतलब है कि जो उत्पादन नहीं होता, जैसे हम अपना पैसा या कहीं शादी में लगा रहे हैं या और कार्यों में खर्च कर रहे हैं, जो हमारा उत्पादन नहीं हो रहा है लेकिन वो हमारा अभी पैसा खर्च हो रहा है, जो आगे चल के वो मुझे प्राप्त हो पाता है, जैसे महाजनों के ऋणों का भुगतान आदि के लिए ऋण प्रदान करना चाहिए। कुछ सीमा तक कृषकों के पर्याप्त ऋण का प्रबंध करना चाहिए, छोटे स्तर के जो उत्पादक की आवश्यकताओं की विधित रूप से पूर्ति करना चाहिए, कुछ सामान्य मांग की जो उपभोक्ताएं वस्तुएं होती हैं, जैसे जो अभी भी गांव में पिछड़े किसान हैं, जैसे मिट्टी का तेल, चीनी है, गेहूं है, चावल है, आदि का सही रूप से वितरण करना चाहिए, ताकि सभी किसानों को वो चीज प्राप्त हो पाए। उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कृषि उपकरण आदि का स्वयं निरीक्षण द्वारा वितरण कराना चाहिए। कभी कभी किसान को सही मात्रा में सही समय पर ये चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उपभोग समिति, विपणन समिति अथवा सरकार के लिए कृषि उत्पादन या पदार्थों को एकत्र करना या खरीदना, कृषि उत्पादों का विक्रय एवं संग्रह में सहायता करना, और इस समिति को कार्य प्रणाली में सुधार के लिए और भी सुझाव हैं, जैसे समितियों को चाहिए कि वे अपनी ऋण नीतियों एवं कार्य प्रणाली को इस तरह बदलें कि उनके द्वारा लघु कृषकों एवं दुर्बल यानी कमजोर वर्ग की जो अधिक लोग हैं उनकी सेवा हो सके। समितियों के द्वारा इस प्रकार की क्रियाविधि व औपचारिकताएं अपनाई जानी चाहिए कि प्रार्थी को आवश्यकता के समय तथा कम से कम कठिनाई उठाते हुए ऋण प्राप्त हो पाए। और इसके साथ साथ जो भी समितियां हैं, जो भी किसान को ऋण प्राप्त होता है, तो उनको ओवरड्यू, जो अतिदेय है, उनको घटाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं, और समितियों के प्रबंधन में ऐसी युक्तियां अपनाई जाएं कि निहित स्वार्थ समितियों पर अपना प्रभुत्व ना जमा सके और उनका शोषण भी ना हो सके। इसके साथ साथ जो हमारे प्राथमिक कृषि साख समितियों का जो दायित्व है एवं प्रबंधन भी है कि जो जिसमें सामान्य सभा द्वारा निर्वाचित 5 से 9 प्रतिनिधि होते हैं, समिति का सर्वोच्च प्रबंधन सदस्यों की सामान्य सभा में निहित होता है। सामान्य सभा की बैठक सामान्यतः वर्ष में एक बार होती है। और अब मैं इसका सब निष्कर्ष जो है वो ये बताना चाहता हूँ कि अगर भारत में कृषि विकास में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की जो भूमिका है अत्यंत महत्वपूर्ण है और आधारभूत भी रही है। ये समितियां किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर बीज, खाद, कीटनाशक जैसे आवश्यक कृषि इनपुट प्रदान करके और उनकी उपज के विपणन में सहायता करके कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाती हैं। साथ ही प्राथमिक कृषि सहकारी समिति किसानों को साहूकारों के शोषण से भी बचाती हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती हैं। ये समितियां छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं, क्योंकि वे उन्हें वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन दोनों प्रदान करती हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां भारत के कृषि विकास की रीढ़ हैं, जो किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
1: जो कृषि भैया,
2: हाँ रघु भैया,
1: अभी अपने पंच भैया सुन रहे थे। भारत में कृषि विकास में प्राथमिक कृषि सहकारी समिति की भूमिका
2: बार-बार रहते डॉक्टर अंकित साक्के जी।
1: और देखो भैया, अब समय हो रहा आज की सीख को।
2: बिल्कुल, तो आज को विषय है जोन है रघु भैया, जाओ पूत दखने यही कर्म के लक्षण। ई को अर्थ रघु भैया जो है कि जगह बदलवे से कछु नहीं हो सकत। अगर व्यक्ति के कर्म और स्वभाव खराब हैं तो चाहे वो जहाँ चलो जाए, केवी को मतलब चाहे दक्षिण दिशा में चलो जाए, चाहे कौन दिशा में चलो जाए, ऊ कहाँ

0: होते भी वैसे ही हरकतें होवे के कारण वही दशा होते पे भी हुए के नहीं।
1: बिल्कुल भैया, दो का है कि अगर आपकी सोच अच्छी है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो भैया जहाँ पे भी आप रहो
0: बिल्कुल
1: आपका सबको सहयोग मिल है और सबके संग आप सामंजस्य बना के रहो
0: बिल्कुल।
1: और मान लो कि अगर आपके स्वभाव में खोट है तो भैया आपको कहूं भी आप नहीं निभा सकते
0: बिल्कुल। अगर अपनी हरकतें और अपने लक्षण अच्छे हैं तो अपन एक वही जगह पर रह के भी अपन सफल हो सकते के नहीं।
1: तो जहाती देखो आज की सीख भैया
0: बिल्कुल।
1: और अपन जमीन का सुनवा रहे हैं एक पर्यावरण गीत, राज गायक है राम लखन सेन
0: बिल्कुल।
1: तो अपन सुने जो पर्यावरण गीत
0: सुन।
2: ते तेंदू चरवा और बेर मकुइया जोने हाथन खा रहे हो

मऊआ गुली को लेंदा हंस हंस बीन बीन के भर डारे के मऊआ गुली को लेंदा हंस हंस बीन बीन के भर डारे और टोर मैन हर और भेड़ा रे सब्जी बन गई उजियारे। हाँ सब्जी बन गई उजियारे। रज मकोर गुर सकरू खा खा रेंगत जा रे गेलारे कांदा और बिराए ल्यान दे खारे सबरे घरवारे। हाँ खारे सबरे घरवारे। हाँ खारे सबरे घरवारे। अगर सिपाही तन को हट के अगर सिपाही तन को हट के सो उल्टी झामो बता

के सोर आंवला करे अमरेठी कछु अचुआर धरो लिया के टोर आंवला करे अमरेठी कछु अचार धर हो लिया के ओ गड़गड़ बेच लई अमरेठी बीच बजरिया में जाके। हाँ बीच बजरिया में जाके के तेंदू पत्ता घर भर टोरे के तेंदू पत्ता घर भर टोरे नोट गिना ले हरसा के और हर बहेरा भाई बिरंगे मिली खकुंदन भरिया के मिली खकुंदन भरिया के। हाँ मिली खकुंदन भरिया के और जला जला के डूरा लकड़ी जला जला के चूड़ा लकड़ी और ठंडी दूर भगा रहे हो वो यहाँ थन ले कुलरिया मोए काटो बे आ रहे हो वो यहाँ थन ले।

0: रघु भैया
1: हाँ किशोर भैया,
0: देखो अभी हमारे सभी पंच सुन रहे थे पर्यावरण लोकगीत राम लखन सैनजू से।
1: और देखो भैया अभूरी चल भी की भैया पंचन का बता दें कल के कार्यक्रम, कल पंच सुने है लोक रंजन कार्यक्रम श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदी लोकगीतों को भैया जो फरमाशी कार्यक्रम है प्रस्तुति हुई है रविन्द्र कुमार
0: और संगे रोजीना किनाई हुए आज की सीख विषय हुए जैसे तोरो रावरो ऊसई मोरक कूच।

ग्रामीण भाइयों के लिए भी ग्राम सभा का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम। सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक, विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक दास और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव।
2: प्रगति यानी कि प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार का एक प्रमुख मंच है, जो प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ साझेदारी में परियोजनाओं, योजनाओं और शिकायत निवारण की प्रत्यक्ष एवं वास्तविक समय में या रियल टाइम समीक्षा के माध्यम से उन्हें तेजी से आगे बढ़ाता है। प्रगति इस बात का सशक्त उदाहरण है कि डिजिटल शासन किस प्रकार नीतिगत मंशा को वास्तविक और दृष्टिगोचर प्रगति में बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया प्रगति भारत में प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं और महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों की निगरानी एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित कर चुका है। यह केवल एक समीक्षा मंच भर नहीं है, बल्कि नौकरशाही की निष्क्रियता को तोड़ने, केंद्र और राज्यों के बीच टीम इंडिया के दृष्टिकोण को सशक्त बनाने तथा ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास है जहां निर्णय समयबद्ध हो, उनके क्रियान्वयन की अपेक्षा की जाए और परिणामों का आकलन किया जाए। दीपक जी, इस बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं और ये बताएं, प्रगति किस तरह सरकार की अटकी हुई या स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स या परियोजनाओं को तेजी लाने में मदद कर रहा है और लागत में वृद्धि को भी चेक कर रहा है।
3: आपने जैसे कहा कि ये पूरा जो प्रगति है एक ऑनलाइन सिस्टम है, वेब बेस्ड सिस्टम है। चाहे उसका जो शुरुआत में जब पहले समस्याएं आती हैं, जो जिस प्रोजेक्ट को इस पे रिव्यू किया जाता है वो भी आपके देखेंगे तो वेबसाइट पर इनका डिटेल डाला जाता है। जैसे आपने कहा इसकी जो मीटिंग होती है जो प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं वो भी ऑनलाइन ही होता है, तो देखा जाए तो एक तरह से एक पेपरलेस एक पूरा प्रोग्राम है। और दूसरी बात यहां तक की है कि प्रगति में हम देखेंगे तो आज तक की जब से शुरू हुआ है, आखिरी जो प्रगति हुई थी वो 51वां, तो इसपे ज्यादातर जो लिया जाता है वो है डिलेड प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट प्रकल्प जो है देर हो गए हैं, तो उसपे ज्यादातर देखेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आपका आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उन्हीं का ही होता है, जैसे रोड, रेल, पावर, कोल, हाउसिंग, इस तरह के सब्जेक्ट ज्यादातर आते हैं। उनके साथ साथ बहुत सारे सरकारी स्कीम, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े जिसको हम कहते हैं फ्लैगशिप स्कीम, जो बहुत बड़े स्कीम है, जैसे कि वन नेशन कार्ड, आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, जो हमारे हॉकर भाई लोग हैं उनको जो 10-10 हजार, उसके बाद 20 और 50 हजार की लोन देने का जो व्यवस्था किया गया, स्वच्छ भारत मिशन, इनका भी रिव्यू होता है। इसके साथ साथ बड़े बड़े जो मुद्दे हैं जिसपे लोगों की बहुत सारे शिकायतें होती हैं तो उनका भी पूरा डिस्कशन होता है। उसमें मैं आपको जैसे एग्जांपल देख सकता हूँ, कोरोना को लेकर हुआ था, रेरा जो हमारे रियल एस्टेट रेगुलेशन जो है, जो उसके लिए जो पूरी व्यवस्था की गई, उनकी ग्रेवियंसेस को, उनकी जो लोगों की जो शिकायतें हैं उनके ऊपर भी मीटिंग हुई है, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर पे भी हुआ है, आपका जनधन योजना पे भी हुआ है। तो देखा जाए तो जो प्रगति है इसपे खाली आधारभूत या जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का नहीं है, बल्कि सरकार की बड़े बड़े स्कीम, लोगों की जो समस्याएं होती है उनका भी मीटिंग में बातचीत होती है। जैसे हम जानते हैं सब की अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का विलंब होता है या उसका लागत में बढ़ोतरी हो जाती है तो देखिए ये देश के लिए तो नुकसान है, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये होता है जब आप देर होता है तो लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, और जब आपका पैसे उसका जो लागत बढ़ जाता है

0: तो हमारे एक्सचेकर पे, हमारे सरकार पे वो दबाव बढ़ता है। तो प्रगति ने ये दो चीजों को तो बहुत ही सही तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से एड्रेस किया है, क्योंकि उनको हर स्तर पे देखा गया कि किस प्रोजेक्ट के किस कारण से डिले हो रहा है, चाहे वो जमीन अधिग्रहण हो, चाहे वो आपको एनवायरमेंट और जंगल की जो एनवायरमेंट और फॉरेस्ट का क्लियरेंस हो, कहीं पे आपका जैसे हम किसी को यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसे बिजली के बड़े बड़े खंभे हटाना, कहीं पे आपको बड़े बड़े पानी की पाइप जो जमीन के नीचे होता है उनको हटाना, तो ये सब चीजें बारीकी से देखा जाता है। और बारीकी से देखने के बाद ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि सारे प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री तक जाता है, बहुत प्रोजेक्ट है जो उससे काफी पहले ही रिजॉल्व हो जाते हैं। जो चीजें रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं वो प्रधानमंत्री आखिर में उसका रिव्यू करते हैं। तो प्रगति होने से एक तो व्यवस्था ये हुई है कि जो प्रोजेक्ट विलंब हो रहे थे, जिनका कॉस्ट बढ़ रहा था, अगर प्रगति नहीं होती उनके कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाते। तो इसके कारण क्या हुआ कि आपको कॉस्ट तो घटा नहीं, पर कॉस्ट की जो बढ़ने में जो आगे की संभावना था उसको घटा दी गई। तो एक तरह से आपका जो जिसको हम कहते फिस्कल बर्डन होता हमारे ऊपर, फाइनेंशियल बर्डन होता, वो घटा। और समय भी इसके कारण बचा जो बहुत डिले लगता है। जैसे आप हम सब जानते हैं जो जम्मू से श्रीनगर का जो रेलवे लाइन है जो कई सालों से अटका हुआ था, वो प्रगति के कारण बहुत जल्दी संभव हुआ। जैसे हम जानते हैं नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है, अगर वो जिस गति से जा रहा था और कई साल लग जाए तो उसको कम्प्लीट होने में, प्रगति होने से उस पर उसका त्वरित गति में उसका काम हुआ है। इसका होने का कारण सिर्फ ये है क्योंकि जब हम जानते हैं कि कोई मीटिंग, कोई एक प्रोजेक्ट का जब हर ऑफिसर को, हर ब्यूरोक्रेट को पता चलता है कि प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो आप देखिए कि वहाँ पे तत्परता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जितना मेरी जानकारी है मैं ये जानता हूँ, जैसे कि प्रगति मीटिंग की नोटिस आती है और जो जो प्रोजेक्ट का नाम आता है, आप कोई भी मंत्रालय में जाइए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में जाकर बात करिए, वो देखेंगे ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी बन जाता है। क्योंकि वहां पे ये कोई नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री अध्यक्षता में ये कोई बोले कि आपने ये काम नहीं किया। और उसके कारण क्या होता है, अचानक से आप देखेंगे जो बैकग्राउंड कोऑर्डिनेशन है मीटिंग के पीछे की, जो एक दूसरे के साथ बातचीत करना, स्टेट गवर्नमेंट, सोचिए कोई मिनिस्ट्री से बात कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उसको रिजॉल्व करने के संपूर्ण तरह से प्रयास करते हैं। याद है वाक्य कि कोई एक मीटिंग होने वाली थी जिसपे ये आपका टेलीकॉम का जो फाइबर नेटवर्क डाला जाता है उसके ऊपर प्रधानमंत्री का मीटिंग होने वाला था, काफी विलंब हो रहा था, मुझे क्योंकि मैं उसके बारे में लिखा था तो मुझे याद है, ठीक मीटिंग से एक दिन पहले जितने भी उसका स्टेक होल्डर है, जितने मंत्रालय है, सबने एक साथ कह दिया कि हमने सारी चीज रिजॉल्व कर ली है। तो देखिए इसका ब्यूटी है, क्योंकि आप देखेंगे तो कि जो है यही इसका जो है सुंदरता है कि जब प्रधानमंत्री मीटिंग लेते हैं तो उससे पहले ही बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो जाता है। और जब कॉस्ट ओवररन नहीं होता है, लागत नहीं बढ़ने को हम रोक सकते हैं, समय की देरी को, विलंब जो होता है उसको रोक सकते हैं, तो इसके देखिए सबका फायदा होता है, सरकार का होता है और जैसे मैंने कहा लोगों को सुविधाएं बहुत जल्दी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया, सोचिए आपका जम्मू से श्रीनगर की जो रेलवे लाइन, सोचिए और 5 साल डिले हो जाता तो क्या होता, जो लोगों को इतना लंबा समय रोड से जाना पड़ता है या फ्लाइट की टिकट बहुत ज्यादा देकर जाना पड़ता है, उससे तो बच गए ना।
1: प्रगति में जो परियोजनाएं लाई जाती हैं वो अक्सर ऐसा होता है जो रुकी हुई रहती हैं या डिलेड होती है, क्या कारण है कि ये परियोजनाएं रुक जाती हैं, इनके प्रमुख कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? प्रगति तो करती है लेकिन क्या मंत्रालय स्तर पे या राज्यों के स्तर पे इनके भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं?
0: एकदम आपने सही कहा। और जैसे कि 4-5 जो सबसे प्रमुख कारण है जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, वो एक तो पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपका लैंड एक्विजिशन, क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिना जमीन के आप शुरू नहीं कर सकते। जैसे कि रोड आपको बनाने के लिए 100% आपको जमीन चाहिए। आप अगर पावर प्लांट बनाते हैं तो आपको जमीन चाहिए। अगर आप सोचिए कोई बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है तो सब में आपको जमीन चाहिए। अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी जो दिक्कत, खाली प्रगति की बात नहीं, अगर आप हर साल की अगर सवाल देखेंगे जो पार्लियामेंट में आता है, हमारे संसद में आता है, जो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय हो, परिवहन मंत्रालय हो, या रेलवे मंत्रालय हो, या आपका सिविल एविएशन मंत्रालय हो, ये सब में देखेंगे तो जो भी सवाल पूछा जाता है कि मुख्य कारण क्या है डिले का, तो कहा जाता है लैंड एक्विजिशन, जमीन के अधिग्रहण में देरी। दूसरा जो सवाल आता है वह आपका क्लियरेंसेस क्या क्या है, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, इस पे देरी बहुत, एक ये दो जो है सबसे प्रमुख कारण है। इसके साथ जैसे मैं आपको पहले बताया था कि तीसरा कारण है कि जिसको हम यूटिलिटी शिफ्टिंग देखेंगे, जहां पे एक नया सोचिए कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, वहां पे पहले कभी बिजली के बड़े बड़े हाई टेंशन वायर का जो खंभे लगे होंगे और वो छोटे नहीं है कि अचानक रातों रात बदल सकते हैं, तो इनको सब शिफ्टिंग करने का भी बहुत टाइम लगता है। मेनली यही 3-4 चीजें हैं जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले होता है। और जब प्रगति होती है तो उसपे क्योंकि सारी बातें क्लियरली आती है, जैसे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब ये प्रगति मीटिंग होती है उसपे प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में होते हैं, आपके कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग में होते हैं, सब वर्चुअली जुड़े होते हैं ऑनलाइन माध्यम से, फिर सारे चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं। तो जैसे जमीन अधिग्रहण की बात अगर हम करें, हम तीनों चीजें, जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण की बात करें और तीसरा जो

0: यूटिलिटी शिफ्टिंग, ये तीनों का जो मुख्य जिम्मेवारी है वो राज्य सरकार का है। तो जब मीटिंग होती है इसकी तो ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है या ये आपको जैसे कहें निर्देश दिया जाता है कि आप इसको जमीन के अधिग्रहण को जल्दी से संपूर्ण करें। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ एग्जांपल, अभी प्रगति हुई थी उस पर रेलवे का भी कोई प्रोजेक्ट था जहाँ पे वहाँ पे भी कोई कंपनसेशन जो आपका लोगों को जो पैसे देने की बात आई थी कुछ प्रोजेक्ट के कारण, तो उस पर प्रधानमंत्री ने बहुत ही सख्त निर्देश दिया रेल मंत्रालय को कि जल्दी से लोगों को जो कंपनसेशन है दीजिए ताकि काम कंप्लीट हो जाए। तो इस पे क्या होता है कि जो केंद्र का मंत्रालय हो या राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं, देखिए केंद्र सरकार में देखा जाए तो सारे काम कैबिनेट सेक्रेटरी मुख्य है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का उनका अंडर सेक्रेटरीज हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में जो राज्य सरकार का तो मुखिया ही देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, ब्यूरोक्रेटिक हेड है, वो तो चीफ सेक्रेटरी है। तो जब चीफ सेक्रेटरी को कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है मुख्य सचिव को तो उसका सीधा असर देखने को मिलता है। मैं आपको जैसे एग्जाम्पल बताऊं, दिल्ली के एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अर्बन एक्सटेंशन रोड, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, ये सब प्रोजेक्ट को पीएम ने एक एक करके प्रोजेक्ट का रिव्यू किया हुआ है और इस रिव्यू का कारण प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कम्प्लीट हुए।
1: जी, प्रगति की अभी तक 51 बैठकें हो चुकी हैं और इसमें 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया जा सका है और कुछ तो कंप्लीट भी हो चुके होंगे। ये मंच प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष देखरेख में केंद्र और राज्यों के बीच वास्तविक समय में तालमेल सुनिश्चित करते हुए जवाबदेही को और अधिक अच्छा करती है। जमीनी स्तर पर प्रगति और क्या बदलाव ला रही है, चाहे वो गवर्नेंस लेवल हो या लोगों के लिए आराम सुनिश्चित करना या ईज ऑफ लिविंग जो कि सरकार का बहुत फोकस एरिया रहा है वो सुनिश्चित करने में कैसे मदद कर रही है?
0: जैसे आपने कहा कि करीबन 85 लाख करोड़ और उसके साथ मिला दें तो पिछले हफ्ते 30,000 करोड़ का और प्रोजेक्ट हुए हैं, तो 85 लाख 30,000 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट का रिव्यू हुआ है और ये करीबन 3,300 प्रोजेक्ट से भी ज्यादा हैं। पहला वाला तो था इसकी कीमत कितना कॉस्ट था, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो करीबन 3,300 से ऊपर है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कुछ प्रोजेक्ट नहीं ज्यादातर प्रोजेक्ट ही इस पे आपके एक्सपेडाइट हुए हैं। जितना भी प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे प्रगति में आई है उनमें बहुत जल्दी उनकी गति पकड़ी है और ज्यादातर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। दूसरी बात, आपने जो कहा कि इस पे जमीनी स्तर पे क्या परिवर्तन आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब मीटिंग होती है जिसपे प्रधानमंत्री होते हैं, भारत सरकार के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और हर स्टेट गवर्नमेंट के हर राज्य सरकार के मुख्य सचिव होते हैं, तो देखिए एक मैसेजिंग होता है कैसे सबको साथ मिलकर काम करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, कोई भी अगर प्रोजेक्ट चाहे वो नेशनल हाईवे हो चाहे रेलवे हो चाहे पावर का प्रोजेक्ट हो, कोई मंत्रालय का जब आता है उनको ये जरूरी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट से बात करें। तो ये जो कल्चर धीरे धीरे, ये मेरा नहीं है, इस पे मुझे सोचना नहीं, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रेक द साइलोज, कि आप जो अपने अपने हिस्से में बंधे रहते उससे थोड़ा बाहर जाइए। आप ये सोचिए कि खाली ये मेरा रोड का प्रोजेक्ट नहीं है, रेल का प्रोजेक्ट नहीं है, देश का प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है ये सोच ये धीरे धीरे सबके जो अंडरस्टैंडिंग और जहन में ये आने लगा है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट में कारण देर हो रहा है तो आप सोचिए कि कोई सचिव जो है मुख्य सचिव को फोन करके बात करते हैं कि देखिए ये प्रगति में आ रहा है, ये प्रोजेक्ट को जल्दी किया जाए। जब आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी या कनेक्शन थोड़ा फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाएगा तो उसका असर ये भी होगा बाकी जो प्रोजेक्ट हैं जो प्रगति में नहीं आ रहे वहां भी अगर डिले हो रहा है तो आप उसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा असर है, देखिए हर जो सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, अधिकारी हैं, जब उनको ये पता है कि प्रोजेक्ट अगर कोई मेरा बहुत ज्यादा विलंब हो गया या कॉस्ट बढ़ गया तो प्रगति में चला जाएगा, प्रगति में गया तो फिर मुझे तो बहुत सारी सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो इसका असर क्या होगा, जो प्रोजेक्ट धीमे चल रहे हैं उनको वो लोग भी कोशिश करते हैं वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक से होता है ताकि वो प्रोजेक्ट प्रगति में ना जाए। तो मुझे लगता है पूरा जो है वार कल्चर को प्रगति ने काफी बदलाव लाया है।
1: जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात की कि ब्रेकिंग द साइलोस, ये साइलोस को ब्रेक करने में मदद करता है। आपको लगता है कि ये जो बैठकें होती हैं ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद को इंस्टीट्यूशनलाइज या संस्थागत रूप देने में भी मदद कर रहा है?
0: आपने ये बात तो एकदम सही कहा कि एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये स्ट्रेंथन करता है, इसको जब मजबूत करता है। इसका कारण मैं आपको इसलिए बताया कि जैसे जितना भी आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट को तभी सक्सेसफुल हो सकता है, तभी कामयाब हो सकता है जब राज्य सरकार संपूर्ण तरह से उसके साथ काम करे। वो तभी हो पाएगा जब दोनों में सहयोगिता होगा या कोऑपरेशन होगा, तो फेडरल कोऑपरेशन के बिना ये तो काम हो नहीं सकता। दूसरा बात क्या है कि जब हर व्यक्ति एक ही प्लेटफॉर्म पे रहकर बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 50वां प्रगति हुई थी उसके बाद हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन शाह ने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहां पे हम लोगों ने सवाल भी पूछा था कि जो है, तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कहा कि कोई भी राज्य सरकार या हर राज्य सरकार चाहता है कि ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, और कोई सरकार नहीं चाहता उसका डिले हो, क्योंकि विलंब होगा, कॉस्ट ओवररन होगा तो सबको समस्या होता है। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि हर सरकार चाहती है रोड बने, हाईवे बने, रेलवे लाइन डले, नया ट्रेन चले, अच्छे पावर प्रोजेक्ट आए ताकि वो उनकी आवश्यकता को पूरा कर सके, और वो तभी कम्प्लीट होगा जब केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर बात करेंगे। एक बात ये भी ध्यान देना पड़ेगा, कम्प्लीटली

0: पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पे केंद्र में सरकार, राज्य में कौन सरकार है, इसका कोई असर ही नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे हर राज्य के प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपेडाइट किया गया है, कंप्लीट किया गया है।
1: जी दीपक जी, आपने बहुत विस्तार से प्रगति के बारे में हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक, विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक दास और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।
3: सुर्खियों में
4: ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आरजू का ये गीत। गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। आइए रवि का संगीतबद्ध किया गीत एक आपको सुनवाते हैं। फिल्म है अमानत, आवाज एक बार फिर मोहम्मद रफी की।

आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म इंतकाम से। आवाज एक बार फिर मोहम्मद रफी की है, गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90

आइए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म है खिलौना। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म 10 लाख से। आवाज एक बार फिर मोहम्मद रफी की है, गीत को संगीतबद्ध किया है रवि ने।

अभी आप सुन रहे थे प्रेम धवन का लिखा गीत, फिल्म थी 10 लाख, गीत को संगीतबद्ध किया था रवि ने और आवाज थी मोहम्मद रफी की। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है।

0: यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
3: सबने मिलकर ये तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
4: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है।

म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से

बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही, यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरूआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर

अभी आप सुन रहे थे फिल्म शोले का यह गीत। आवाज थी किशोर कुमार और मन्ना डे की। आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीत से सवारा था आर डी बर्मन ने। आई आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ एक गीत और सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म दीवार में किशोर कुमार और आशा भोसले को। आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म जूली से। आवाज किशोर कुमार की है, आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीत से संवारा है राजेश रोशन ने।

0: लीजिए प्रस्तुत है सुमन।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। फिल्म है चोरी मेरा काम। गीत लिखा है वर्मा मलिक ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

आइए कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवाते हैं। आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म है झुक गया आसमान, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: झुक गया आसमान। मोहम्मद रफी की आवाज में अभी ये आप हसरत यपुरी का गीत सुन रहे थे। संगीत था शंकर जयकिशन का। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है नाटक लौटते कदम। इस नाटक को लिखा है सुमन वर्मा ने और प्रस्तुत करता है श्रीहर्ष पांडे।
1: लीजिए प्रस्तुत है सुमन वर्मा का लिखा हुआ नाटक लौटते कदम। प्रस्तुति सहयोग रविन्द्र प्रजापति का, प्रस्तुतकर्ता श्रीहर्ष पांडे।
2: अरे घीसू भैया राम राम।
3: अरे देवी भैया राम राम, राम राम जय राम जी की।
2: अरे भैया ये सवेरे सवेरे थैला भी लेकर कहाँ जा रहे हो?
3: भैया मैं तो शहर जा रहा हूँ, तुम्हें तो मालूम ही है अब गांव में गुजारा नहीं हो रहा है। अब देखो ना, दिन भर दम मारो, मिलने को 200 रुपट्टी, इतने में पूरे घर का खर्च इस महंगाई के जमाने में भला कैसे पूरा होगा? और काम रोजाना मिले इसकी भी गारंटी नहीं, आखिरकार कुछ तो करना होगा। सुना है शहर में 400 मिलते हैं, अब यदि 100-200 खर्च भी हो गए तो 200 तो बचेंगे, वह घर भेज दिया करूंगा।
2: ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर देखो आते जाते रहना, कहीं वहीं के होकर न रह जाना।
3: कैसी बातें करते हो, परिवार तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ, जल्दी ही 4 पैसे कमाकर लौट आऊंगा। घर का ध्यान रखना, आप सभी के भरोसे है।
2: अरे ये कोई कहने की भी बात है, पर अपना रामलाल भी तो शहर गया था, कह रहा था जल्दी लौट आऊंगा, पर न जाने उसकी कोई खबर नहीं मिली। अच्छा भैया राम राम।
3: राम राम राम राम राम राम।
2: अरे देवी काका, ओ देवी काका।
4: अरे सुनो तो जरा। अरे काका मैंने सुना है कि घीसू भैया गांव छोड़कर शहर चले गए हैं।
2: हाँ बेटा, उसकी परिस्थिति बहुत दिनों से खराब थी, जमीन थी तो कर्ज में चौधरी जी के यहाँ चली गई, बेचारे का परिवार भी तो बड़ा है। अरे छोड़ो इन बातों को, हम गरीबों का तो रोज का ही यही रोना है। अच्छा चलता हूँ, बहुत काम पड़ा है।
4: अच्छा काका।
5: छोटे सुना है इस साल तुम कमला के हाथ पीले कर रहे हो, वो भी शहर में। बड़ी अच्छी बात है, बिटिया सुखी रहेगी, लड़का नौकरी में जो है।
6: हाँ मास्टर जी, लड़का शहर के ऑफिस में बाबू है। पर क्या करूं, समझ में नहीं आता।
5: समझ गया, वही पुराना खाना खर्च लेन देन का चक्कर। खैर भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अब चलता हूँ, स्कूल का टाइम हो रहा है।
7: सुना है रामू फैक्ट्री में काम करने जा रहा है।
8: तो कौन सी नई बात है, और भी तो गए हैं, मैंने कितना कहा पर एक नहीं सुनी। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, जब शहर में दिन भर कोलू के बैल की तरह जुतकर रात सड़कों पर गुजारेंगे तब जाकर होश ठिकाने आएंगे।
9: जमींदार जी, आपके लड़के की नौकरी का कुछ हुआ क्या?
8: अरे क्या होना है, नौकरी ऐसे थोड़े ही मिल जाती है। अरे नहीं भी मिली तो सारी जायदाद का अकेला वारिस है, राज करेगा राज।
7: अपने देवी काका को छोकरा भी तो पढ़ लिख कर गाँव आ रहा है।
8: क्यों काका, उसे यहाँ बुला।

0: आकर क्या खेती करवाओगे?
1: नहीं जमींदार जी, कुछ दिन घर पर रह लेगा। मेरा लड़का एग्रीकल्चर से पढ़ा है, मुझे पूरा भरोसा है कि वह हम सभी गांववासियों को एक नई दिशा देगा।
0: अरे अब रहने भी दो। अरे मास्टर जी, आज आप कौन सी कसम खाए बैठे हैं, कुछ बोलें?
2: नहीं जमींदार जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल यदि इसी तरह सभी लोग शहर चले जाएंगे तो फिर खेती कौन करेगा?
0: हाँ ये तो है।
2: क्या पत्थर खाएंगे? अरे खाएंगे तो अनाज, चाहे जहां रहें, वो तो फैक्ट्रियों में नहीं बनेगा, सड़कों पर नहीं उगेगा और ना आसमान से टपकेगा। आखिरकार कुछ तो अवश्य कर इसे रोकना होगा, इसे रोकना ही होगा।
0: अरे मास्टर जी, आप तो नाहक में चिंता कर रहे हो, भला समय की चाल को कोई रोक पाया है? अरे चलिए अब चौपाल खत्म करते हैं, रात बहुत हो गई। चल रे धनुआ।
3: हाँ मालिक।
0: क्यों रे धनुआ? अच्छा हाँ सुन, मैं कल तड़के जरूरी काम से पास के गांव जा रहा हूं, कल न लौटूं तो परसों जाकर तू सुबह सुबह मुनीम जी से कह देना कि जितने लोगों से कर्ज मिलना है वो सभी के घर खबर कराएंगे और ठोक बजाकर जता भी देंगे कि अब की बार फसल पर मैं सूद के पैसा चाहिए है, नहीं तो जमीन जुतवा लेंगे, ट्रैक्टर उठवा लेंगे, देखेंगे फिर मास्टर खिलाएगा गांव वालों को, सब अपने अपने शहर भागेंगे मजूरी को, तब मैं और बड़ा जमीन का मालिक, तब मैं और ज्यादा पैसे वाला बन जाऊंगा। क्यों नहीं रे धरुआ?
3: जी मालिक।
4: रुक्मणी, अरे जरा पानी तो ला।
5: जा बेटी कमला, दद्दा को पानी दिया। अरे सुनो, उन्होंने क्या जवाब दिया है? सभी कुछ ठीक तो है ना? मैं तो पहले ही जानती थी शहर के लोग पढ़े लिखे समझदार होते हैं, वो ऐसी वैसी बात कोई नहीं करेंगे। उन्होंने कब आने को कहा है?
4: अब कोई नहीं आएगा इस बदनसीब के घर। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 8 लाख नकद और सभी दहेज का सामान। कहां से दोगी इतना? घर जमीन भी बेच दोगी तो भी नहीं जुटेगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं पड़ता।
5: तुमने क्या सोचा? आखिर कुछ तो करना ही होगा।
6: बापू, सब ठीक ठाक बातचीत हो गई ना? कब की निकल रही है शादी? बापू कुछ बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं?
4: बेटा क्या बोलूं, अपनी माँ से पूछ ले, मैं चला।
2: अरे छोटे, क्या हुआ? सब ठीक ठाक बात हो गई ना?
4: सभी ठीक है मास्टर जी, पर उनकी मांग बहुत ज्यादा है, मैं ये शादी ना कर पाऊंगा।
2: अरे छोटे, दिल छोटा मत करो। आखिर कुछ तो बताया होगा उन्होंने, कितने कुछ क्या मांगा है?
4: मास्टर जी, पूरे 8 लाख तो नकद, ऊपर से सारा दहेज का सामान, बताओ।
2: अरे मैं तो समझता था श्यामलाल जी अच्छे आदमी होंगे। खैर तुम फिक्र मत करो, कुछ रास्ता तो तलाशना ही होगा। हे भगवान, इन दहेज लोभियों को तू कब सद्बुद्धि देगा? छोटे तुम ऐसा क्यों नहीं करते, जमींदार जी से कुछ साल के लिए उधार ले लो? अरे बेटी की शादी है, वो जरूर मान जाएंगे, और फिर उनके गांव की इज्जत का भी तो सवाल है।
4: पर मास्टर जी, उनका कुछ पुराना रुपया भी तो देना है।
2: अरे तुम मांग कर तो देखो, ऐसे काम के लिए वो मना नहीं करेंगे।
4: ठीक है, आप कहते हैं तो चला जाता हूं।
2: वो क्या कहते हैं मुझे बताना जरूर।

0: नहीं तो कोई दूसरा उपाय सोचेंगे।
1: जमींदार जी, राम राम।
2: राम राम छोटे लाल, कहो कब लौटे? सब ठीक है ना? चलो अच्छा है, सर से एक बोझ उतर जाएगा। लड़की की शादी कर रहे हो भाई, मेरी कोई जरूरत पड़े तो संकोच मत करना।
1: जमींदार जी।
2: हाँ हाँ, अरे क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे मैं हूं तो किस बात का गम? बोलो, खुलकर बोलो। अरे धनुआ, छोटे लाल जी को चाय पानी का बंदोबस्त कर।
1: जमींदार जी, उन्होंने पूरे 8 लाख नकद और दहेज का सारा सामान मांगा है।
2: अरे
1: बताओ,
2: इतनी सी बात फिकर क्यों करते हो? आखिर बेटी के घर में ही तो जाना है। तुम चिंता मत करो, जब जितने की जरूरत पड़े आ जाना, इंतजाम हो जाएगा
1: जी।
2: पर देखो, मैं ठहरा जरा साफ बोलने वाला आदमी, बुरा नहीं मानना। जब फसल आ जाए तो पुराना और अभी का दोनों चुका देना
1: जी।
2: अब मेरे यहां छपते तो है नहीं, इधर लिया उधर दिया, इसी तरह चलता है। सबका काम बनता है, अपनी राम सुनता है।
1: अच्छा जमींदार जी, राम राम।
2: राम राम।

0: आओ आओ छोटे लाल, बिटिया ससुराल में सुखी तो होगी।
1: हाँ जमींदार जी।
0: अरे तुमने सारा गेहूं पहले ही बेच डाला, कुछ दिन रखे रहते, भाव अच्छे मिल जाते, ये ठीक नहीं किया।
1: अरे वो क्या है कि क्या करूं, कुछ रुपए दहेज के सामान को कम पड़ गए थे सो बेचना पड़ा, और फिर आपके भी तो देना थे।
0: हाँ चलो लाओ, कितने हैं?
1: मालिक 80,000।
0: 80,000? इतने कम में क्या होगा, ये तो पिछले भी नहीं है, और जो अभी दिए थे उसका कुछ हिसाब किताब है कि नहीं?
1: क्या करूं जमींदार जी, शादी में खर्च कुछ ज्यादा ही आ गया।
0: तो मैंने कहा था न करते शादी, अरे आदमी को चादर देखकर पांव पसारना चाहिए, और तुम तो मास्टर जी से सलाह लेते हो, कुछ नहीं समझाया। देखो 15 दिनों में पाई पाई का हिसाब चाहिए, फिर नहीं कहना जमींदार बुरा है। अरे इस तरह तो मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा।
1: इन्हें रख लीजिए, बाकी अगली फसल पर मैं सूद के चुका दूं।
0: ले जाओ इन्हें, एक एक पैसा 15 दिनों में लेके आना, वरना तुम्हें मालूम है आगे तुम जानो, समझे?
2: क्या हुआ जमींदार जी, मान गए? कुछ चिंतित लग रहे हो।
1: जमींदार जी ने 15 दिनों के भीतर सारा पैसा लौटाने को कहा है, वरना रुक्मणी तुम्हें तो मालूम है कि तुनों को बर्बाद कर चुका है। रुक्मणी हम फंस चुके हैं, अब ईश्वर ही कोई रास्ता सुझाए।
2: हाय राम, अब क्या होगा, अब तो सचमुच हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा करो, सुनो मास्टर जी के यहाँ चले जाओ, कुछ राय जरूर सुझाएंगे वो।
1: मैं वहीं से होकर आ रहा हूँ, पता चला है मास्टरनी बाई की तबीयत बहुत खराब है, वो घर गए हुए हैं।
3: छोटीलाल घर में है क्या?
2: हाँ हाँ, क्या बात है भैया?
3: जमींदार जी ने भेजा है, चौपाल में बैठे हैं, कहा है छोटे लाल को बुला लाओ।
2: ठीक है, अभी पहुंचाती हूँ, तुम जाओ।
1: क्या बात है, कौन है?
2: तुम्हें सरपंच जी ने बुलाया है, जमींदार ने कहा है। मेरा तो जी घबरा रहा है, रामदयाल भी नहीं है, हे भगवान रक्षा करना ईश्वर।
1: अरे इतना ना घबराओ रुक्मणी, पंच सरपंच भी तो बैठे होंगे, मेरी परिस्थिति भी तो सुनेंगे।
0: पंचो सबको मालूम है

0: मोटेलाल ने अपनी बेटी की शादी के लिए 8 लाख मुझसे नकद लिए थे और 80,000 इससे पुराने मिल रहा थे, सब जोड़ जाड़ के करीब 10 लाख हो रहे। इन्होंने फसल आने पर सारा पैसा लौटाने का वादा भी किया था लेकिन पैसा नहीं आया। वो 15 दिन भी निकल गए पर इन्होंने एक भी पैसा नहीं लौटाया। तो मैं इनकी कुएं वाली 8 एकड़ जमीन, चारों भैंसें और ट्रैक्टर अभी छुड़वा लेता हूं। क्या मैं ये कोई गलत काम कर रहा हूं? तुम ही पंचों को ये फैसला करना है। सभी पंच सोच समझ कर निर्णय करें और अभी फैसला करें।
1: अरे रे रे रे, ये तो बुरा होगा, बेचारा फिर क्या करेगा?
2: 10 लाख
3: ठीक तो है, लिए कैसे थे, देना तो पड़ेंगे ही।
4: पर जमींदार जी, 1 साल के लिए मान जाते तो अच्छा था।
1: वो कैसे दे पाए?
5: सही है। सुनो भाई, हम सभी पंचों ने आपस में सोच समझकर राय लेकर ये फैसला लिया है कि छोटे लाल को सारा पैसा अभी लौटाना होगा, नहीं तो जमींदार जी जो कह रहे हैं वह ठीक कह रहे हैं। उनके इस निर्णय पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ छोटे लाल, तुम कुछ कहना चाहते हो?
6: हाँ हाँ हाँ सरपंच साहब, कम से कम हमारे बाल बच्चों का तो कुछ ख्याल रखो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। हमें 1 साल की मोहलत और दे दो, मैं पाई पाई चुका दूंगा।
0: हम कुछ नहीं सुनना चाहते। सुनो मन्नू, सूरज, कल तड़के ही इनके घर से भैंसे खोल लाना और हाँ, इस साल इनकी जमीन पर फसल हम बोएंगे। भैंसों और ट्रैक्टरों की नीलामी कल होगी। जो सज्जन जो गांव वाले इसे खरीदना चाहें उनका मेरे घर स्वागत है।
7: बापू, अब ये क्या हो गया? मैंने कहा था ना कि जमींदार बहुत निर्दयी है। माँ, हमारा घर बर्बाद हो गया, अब कैसे जिएंगे? माँ, ये क्या हो गया?
6: बेटा, शायद भगवान को यही मंजूर था। हमें एक दिन बर्बाद होना था, सो हो गए, अब वो ही पार लगाएगा। रुक्मणी।
8: हाँ?
6: अपने बेटे को धीरज बंधा। लो मुझ में अब और शक्ति नहीं रही।
8: नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये दुखियारी नहीं जी सकेगी। अब मैं क्या करूं? हे भगवान।
9: बापू, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बापू, जमींदार, ये तूने अच्छा नहीं किया। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा जमींदार। माँ, अब कुछ नहीं बचा। माँ,
8: बेटा, अब बापू का गम भुला दे बेटा। बहादुर लोग हिम्मत नहीं हारते। जो जमीन बची है अब उसी में गुजर चलानी है, उसी में बेटा खून पसीना लगाना है, अपनी बूढ़ी माँ और अपने परिवार के लिए बेटा।
9: नहीं माँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब उस बंजर जमीन का क्या होगा जिसमें आज तक एक दाना ना पचा हो? मुझे अब इस गांव में नहीं रहना। यहाँ के लोगों से जो जमींदार के शानों पर नाचते हैं, इनसे मुझे अब कोई मतलब नहीं। सबसे घृणा हो गई माँ मुझे, सबसे। इन दरिंदों के बीच अब माँ मैं नहीं रह सकता। घीसू भैया ठीक ही कहते थे माँ, कल ही हम लोग ये गांव छोड़ देंगे और ऐसे लोग छोड़ देंगे। माँ, यहाँ हमें नहीं रहना। माँ,
8: बेटा, नहीं बेटा, ये हमारी जन्मभूमि है, हम किसान।

0: इंसान है। हमारा शरीर इन्हीं खेतों की मिट्टी से बना है बेटा, हमने इसी में सपने देखे हैं और इसी में एक दिन सो जाएंगे। पर बेटा, गांव छोड़कर शहर नहीं जाएंगे। तेरे बापू की जो इच्छा थी ना, वो अधूरी रह गई। उसे पूरी करने के लिए तू इसी बंजर भूमि को अपने खून से सींच कर उपजाऊ बना दे मेरे बच्चे। तेरे इन दो हाथों में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। तेरे बापू की आत्मा भटकती रहेगी, भटकती रहेगी।
1: नहीं माँ, नहीं, मेरा निर्णय अब कोई नहीं बदल सकता। तुम्हें यहीं रहना है तो तुम रह सकती हो माँ, पर मैं नहीं रुकने वाला। जिन लोगों के बीच मेरा सब कुछ छिन गया है, वो मुझे दिन रात खटकते रहेंगे माँ। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। हाँ, तुम्हारी बहू को मैं साथ ले जा रहा हूँ, लेकिन बिटिया तुम्हारे साथ बनी रहेगी। जब जीना दुभर लगे तुम्हें तो चली आना, चली आना, तुम भी चली आना माँ, मैं इंतजार करूंगा।

0: ருக்மணி. ஓ ருக்மணி.
1: கான்? அரே ஆப் ஹே மாஸ்டர் ஜி, சப் குச்ச லுட் கயா, சப் பர்பாத் ஹோ கயா மாஸ்டர் ஜி.
0: ஹான் ருக்மணி, தேவி தீன் நே முஜே பூரா ஹால் பதாயா ஹே. பஹுத் புரா லகா, யே அச்சா நஹீ ஹுவா. இஸ் ஜமீதார் நே ஆகிர் ஏக் ஔர் பரிவார் கோ லீல் லியா. ருக்மணி தும் ஃபிக்ர் மத் கரோ, மே ஜமீதார் சே மில்கர் ஆதா ஹூ.
2: ஆயே மாஸ்டர் ஜி, ஆயே. சஹர் சே கப் லோட்டே? சப் தீக் தாக் தோ ஹே நா?
0: ஜமீதார் ஜி, யே தும்னே க்யா கர் டாலா? किसी की जिंदगी तुम्हारी नजर में इतनी सस्ती होगी, मैं सोच भी नहीं सकता था. अरे किसी का घर उजाड़ने से पहले कम से कम एक बार सोच तो लिया होता. एक साल रुक जाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता. आज मुझे इंसान होने पर घिन आ रही है.
2: देखो मास्टर, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है. मैंने इसको समय भी दिया था. मेरे नियम जरा कठोर हैं.
0: अरे जमींदार जी, उस भगवान के बनाए नियम से कठोर नहीं हो सकते. जिसकी लाठी कब पड़ जाए पता भी नहीं चलेगा. उस वक्त से डरो जमींदार. कहीं हे भगवान, अरे किसी का घर बसा न सको कम से कम उजाड़ो तो नहीं. जमींदार जी, मैं शहर का अपना घर और सारी जायदाद सब कुछ बेच आया हूं. मेरी पत्नी अब नहीं रही. तुम्हें पैसों से बहुत प्यार है तो जितने होते हैं ये रखा है मेरा बैग, निकाल लो और वापस कर दो उस बेसहारा बेवा की जमीन. मेरी जिंदगी भर की कमाई इसी बैग में है. यदि मेरी सारी जिंदगी की कमाई से एक घर फिर से बस सकता है तो मैं भगवान से यही विनती करूंगा कि हे भगवान, मुझे ऐसी लाख जिंदगानियां दे और हर एक जिंदगी किसी घर को बसाने में काम आए. मैं अब इसी गांव में रहकर शेष जीवन गुजारना चाहता हूं.
2: अरे इस गरीब मास्टर को तो देखो, जो सारी जिंदगी की कमाई मुझे देना चाहता है, वो भी निस्वार्थ. और एक मैं जिसने चंद रुपयों के पीछे किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी. हे भगवान, मुझे पागल कर दिया है. मुझे पागल कर दिया.

vida. मास्टर जी मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं ये क्या कर गया मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे नहीं चाहिए आपका एक भी पैसा, मुझे ये नहीं चाहिए उस औरत से एक भी पैसा। मैं बस यही समझूंगा

0: माफी मांगना चाहता हूं। देखिए शहर न जाने पाए कैसा पागल हो गया था मैं। मास्टर जी रोक लो, रामदयाल को रोक लो, किसी तरह रोक लो।
1: रामदयाल
2: रुको बेटा। देखो बेटा रामदयाल, घर लौट चलो। आज जमींदार को अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है। उसने जमीन वगैरह वापस कर दी है और वो बहुत शर्मिंदा है। सभी को गांव वापस बुलाने के लिए भी कहा है और कहा है वो सबकी हड़पी हुई जमीनें वापस कर देंगे। अब बेटा जो खो गया वो तो नहीं आ सकता, लेकिन तुम वापस चलो।
3: मास्टर जी आप मेरे पिता समान हैं, भला आपकी बात मैंने कब नहीं मानी, फिर आज कैसे नहीं मानूंगा। चलिए मैं आपके साथ चलता हूं।
0: रामदयाल बेटा मुझे माफ कर दे। अगर तूने मुझे माफ नहीं किया तो ऊपर जाकर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझसे अनजाने में भारी भूल हो गई। मैं नहीं जानता था कि मेरे इस बर्ताव से तेरे परिवार को इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन मैं अब इस अपराध का प्रायश्चित करूंगा और आज से मैं तुझे अपने दूसरे बेटे का दर्जा देता हूं। आज से तेरा दर्जा मेरे बेटे का दर्जा है।

0: लौटते कदम। आप सुन रहे थे सुमन वर्मा का लिखा हुआ यह नाटक। भाग लेने वाले कलाकार थे देवी दीन की भूमिका में आशीष कुमार बोस, अभिराम पाठक थे घीसू की भूमिका में, रामदयाल की भूमिका निभाई आशीष खरे ने, मास्टर जी की भूमिका निभाई अजमत अली ने, कमलेश मिश्रा ने भूमिका निभाई छोटे लाल की, जमींदार थे प्रकाश तिवारी, मालती सोनी रुकमणी की भूमिका में, धनुआ अशोक श्रीवास, अन्य स्वर मनोज मिश्रा का। इस नाटक में प्रस्तुति सहयोग रविन्द्र प्रजापति का और नाटक के प्रस्तुतकर्ता श्री हर्ष पांडे।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक लौटते कदम। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज एन एयर पर ही आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए पंडित निखिल बनर्जी से राग चंद्रकोस में सितार वादन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी

0: का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरूआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि एआई की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।